नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की नौमी तिथि, तदनुसार 31 अगस्त सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। इस समय सुबह को 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज़्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज़्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज़्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले

बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का यह चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज का चिंतन। चाणक्य का कथन है, जो व्यक्ति अपने मन, क्रोध और इंद्रियों पर काबू पा लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। अब सुनिए भक्ति रचनाएं। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब झरोका के अंतर्गत आपको बता देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

का भाग 297। संगीत सरता सुबह 6:45 पर सुनेंगे श्रृंखला विविध भारती के खजाने से, कलाकार गायक दिलशाद खां से बातचीत, प्रस्तुति छाया गांगुली। इसे आप शाम को 6:45 पर सुन सकते हैं। 7 भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम है राही प्यार के, 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी कार्यक्रम, आलेख एवं स्वर सविता सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम आप दिन में पुनः 2 सुन सकते हैं। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार, ये केंद्रित होगा अभिनेता केएन सिंह पर, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप रात 9:30 पर पुनः सुन सकते हैं। दिन में 10 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेज श्री कामले। दिन में 11 कार्यक्रम रंग तरंग, दिन में 12 समाचार, दिन में 12:05 पर सुनेगा कार्यक्रम यादों की महफिल, दोपहर 1 आप सुनिएगा कार्यक्रम सुरीला सफर, 2:15 पर सुनिए दोपहर समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे, 3 सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, दोपहर 4 सुनिएगा पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत डर्मेटोलॉजिस्ट से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2, संपादन प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। शाम 5 छाया गीत, 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम तराने नए पुराने, शाम 6 हिंदी में समाचार सुनिएगा, जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, फिल्म आशिकी।

रात 8 बजे कार्यक्रम हवा महल में सुनिए प्रसन्न तू तू मैं मैं, लेखन अशरफ अली सिद्दीकी, निर्देशन मुख्तार अहमद। रात 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक कार्यक्रम। रात 8:45 पर समाचार संध्या। रात 9 बजे सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर सलमा सैयद, प्रस्तुत करता राघवेंद्र सिंह नेगी।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का भाग 297। आज आप सुनेंगे।

विभीषण के श्रीराम के शरण जाने के साथ ही शत्रु की सेना का भेद जानने को रावण ने जो गुप्तचर भेजे थे उनकी वास्तविकता वानरों से अधिक देर तक छिपी न रह सकी। वे पकड़ लिए गए। सुग्रीव ने आदेश दिया कि उनका अंग भंग करके उन्हें लंका भेज दिया जाए। नाक कान काटे जाने की बात सुनकर गुप्तचर त्राहि त्राहि कर उठे और वानरों को ऐसा न करने के लिए श्री राम की सौगंध दे दी। हाथ पांव बांधकर जब उन्हें लक्ष्मण जी के सम्मुख लाया गया तो दयालु लक्ष्मण ने उन्हें बंधन मुक्त कराया। रावण के नाम एक पत्र देकर गुप्तचरों को ये मौखिक संदेश पहुंचाने को कहा कि सीता जी को सादर वापस लाकर वो श्री राम की शरण आए, अन्यथा अपना काल आया ही समझे। लंका पहुंचकर रावण से अपनी दुर्गति और लक्ष्मण का संदेश सुनाते हुए गुप्तचर शुक ने निवेदन किया, हे नाथ, वानर सेना का विवरण तो 100 करोड़ मुखों से भी करना संभव नहीं है। जिसने लंका जलाई और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया उसका बल तो अन्य वानरों की तुलना में कुछ भी नहीं है।

0: आज हम ले आए हैं सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद दिलशाद खान से कांता गुप्ता की बातचीत। ये बातचीत वर्ष 1985 में रिकॉर्ड की गई। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
1: ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय हमारे स्टूडियो में मोहम्मद दिलशाद खान विराजमान हैं और संगीत सरता के माध्यम से हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। नमस्कार दिलशाद खान साहब।
2: नमस्कार।
3: हाँ तो दिलशाद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि संगीत के प्रति आपका ये झुकाव कब से हुआ और कैसे हुआ?
2: मेरी जिंदगी में गाने बजाने की शुरुआत पहले हुई है, यानी 3 साल की उम्र से। हमारी शुरुआत हुई तबले पे पंडित गैं प्रकाश घोष जी के हाथ में। बाद में हमारे घर में जो माहौल था वो गाने बजाने का माहौल, यानी बड़े गुलाम अली खान साहब, अमीर खान साहब, विलायत खान साहब, अलाउद्दीन खान साहब, हफीज अली खान साहब और हमारे वालिद साहब बहुत बड़े कॉन्शियस थे। उसी से ये जो शौक कहिए या पैशन कहिए, इसकी शुरुआत वहां से है
1: जी।
2: और बाद में वोकल म्यूजिक, शास्त्रीय गायन, ख्याल गायकी में
1: मुड़ गए आप।
2: मुड़ गए बड़े गुलाम अली खान साहब की, और सलामत अली खान साहब का गाना सुनने के बाद मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला था
1: जी।
2: और 1962 से हमारे जिंदगी में मैं कहता हूं कि इससे बड़ी तारीफ या इससे बढ़ के कोई मौका नहीं है कि मुझे पद्मश्री उस्ताद फैयाद अहमद नियाज़ अहमद खान साहब, जो किराने घराने के खलीफा हैं
1: जी,
2: उनकी शागिर्दी मुझे मिली। और हमारे जिंदगी में ये सबसे फख्र की बात है
1: कि आप उनके शागिर्द हुए।
2: उन्होंने मुझे सारे गायकियों, जितने घराने
1: जी
2: में अच्छी अच्छी चीज है उनको किस तरीके से हमारे गले में बैठाना है, वो सब उन्हीं की देन है।
1: निशाद साहब, मैं ये अभी जानने ही वाली थी, आपसे पूछने वाली थी कि आपने घराने का जिक्र किया था और आपकी गायकी में एक ही घराने की नहीं बल्कि कई घरानों का असर आप मिलता है, तो ये आप क्या घराने में विश्वास नहीं करते या जो भी घराने की अच्छी चीज आपको लगी वो अपने आप?
2: बहुत सही कह दिया आपने। मैं ये मानता हूँ कि ये ख्याल है या ठुमरी है या ध्रुपद है, धमार है, मालकोस में पंचम नहीं लगाना है, ये सब घराने की बात है। जो स्टैंडिंग रूल्स
1: जी
2: वो
1: हाँ,
2: होते हैं
1: जी।
2: तो घराने में जो बात बन जाती वो कुछ स्पॉन्सरशिप की बात होती है, यानी हाँ, महाराजा वगैरह किसी उस्ताद को रख ले, वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, वो घराना बना लेता है। फिर साहब वो जहाँ रहते हैं उस जगह के नाम से दूसरा घराना तैयार हो जाता है। घराना जो है वो कलाकार की जो खूबी है और जो कमी है दोनों मिला के घराना बनता है।
1: गायकी में जिस सप्तक तक आप पहुंच जाते हैं वो आपका एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है।
2: देखिए मेहरबानी है सब।
1: पर इसका राज क्या है?
2: राज ये है कि गुलाम अली खान साहब को मैंने 4 सप्तक गाते हुए सुना है। वो तार अति तार मध्यम तक वो गाते थे
1: जी।
2: और तार तारा उदारा मुदारा और मुदारा के बाद भी अति मंदर सप्तक कहते थे। एक खास सिस्टम स्टाइल है और कुछ टेक्निक है।
1: आप अपने ये गायन के सिलसिले में आप बहुत जगह गए हैं, हिंदुस्तान से बाहर गए हैं, जगह जगह आपके हिंदुस्तान में भी कंसर्ट हुए हैं लेकिन बाहर भी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ के जो ऑडियंस हैं, वहाँ के जो श्रोता हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं हमारे हिंदुस्तानी संगीत को सुनके? कुछ आपको फर्क लगा यहाँ के श्रोताओं में और विदेशी श्रोताओं में?
2: बहुत फर्क है। आप सुन के शायद चौंक जाएंगे कि मुझे कोई आकर पूछा कि साहब आप गौण मल्हार गा रहे हैं तो नट मल्हार गौण मल्हार के गंधार मतलब
1: अच्छा,
2: क्या फर्क है? और मैं मालकोस गाते वक्त जिसको स्वरभेद कह रहे हैं, अनोखा एक स्टाइल है गाने का, वो स्वरभेद में सरगम कर रहा था
1: जी।
2: और वो ऑडियंस में से आके उठ के कोई बाद में मुझसे मुलाकात करके बताया कि साहब आप स्केल चेंज करके गा रहे थे पांचों राग। तो मैं सोचता हूं कि आप फॉरेन यानी विदेश या देश मत बोलिए, सिर्फ ये बोलिए जानकारी ऑडियंस में है और नहीं है बस।
1: हाँ, धीरे धीरे ये हम सभी जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि लोगों की कम हो रही है। जो आम जनता है उसकी रुचि उतनी नहीं है शास्त्रीय संगीत के प्रति, इसकी वजह क्या है? और अगर वजह जो भी है उसमें हम कैसे उसके उनकी रुचि में सुधार ला सकते हैं?
2: अच्छा गाना समझने के लिए जानकारी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: और लव जी इसका नाम

0: यह है क्लासिकल म्यूजिक, यानी इट इज हैज गॉट अ क्लास बाय इटसेल्फ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मास के लिए नहीं है, मास अगर उसको समझ सकते हैं तो ही कैन बिकम ऑल्सो ए क्लास।
1: सही बात कही आप।
0: और क्लासिकल म्यूजिक अच्छी हो या बुरी हो तो ऑडियंस को जैसा गाना बजाना दिया जाएगा
1: वो वैसा ही
0: वही आदत पड़ जाएगी उनकी।
1: एक नवीनता आपने दी है ऑडियंस को, सुनने वालों को, और वो नवीनता है जुगलबंदी के रूप में। सभी जानते हैं कि आपकी बेगम साहिबा श्रीमती जी हैं, परवीन सुल्ताना जी जो कि बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ शास्त्रीय संगीत में आपने पहली ये जुगल जोड़ी बनाई है। तो ये इसके पीछे मकसद क्या था आपका? बिल्कुल नवीन चीज लगी है ये।
0: पहले ये कहूंगा कि ये इंस्पिरेशन मुझे मिला है पंडित रविशंकर उस्ताद अली अकबर खान साहब की जोड़ी से। सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जो जुगलबंदी दोनों गाएंगे वो एक उस्ताद के शागिर्द हो या उस्ताद शागिर्द हो तभी गा सकते हैं। यानी एक ही घराने की तालीम अगर दोनों के पास ना हो तो जुगलबंदी नहीं होती है। इत्तेफाक से परवीन मेरी शागिर्द है और उसे हमारे स्टाइल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। रागियत सच्चाई को कायम रखते हुए भी हाउ यू कैन एक्सप्लोर, आप किस तरीके से उसको नए ढंग से सवाल जवाब के तौर पे, यानी अगर एक साथ सवाल कर रहे हैं दूसरे से जवाब मिल रहा है उसी तरीके से। और हमारे उस्ताद ने खासतौर पर फयाज अहमद खान साहब के एक सिस्टम है बढ़त के सरगम के जिसमें सवाल जवाब आता है कि सबसे अच्छा जुगलबंदी गायन है। मैंने हमारे उस्ताद से सुना है, आप लोग सुने होंगे फयाज अहमद नियाज़म खान साहब के, तो उस जोड़ी से ही मुझे सब कुछ स्टाइल के बारे में जानकारी मिली है।
1: अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे।
0: हाँ जी,
1: आपने भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फिल्मों में गाना गाया है।
0: बस क्लासिकल म्यूजिक के तौर पे
1: गाया है
0: कुछ।
1: तो अगर आपसे कहें कि सुगम संगीत फिल्मों में गाएं तो आप गाना चाहेंगे? मेरा मतलब
0: गाना चाहेंगे जरूर गा सकते हैं, अगर सबसे बड़ी बात हो गाना मुझे पसंद होना चाहिए
1: जी।
0: और आप शायद जानते हैं कि मैंने सिर्फ गाया ही नहीं, मैंने हाल ही में एक बहुत अच्छी आर्ट फिल्म आश्रय जो कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में फिल्म चुनी गई है
1: जी,
0: उसकी म्यूजिक मैंने दी है। उसमें कुछ
1: तो,
0: गजलों हैं
1: जी,
0: गजलें गवाई मैंने
1: गाई नहीं
0: गाई नहीं है।
1: अच्छा, वही मैं जानना चाह रहा हूँ।
0: सबसे बड़ी बात यह है
1: जी
0: कि वो गजल हो, ठुमरी हो, भजन हो, सुगम संगीत हो, ध्रुपद हो, धामार हो, मुझे ये जरूर पता है कि मुझे 12 स्वर चाहिए, मुझे कर्ण मुड़की सपाट गले का कंट्रोल चाहिए जो मैं किसी भी जगह जैसी मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ।
1: बस मैं इसीलिए
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कोई से भी गाने बजाने की स्टाइल कहिए उसके लिए क्लासिकल म्यूजिक की तालीम बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, मैं आपसे यही इत्तेफाक रखती हूँ इस मामले में। तो और ये जान के बेहद अच्छा लगा क्योंकि संगीत तो संगीत, बातें तो आपसे और भी बहुत सी करने चाह रहे थे लेकिन हमारी जो घड़ी है ना ये बिल्कुल अब इजाजत नहीं दे रही है हमें, तो इसलिए आपसे कहना होगा नमस्कार और बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने वालों से भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सुविख्यात गायक मोहम्मद दिलशाद खान से कांता गुप्ता की बातचीत। अब सुनते हैं मोहम्मद दिलशाद खान का गाया राग ललित।

ये था मोहम्मद दिलशाद खां का गाया राग ललित। आज विविध भारती के खजाने से हम चुन लाए थे इनसे की गई बातचीत और इनका गायन। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस गीत के साथ।

0: जोरा बाई की आवाजों में रचना थी नक्षब जराचवी और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने।
1: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

अभी आपने सुना फिल्म बेकसूर का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, रचना थी एहसान रिजवी की और धुन अनिल बिस्वास की।

0: अभी आपने सुना फिल्म जिंदगी का गीत, केएल सहगल की आवाज थी, रचना केदार शर्मा की, धुन पंकज मलिक की।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: बोले विषय गीत में इस समय समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल।

0: नई दिल्ली फिल्म का गाना आवाज किशोर कुमार और साथियों की, रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: अरे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है फूले बिसरे गीत। आइए सुने इसका अगला गाना।

अभी आपने सुना पतंगा फिल्म का गाना शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी राजेंद्र कृष्ण की और धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

अभी आपने सुना नगमा फिल्म का गीत आवाज शमशाद बेगम की, रचना जे नक्शब की और संगीत नौशाद का। इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार। लीजिए सुनिए आज का ये गीत।

0: तेरी शरत
1: अभी आपने सुना फिल्म प्रिंस का गाना और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत के बोल फारूक कैसर और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार की।

0: अभी आपने सुना विश्वास फिल्म का गाना। मनहर और सुमन कल्याणपुर के युगल स्वरों में रचना थी गुलशन बावरा की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना महल फिल्म का ये गीत, जिसे स्वर दिया किशोर कुमार और आशा भोसले ने, रचना थी आनंद बख्शी की, धुन कल्याण जी आनंद जी का।

0: अभी आपने सुना महुआ फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में, रचना कंवर जलालाबादी की, धुन सोनी ओमी।
1: सोफियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

अभी आपने सुना प्रेम पुजारी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, रचना नीरज की और धुन सचिन देव बर्मन का। इसी के साथ ही हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मंजरी वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं

0: चुके हैं पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल डुमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
5: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या

0: 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
2: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
3: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केवंझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
4: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 169 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग

0: मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-2331-0111-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे सुंदर संदेश चरै वेति अर्थात चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वेद वाक्य हमें सिखाता है रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन गतिमान है, जैसे जल यदि स्थिर हो तो वो उपयोग के लायक नहीं होता और प्रवाहमान जल शुद्ध स्वच्छ उपयोग युक्त होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह

भी जीवन में कभी नहीं ठहरना है। यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ही नहीं कहते, यात्रा जीवन को समझने, नए नए अनुभव प्राप्त करने और निरंतर कर्म करते रहने, स्वयं को निखारने और सदैव गतिमान रहने, सीखने और प्रगति पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए चले चलते हैं जीवन की सुगम निर्गम धूप और छांव की इस यात्रा में।

भारत में तो यात्राओं और देशाटन की गौरवशाली परंपरा रही है। यात्राओं से हमें अलग अलग स्थानों को देखने, जानने, तरह तरह की लोक संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारा मन और जिज्ञासु होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आपसी सद्भाव और सहिष्णुता का भी विकास होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि दुर्गम मार्ग से यात्रा किया करते थे। विदेशी यात्रियों का भी भारत में आना जाना था। यूनान से मेगास्थनीज, चीन से फाहियान और व्हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत की संस्कृति को समझने आए। अनुभव, ज्ञान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए यात्रा जरूरी है।

हमारा तन और मन दोनों ही एक निरंतर यात्रा के पथिक हैं। ये यात्रा हमारे जन्म के साथ आरंभ होती है। हम पहली बार संसार को आश्चर्य और मासूमियत से देखते हैं, फिर युवा अवस्था की यात्रा में संवेदनाओं, सपनों और संभावनाओं का संसार हमारे सामने खुलता है। ये जीवन यात्रा का सबसे ऊर्जावान और कर्म प्रधान समय होता है। इसी समय के हमारे निर्णय, हमारा परिश्रम और हमारे कर्म ये तय करते हैं कि समाज हमें किस रूप में याद रखेगा। धीरे धीरे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं हम, और वृद्धावस्था की यात्रा, ये यात्रा पूरे जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब होता है, झलक होती है। अतः जीवन की इस यात्रा को, इस सफर को बड़ी खूबसूरती से सजाएं, सुमधुर और सुहाना बनाएं।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के खड़े पर पांव रखना चाहा, सीमा सुरक्षा की दीवार से सीना तान कर सामने खड़े हो गए
1: विविध भारती पर। और हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा पर। हर रविवार की कहानियां 7 बजे होती है की सैनिकों कहानियां शौर्य के लिए कुर्बान हो जाने की कहानियां अदम्य साहस की कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने की जज्बे की गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की सैनिकों की शौर्य का
0: देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की
0: शौर्य गाथा
1: शब्दों में ढालते हो ही तो बंकिम बाबू ने कहा
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की
1: सुजलाम सुफलाम
0: शब्दों में ढालते हो ही तो बंकिम बाबू ने कहा था
1: शस्य श्यामलाम
0: सुजलाम
1: सुफलाम
0: मलयज शीतलाम
1: शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: अभी आपने सुना था टेल मी ओ खुदा का गाना श्रेया घोषाल और अनुपम आमोद की आवाजों में गीत। अभी आपने सुना था टेल मी ओ खुदा का गाना श्रेया घोषाल और अनुपम आमोद की आवाजों में गीतकार मयूरपुरी संगीतकार प्रीतम।

0: अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आपने जो अभी गाना सुना था
1: अंतराल के बाद
0: फिल्म है हैप्पी न्यू ईयर।
1: अब आजेश्वर चल रहा है और अजीत सिंह की।
0: आपने जो अभी गाना सुना था
1: गीतकार इशाद फिल्म है हैप्पी न्यू ईयर।
0: अब आजेश्वर घोषाल और अजीत सिंह
1: शेखर का है।
0: गीतकार इशाद कामिल और संगीतकार विशाल शेखर का है।
2: जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों
3: ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर
2: एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं। गुल्लक के संतोष मिश्रा
3: एक ऐसे अभिनेता जमीर जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं।
2: गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमीर खान कैसा रहा रंगमंच से खेलने तक का उनका सफर?
4: कैसा रहा रंगमंच से खेलने तक का उनका सफर? थिएटर करते होंगे करते ही सारी

0: चीजें मेरी जिंदगी में आई है, चाहे वो
1: वर्सोज हो, चाहे वो करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई है, चाहे वो वर्सोज हो, चाहे वो एड्स हो,
2: एक्टर काम करने की बात सेलुलॉइड के सितारे में चार बजे जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेलुलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आप सभी का स्वागत है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि नेत्रदान चल रहा है चित्रलोक और आप सभी का स्वागत है। तो श्रोताओं आपको बता दें कि और इसका नेत्रदान राष्ट्र लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना और जीवन में अंधत्व से जूझ रहे लोगों के जीवन में आंखों की रोशनी लाना है और नेत्रदान देखने में मदद जीवन में रोशनी ला सकता है। रोशनी नेत्रदान करने से हो चुके हैं के बाद देखने में मदद कर सकते हैं, तो ये बहुत ही नेक काम है। समाज में नेत्रदान करने से हम भावना के बाद बढ़ती है, नेत्रदान के लिए पहले से संकल्प और इससे समाज में दूसरों की मदद करने की भावना करें बढ़ती है, नेत्रदान के लिए पहले से संकल्प तो आया जा सकता है। अगला तो नेत्रदान करें किसी के जीवन में उजाला भरे, तो आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: अभी आपने सुना द डर्टी पिक्चर का गाना, सुनिधि चौहान की आवाज, गीतकार रजत अरोड़ा, संगीतकार विशाल शेखर।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं अगला गाना।

अभी आपने सुना प्रेम रतन धन पायो का गाना, शान और साथियों की आवाज़ में गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार हिमेश रेशमिया। और अब समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद फिर आप सभी से मिलते हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि कार्यक्रम चल रहा था चित्रलोक, और आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज है अमृता प्रीतम का जन्मदिन। अमृता प्रीतम हिंदी और पंजाबी साहित्य की महान कवित्री, लेखिका और उपन्यासकार थी, और आज ही उनका जन्मदिन है। उन्होंने अपने साहित्य में प्रेम, विरह, स्त्री मन और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से अभिव्यक्त किया, जो कि उनकी रचनाओं में दिखता भी है। उनकी प्रसिद्ध कविता अज आखा वारिस शाहनू विभाजन के दर्द की मार्मिक अभिव्यक्ति है। पिंजर उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे साहित्य की कालजयी कृतियों में गिना जाता है।

उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट ने साहित्य जगत में विशेष पहचान बनाई। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण सहित अनेक सम्मान मिले। उनकी लेखनी में स्त्री की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व की तलाश प्रमुख रही। अमृता प्रीतम आज भी अपनी संवेदनशील और बेबाक लेखनी के कारण साहित्य प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं।

0: अभी आपने सुना स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का गाना, श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी, शेखर रविजियानी, उदित नारायण की आवाजों में, गीतकार अन्विता दत्त, संगीतकार विशाल शेखर।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आपने सुना बॉर्डर फिल्म का गाना सोनू निगम और पलक मुच्छल की आवाज़ों में, गीतकार जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर की, और संगीतकार अनु मलिक और मिथुन। कार्यक्रम चित्रलोक में समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद फिर आप सभी का स्वागत है।

0: बिनी एंड फैमिली फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज, गीतकार एस संजय त्रिपाठी, संगीतकार ललित पंडित।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने सुना योद्धा फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज, गीतकार कुणाल वर्मा, संगीतकार तनिष्क बागीची।

अभी आपने सुना डेढ़ बीघा जमीन फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल की आवाज, गीतकार अर्को और संगीतकार अर्को। तो दोस्तों, समय चितलोक कार्यक्रम का अब धीरे धीरे समाप्त की ओर है, तो आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार। दीजिए कार्यक्रम से इजाजत और सुनते हैं अगले प्रोग्राम को। आप सुन रहे हैं विद्या भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे। जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे, और ये जो दिल धड़कते थे ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूं छोड़ दो से,

0: के सामने चले जाइए।
1: के एन सिंह का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एन सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहाँ उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहकल से।
2: देख के तेरी नजर बेफरार हो गई, इसी हुजूर ठहरे हम शिकार हो गए।

पढ़ाई खत्म करके के एन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आईं। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है। पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गईं। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के एन सिंह

खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, पर ऐन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के एन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के एन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के एन सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

केएनसिंह को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदन लाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। केएनसिंह ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने केएनसिंह को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सुनार संसार का हिंदी संस्करण बना रही थी। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए केएनसिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदन लाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। A.R. कारदार को कुंदन लाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और केएनसिंह जम गए। केएनसिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलकें न झपकाना, कोट, पैंट, टाई, हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से केएनसिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

अपने इंटरव्यूज में वो जग्गा डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को।

0: निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भूलू का किरदार निभाया था।
1: क्या
2: बोलो? इतने
1: कैसे आ गए?
2: चल मेरे साथ,
1: जल्दी चल।
2: अरे वो तो सही,
1: चल। अरे मुझे अपने पाँव से चल लेने, मैं खुद चलूंगा। अरे जिंदा तो है अभी।
3: हाँ।
1: देख पंचनारे के 8-10 फूल तोड़ ला। और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा। लेकिन देख बूटी जा चुका, जलाइयो। हाँ जल्दी से आ।

0: सुबह ये काम तो खत्म हो चला, तू जरा अच्छी तरह से ध्यान रखियो, हाँ ये लिप सूख जाए तो और लगा देना, मैं शाम को आऊंगा।
1: जरा मेरा हाथ दिखाइयो भाई।
2: ओहो मगर कहाँ जाओगे जी से इस तरह छोड़कर?
0: नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ, अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया।
2: शादी बैजी? बैजी? बैजी?
0: अरे कुछ कहेगा भी?
2: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती।
0: अरे जालिम, तुझसे शादी करके कौन अपनी हड्डियों को चूर कराएगी?
2: अभी पक्की नहीं तो कच्ची ही शादी करा दो, क्यों बैजी?
0: अच्छा अच्छा इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी।
3: बैठ जी, अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हरज
0: है? ठीक है भेज देंगे।
2: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी?
0: बस ये कोई 15-20 दिन।
2: बैठ जी, भगवान देखो जरूर है।
0: तो?
2: देख लो दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहू मेरे लिए।
0: हाँ भाई, सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी।
3: बैठी है तो बड़ी खूबसूरत क्यों?
0: हाँ भाई, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो कोकाफ के परी को उठा लाए।
4: शक्ति सामंत को के एन सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई ना कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर, बद्री प्रसाद की भूमिका। फिल्म हावड़ा ब्रिज, प्यारे लाल की भूमिका। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, के एन सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के एन सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण, कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा, रणजीत, अजीत, अमजद खान, डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर के एन सिंह एक छोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाते रहे।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अजय सुनाओ सरदारा, क्या हाल है?

0: वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह वाह।
1: शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के एन सिंह की यादगार फिल्म है।

चिनप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे उन फिल्मों के गाने जिनमें के एन सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में। जहां कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरुदत्त के साथ काम किया, वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई, यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के एन सिंह की आखिरी फिल्म बन गई।

0: अमशूद, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका तीसरा भाग।
1: मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मोमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा। अगर नहीं आता है तो आई विल रिजेक्ट एंटायर माई ट्रेनिंग एंड फाइंड आउट समथिंग एल्स। तो मुझे किसी भी फॉर्म को इमिटेट, अनुकरण नहीं करना है, किसी भी फॉर्म से ये लेके, वहां से ये लेके, वो लेके कुछ गुलदस्ता बनाना है या खिचड़ी बनानी है। सबका आदर करते हुए मैंने ये तय किया कि मुझे मेरी कहानी के लिए नई तरीके की रंग भाषा खोजने की सोचनी पड़ेगी।
2: गजब।
1: कोई ये ना कहे कि मूवमेंट वहां से लिया, कोई यह न कहे कि कॉस्ट्यूम वहां से लिया, कोई ये न कहे कि म्यूजिक यहां से उठाया, लाइटिंग वहां से उठाई, ये कुछ मेरे नाटकों पे आक्षेप नहीं आना चाहिए। इसलिए पहला मैंने टेस्टिंग ग्राउंड जो तैयार किया वो था झुलवा।
2: जी, जो आप वहां से लौट के आते हैं।
1: जो मैं वापस से लौट के आया, दो तीन साल यहाँ का व्यावसायिक नाटक सीखा मैंने, वो भी रह गया था मेरा सीखना।
2: जी,
1: कि व्यावसायिक नाटक कैसे होता है, टूर कैसे होते हैं, हर शो ऑडियंस के साथ कैसे बदलता है, उसके लिए मैंने रिप्लेसमेंट

0: एक्टर की हैसियत से काम किया 200-250, जिसमें लक्ष्मीकांत बेरडे से लेके वर्षा उसगांवकर से लेके सारे एक्टर थे।
1: ये एनएसडी से लौटने के बाद
0: मैंने 3 साल के बाद नाटक किया। अच्छा। मुंबई में आने के बाद तो पहला जो झुलवा मैंने किया वो मेरा टेस्टिंग ग्राउंड था, वो बर्निंग इशू है
1: जी बिल्कुल।
0: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे जो कम्युनिटी है, क्या कहते हैं, जोगते जोगतीनी कम्युनिटी है, वहां पर जो लोग मन्नत मांगते हैं यिल्लम्मा गॉडेस से कि मेरा ये होने दो, पहली जो बेटी होगी मैं तुझे दान करूंगी, और उससे जो कम्युनिटी तैयार हो गई है वो है देवदासी। देवदासी का ही एक अलग रूप है, टेम्पल की देवदासी अलग है, ये ग्राम की सर्विस सेंटर है वो। मतलब देवदासी जो जोगतीन है उसके पास कोई भी पुरुष अगर उसके दरवाजे पे दस्तक दे तो वो किसी भी पुरुष की सेवा करना उसका काम है, वो मना नहीं कर सकती। उसकी उम्र क्या है, उसका गुलिया क्या है, उसका पलाना, वो कुछ नहीं, सी हैज टू बी देयर फॉर डिलीवरिंग द सर्विस। तो ये इशू को लेके मैंने नाटक करने की ठान ली। ये उपन्यास था उत्तम बंडू तुपे, एक सिपाही के हैसियत से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में पुणे के ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने ये लिखा था उपन्यास, और इस उपन्यास पे मैंने काम करने की बात ठान ली। और पहला ही नाटक जो संगीत नाटक अकादमी के किसी एक स्कीम के लिए, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स के लिए मैंने किया, और उसका ओपनिंग शो भारत भवन भोपाल में हुआ।
1: वाह वाह।
0: 10 अक्टूबर 1987।
1: गजब।
0: इसलिए भारत भवन का मेरा रिश्ता अलग है।
1: जी जी।
0: तो वहां पर ये पहला शो हो गया, और वहां पर कारण जी से लेके अशोक वाजपेयी से लेके ऑल हुज हु ऑफ इंडियन थिएटर वो नाटक देखने के लिए थे, और वो पहला ही शो हमारी पहली रन थ्रू थी।
1: ओहो।
0: पर वो जो गजब का शो हुआ है, उसके बाद हमने 400, 450 जितने भी शो किए होंगे उससे बेहतर शो नहीं कर पाए।
1: सयाजी शिंदे थे,
0: सयाजी शिंदे, सुकन्या कुलकर्णी, आदिति देशपांडे, गौरी केंद्रे, आशा शेल, अरे सारे लोग थे।
1: वाह।
0: भारत तांडेल, तो ये सारा 42 एक्टर स्टेज पे थे, फिर बैक स्टेज में 7-8-10 और थे। तो ये मुझे लगा कि वो पहली बार ऐसा सिद्ध हुआ कि नहीं यार, ये कहीं से कुछ नहीं लिया है, उनका कोई ना आपका म्यूजिक है ना डांस है, जो जैसा उसका अंग चलन होगा वैसा वो नाचता है। तो फिर सयाजी को जैसा अंग चलन था सयाजी नाचता था, सुकन्या का जैसा था वो वैसा नाचती, तो कुल मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक बर्निंग ज्वलंत समस्या है आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने। हर साल कितना भी कानून किया जाए तभी 2-2.5 हजार बेटियां भगवान को चढ़ाई जाती, समर्पित की जाती है, और फिर उनका भविष्य किसी को नहीं मालूम। तो वो नाटक का पहले शो से लेकर निरंतर हर शो में पूरा हंगामा जहां वहां हुआ। नामदेव ढसाल जो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, वो पहली बार जब देखने आए, उन्होंने देखा, नारायण सुर्वे देखा, पुल देशपांडे, जितने भी महाराष्ट्र में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जिसने वो नाटक नहीं देखा, या इवन देश में भी, हर जगह वो चला गया। तो नामदेव ढसाल ने मुझे फोन किया कि मुझे तेरा नाटक देखना है, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, आइए। तो मुझे लगता है रविंद्र नाट्य मंदिर में आए थे वो। वो जब देखा उन्होंने तो वो खुद रोते हुए अंदर आ गए बैक स्टेज में
1: जी,
0: और उन्होंने गले लगाया और बोला कि तूने तो मेरी ही कहानी यहां मेरे सामने रखी है, एंड ही वाज इन टीयर्स
1: जी।
0: उन्होंने उसके बाद भी 14 शो देखे, हर बार वो उसी माइंड सेट में आते थे। उन्होंने उसमें से कुछ शो इंटरनेशनल कोई साहित्य का करते थे उसमें लगाया, माधव गडकरी और दया पवार, और इन्होंने एक जागतिक मराठी परिषद हुई उसमें वो जानबूझ के शो रुका हुआ था तो करवाया। तो ये था कि उन्होंने एक वाक्य जो कहा तो मुझे बहुत पसंद आया, जो बहुत फेमस भी है, नामदेव जी ने जो कहा कि हम दलित पैंथर लगभग 35-40 साल होने को आए थे जो भी, कि जो इतना नहीं कर पाए ये नाटक उससे 2 कदम आगे चला गया।
1: वाह क्या बात है, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: पुल देशपांडे ने भी कहा था कि जब वो मेरे बॉस थे एनसीपीए में, मैं जब एनसीपीए नौकरी कर रहा था तो तब मैंने वो नाटक किया था, तो उन्होंने देखा और उस समय तो मिलने नहीं आए, यूजली बैक स्टेज में मिलने आते हैं लोग नाटक खत्म होने के बाद, वो आए नहीं। पर दूसरे दिन जैसे मैं ऑफिस गया तो सुबह इतने लोग मुझे बोल रहे थे, साहब आपका इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे। मैं गया, मुझे लगा कि क्या बोलेंगे, और आते ही उठ के खड़े हो गए बॉस पुल देशपांडे, क्या कहते हैं हमारे सबके आदर्श
1: जी,
0: और गले लगाया और बोले, रात भर नहीं सोया हूं, ना मैं सोया हूं ना उनकी पत्नी मिसेस देशपांडे, वो नहीं सोई, बोले हम रात भर तुम्हारी नाटक के बारे में बातें कर रहे हैं।
1: क्या बात है,
0: सोने ही नहीं दे रहा है तुम्हारा नाटक। तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक वाक्य कहा कि आज नहीं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या किया है, 5-10 साल के बाद पता चलेगा कि तुमने एक भारतीय रंगमंच पे एक नई रंग भाषा का नया आइकॉनिक एग्जाम्पल पेश किया है। तो ये सारा का सारा कहने का तात्पर्य इतना था कि जो मेरा चिंतन था या मेरी सोच थी कि मुझे कोई भी फॉर्म से कुछ भी उधार नहीं लेना है,
1: अपनी धारा बनानी,
0: मेरी धारा बनानी है, और वो देखने के बाद, समझने के बाद, उस अनुभूति को पचाने के बाद लोगों को ये लगना चाहिए ये भारतीय है।
1: जी,
0: जो मेरी खोज थी टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, वो मेरे हर नाटक में वो भारतीय तो लगता है पर कहीं भी उसके रूट्स नहीं मिलते, और कुल मिला के लगता है ये तो भारतीय है सब। आई थिंक ये चाहे वो गजब तेरी अदा या गजब तीचे अदा देखने के बाद की विमेन अगेंस्ट वॉर वो नाटक था।
1: जी जी,
0: अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये औरतों ने युद्धखोर जो पुरुष है उनके विचार के खिलाफ किया हुआ विद्रोह है, एक निषेध है, तो उनके लिए मैं औरत को किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्रेजेंट करूं। मैं 2.5 साल खोज रहा था कि फेमिनिटी किस इंस्ट्रूमेंट से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा या ऑडियंस कर पाएगी। सारे इंस्ट्रूमेंट खंगाल के देखे पूरे देश के, एक भी औरत को रिप्रेजेंट नहीं करता। हारमोनियम पुरुष, तबला पुरुष, ढोलकी पुरुष, ढोल पुरुष, जितना भी है,
1: फिर
0: घुंघरू एक है, पर घुंघरू औरत ने खुद नहीं पहने हैं, वो भी पुरुष ने अपने जाने के लिए

0: उसके पैर में बांधे हुए है। तो मैंने कहा यह भी तो नहीं हो रहा है
1: जी,
0: फिर क्या होगा। तो मेरी पत्नी गौरी केंद्रे घर में किचन में ये कोई उनका छोटा सा एक भगवान के दो तीन ये रखे उन्होंने अपना आरती कर रही थी, तो छोटी जो घंटी है हाथ में लेके टिंग टिंग टिंग कुछ सुनाई दिया और वो क्लिक हो गया, यार जिसकी मैं खोज कर रहा था शायद यही है।
1: वाह।
0: और वहां से पता चला कि जो हमारी वाग्या मुरली की परंपरा है उसके हाथ में भी घंटी दे देते हैं।
1: हाँ।
0: तो फिर उस घंटी को मंगाया हमने 10-12 घंटियां, फिर बजाने वाले को बुलाया, सुर वाले को बजाया और अलग अलग तालों में सिर्फ 12 लड़कियों के हाथ में वो घंटियां देके हमने दिन भर बजवाया और हमें लगा कि इससे हमारा नाटक हो जाएगा।
1: क्या बात है,
0: वो पूरा का पूरा नाटक उस घंटियों से बंधा हुआ है। वो जो औरतें हैं जो अपनी कहानी बता रही है, उनके प्रोटेस्ट की कहानी बता रही है, युद्ध जो आज की तारीख में तो बहुत रेलेवेंट है वो नाटक, उसकी कहानी बता रही है और वो कहानी बता रही है वो उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो बेल है।
1: वाह वाह।
0: वो श्रृंगार का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो गुस्से का भी होता है, वो विद्रोह भी करती है वो बेल, और सबके हाथ में बेल है और उसमें 12 ही औरतें रही, 12 पुरुष 12 औरतें, 25 लोग ऑन स्टेज हैं। तो फॉर्म इवॉल्व करने की मैं जो बोल रहा था आपको कि रंग भाषा को ढूंढने का जो स्वभाव मेरा बन गया, फिर वो हर नाटक में रिफ्लेक्ट हो गया। रणांगण किया उसमें अलग तरीके से हो गया, 4 दिवस प्रेमाचे किया उसको अलग तरीके से हुआ, झुलवा में अलग था, जाने मन जो पूरा इतना फेमस नाटक जो किन्नरों के जीवन पे आधारित था जो NSD रेपेटी ने, उसने तो पूरा देश में हंगामा कर दिया, उसके लिए उसका फॉर्म अपना अलग है, मेरे एक नाटक का फॉर्म दूसरे नाटक के लिए बेकार है।
1: अच्छा मुझे एक बात बताइए, झुलवा ने जिस तरह का हंगामा किया था, क्या आपके लिए अगला नाटक करने से पहले इतनी बड़ी लकीर नहीं खींच गई थी जो आपको रोक
0: रही थी? ज्यादा था। मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूं, जैसे दुबे जी ने कहा था, सत्यदेव दुबे जी, पंडित सत्यदेव दुबे जी ने मुझे नहीं कहा था, उनके जो शागिर्द है उनसे कहा था कि झुलवा देखने के बाद बोले इस लड़के ने झुलवा तो बहुत अच्छा किया पर इसको जो डायरेक्शन की जितनी भी व्याकरण आता था, जादू आती थी, डिवाइस आते थे, सब इसने दांव पे लगा दिए, अब आगे क्या करेगा ये, आगे कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने जैसे सुना, बहुत सीरियसली लेता हूं ऐसे क्रिटिसिज्म को क्योंकि बहुत पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो, तो मैंने ये कसम खाई थी कि फिर ऐसा दोबारा नाटक नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। और फिर एक साल के बाद एक झुंझवारिया से नाटक किया मैंने, जो डेड सीरियस और रियलिस्टिक नाटक था, जो पुल देशपांडे जी ने ही उसका रशियन नाटक का एडाप्टेशन करके मुझे दिया, और वो देखने के बाद लोगों को लगा ये और कुछ है यार। फिर 2-4-5-10 नाटक होने के बाद सत्यदेव दुबे ही बोले नहीं यार, उस डायरेक्टर को ताड़ना संभव नहीं है, उसके पोटली में बहुत ज्यादा जादू है।
1: वाह वाह वाह वाह, सुंदर बात है। इतनी जादुई बात है, यहाँ एक गाना सुनते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: दीवाना है।
1: वामन केंद्र जी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपकी इस पूरी यात्रा की हो रही हैं। मैं केरल प्रवास पर वापस लौटना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बिंदु वहां पर छूट गए। 2 बरस आपने वहां बिताए
2: जी,
1: तो भाषाई समस्या जरूर आई होगी, उससे आप कैसे निपटे?
2: मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की थी
1: जी,
2: क्योंकि जिन लोगों के साथ हमें काम करना था
1: जी,
2: वो देहाती लोग थे वहां के
1: जी। जी बिल्कुल,
2: खासकर तैयम, मुड़िए टू और पड़ेनी, मतलब जैसे शहर में जाते थे, त्रिचूर में गए तो वहां अंग्रेजी तो समझने वाले लोग थे, तो हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते थे, लेकिन ये गांव में ठेठ जाके जो काम करना था वो तो सारे मलयालम स्टैंडर्ड, जो मलयालम है, प्रमाण मलयालम है, वो भी नहीं बोल पाते थे। उनकी अपनी एक बोली, डायलेक्ट होती थी मलयालम की। तो इनसे कैसे निपटाया जाए? पहले 4 महीना तो हर दिन तकलीफ होती थी, मैं और मेरा एक मित्र था, मेरा क्लासमेट हॉरेन भट्टाचार्य, क्योंकि वो इतनी दिन भर मलयालम या साउथ इंडियन भाषा सुनने की आदत नहीं थी
1: जी।
2: मुझे भाषा तो भाषा होती है, उसका अनादर करने की कोई बात नहीं है, पर आपके कानों को वो भाषा सुनने की आदत ना हो और दिन भर केवल मलयालम मलयालम मलयालम, और वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, तो ऐसा लगता हर दिन शाम को सर में दर्द होने लगता था, वो फोनेटिकल एक्सपीरियंस कानों को ना होने की वजह से। तो वाकई हम उसकी तकलीफ झेल रहे थे कि क्या किया जाए। तो फिर थोड़ा थोड़ा कभी चाय वाले के पास, कभी हमारे जो साथ में काम करती थी, जो हमारी दुभाषी जो थी, वो महिला से हम एक एक एक एक एक एक शब्द, या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे भी 2-3 वहां के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ बैठ के, तुम्हारा नाम क्या है, फलाना क्या है, जो डे टू डे की लगने वाली भी 10-20 लाइनें रट लिए, याद कर लिए। और इसी तरीके से फिर वो जो कलाकारों की, और खासकर जिनका मैंने थोड़ी देर पहले वर्णन किया, वो कलाकारों के साथ काम करते समय जो गीता नाम की हमारी एक दुभाषी थी, वो हमारे साथ रहती थी, वो 2 रोल करती थी, वो रिसर्चर भी थी और हमारे लिए भाषांतर करने वाली भी रिसोर्स थी। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उसकी भी अंग्रेजी और हम सबकी अंग्रेजी उतनी कमांडेबल अंग्रेजी तो थी नहीं, पर जितना टूटा फूटा होता था वो होता था। तो जैसे तैसे वो कलाकारों से थोड़ी थोड़ी, एक एक दो दो, हर बार 4-4, 5-5, 10-10 सेंटेंस। तो हमने ये तय किया था कि एवरीडे 10 वर्ड्स नया सीखना है फोनेटिकली, मतलब उच्चारण के तौर पर। और ऐसे करते करते इतना सा एक 100-200 शब्दों का संचय हुआ, जिसमें से हम अपना काम निकालते थे उन कलाकारों से। पर ऐसा होता था कि चलो ये बात तो हो रही, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे, शूट हो रहा है, या पिक्चर निकाल रहे हम उनके, पर लिपि समझ में नहीं आती थी। तो हमारी जर्नी जो होती थी उसमें कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, कौन से दुकान का क्या नाम है, वो नहीं होता था, समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हम कहीं कैननोर में, गांव में, कैननोर जिला है, उसके गांव में तैयम देखने गए थे, और शाम को हम खाना वाना खा के, जो हमारी दुभाषी लड़की थी उन्हीं के घर में, उन्होंने हमको बहुत अच्छा मलयालम व्यंजनों का खाना खिलाया, और हम चल पड़े बस पकड़ने के लिए। हमको जाना था कैननोर, हम कैननोर में होटल में रुके थे। तो चलते चलते आप आके वो छोड़ के चले गए सब उनके घर वाले, और एक होटल वहां, एक छोटा सा झोपड़ी टाइप होटल था, तो उसको हमने मलयालम में, टूटी फूटी मलयालम में कहा कि भाई जो कैननोर में आने वाली बस है जाने वाली यहां से, वो आते ही हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो उसने हाँ ऐसे कह दिया, और वो अपना काम में लग गया। एक बस आ गई, दूसरी चली गई।

0: है। अब जाएं तो कहां गए, तो मैं और हॉरेन हमारे पास कैमरे होते थे, दो दो टेप रिकॉर्डर होते थे, पर वहां ऐसा कुछ डर नहीं था। केरल में लोग बहुत साफ सुथरे और अच्छे थे। अब धीरे धीरे हमने कहा अब कहां, यहां तो रुक नहीं पाएंगे रात भर, तो चलो जहां जिस घर में हमको खाना खिलाया है और हमारी जो दुभाषी रहती है उसी के घर वापस जाते। वो 3.5 किलोमीटर दूर था वहां से, और वो भी भात की खेती से, पैडी फील्ड से ढूंढते ढूंढते, ज्योग्राफी ढूंढते वहां तक जैसे तैसे पहुंच गए। तब 11:30 बज रहे थे।
1: और चावल के खेत तो गीले होते
0: चावल
1: हैं।
0: के खेत तो गीले होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं, जब उसकी फूल गंध ये सब अनुभव करते जा रहे थे।
1: वाह,
0: तो वहां चले गए तो हमारे कपड़ों को भी उसकी गंध आ रही थी, क्योंकि उसके बीच में से जैसे लगते हैं ना फ्लावर्स।
1: जी,
0: तो वहां पहुंचे और नॉक करते समय 10 बार सोचा, यार ये लोग क्या समझेंगे,
1: क्योंकि उनकी आधी रात
0: वो
1: होगी।
0: तो हम निकलते ही सो गए होंगे।
1: जी
0: नॉक किया और सौभाग्य से वो जो हमारी दुभाषी लड़की थी वही बाहर आ गई, गीता नाम था उसका। तो गीता को बोला, सॉरी गीता यार, ऐसा ऐसा हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस एंड नाउ वी डोंट हैव। तो ये लास्ट बस वाली, हमने उसको बोला, और जो जाने के बाद उसने कहा बस पोई।
1: बस
0: हाँ, तो बोली अब क्या करोगे, तो हमने कहा कि आप घर वालों को डिस्टर्ब मत करो यार, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ये तो हमको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये वरांडा है, इसमें हम रुकेंगे। तो उसने बोला, नहीं नहीं मैं आपके लिए चाय बनाऊं, कॉफी बनाऊं। मैंने कहा कुछ मत बनाऊं। तो मैंने कहा ये कि अगर आपको मदद करनी है हमको, तो ये काम करो, 1 घंटा आपकी जिंदगी का दे दो, और एक नई किताब दे दो, कोई नोटबुक दे दो। वो आई और मैंने कहा इस नोटबुक पे जितने मलयालम भाषा में अल्फाबेट्स है, स्वर है, व्यंजन है, उसके आकार उकार इकार सारे है, वो लिख लो। तो उसने वो सब लिख लिए। और मैंने कहा इसमें अंग्रेजी में भी लिखो, इसका मतलब क्या है। तो जब वो बोल रही थी तो मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा था और बीच बीच में मराठी में भी लिख रहा था उसको, ताकि ये मुझे याद हो जाए। और जैसे हो गया, तो मैंने 1.5 घंटा लगा उसको ये सब करने के लिए। मैंने कहा आप जाके सो जाओ आप। सो हरेन भट्टाचार्य जो मेरा दोस्त था एनएसडी वाला, तो वो भी थोड़ा सा झपकी लेने लगा, मुझे गुस्सा आया, वो बस चली गई। क्यों? कि हमें लिपि नहीं आती, क्योंकि केरल में जितनी भी बसेस दुकानों की बोर्ड्स होते थे वो सब असल मलयालम लिपि में होते थे। तो फिर वो रात भर मैं लिखता रहा, ओ क्या है, ब क्या है, क क्या है, ड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लिखता रहा। और पूरी किताब खत्म हो गई, वो नोटबुक खत्म हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, तब 4:30-5 बजने वाले थे। तो अब आइडिया आया कि सब तो सारा सब बालू ही है, यहाँ सैंड है। तो एक डंडा ले लिया और उसमें से लिखना शुरू कर दिया,
1: रेत के ऊपर।
0: रेत के ऊपर
1: हे
0: और
1: बाबा,
0: पहला नाम लिखा वामन, मुझे याद है अभी भी।
1: वाह वाह।
0: हाँ, और फिर सुबह उठते ही उसको हमने ये लिखना शुरू कर दिया। और कम से कम अब मेरी बस नहीं छूटेगी, इतना तो मैंने अनुमान किया। एक रात में 56 अल्फाबेट्स याद कर लिए, लिख लिख के याद कर लिए, वो भी गुस्से में कि बस गई ना। इसका बहुत अहंकार को भी ठेस पहुंची। और हम ऐसा कैसा, ये दूसरे शहर में आए हैं, दूसरे प्रांत में आए हैं, हमको पहले तो लिपि सीखना चाहिए था, भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा तो हमने बोलचाल की तो सीख ली थोड़ी थोड़ी, टूटी फूटी, पर लिपि सीखना रह गया। सो एक रात में लिखा, फिर आगे प्रैक्टिस क्या करता रहा, जो भी बोर्ड आएगा उसको पढ़ना, ट्रेन में जाए, बस में जाए, जो बोर्ड आते थे वो पढ़ते जाता था। और फिर जब कैनोनर पहुंचा, वहां से त्रिचूर पहुंचा, तो पूरी दूसरी एक कॉपी ले ली और वो सब लिखता गया।
1: अच्छा,
0: अंत में इतना हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि मलयालम मनोरमा जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसको भी हमने खरीदना शुरू कर दिया, ताकि वो जो दिमाग में बैठा है थोड़ा बहुत वो वापस इरेज ना हो जाए।
1: वाह वाह।
0: तो ऐसे करके उस लिपि को एक रात में सीखा, और फिर इसके बाद हमारी कोई बस पोई नहीं, साथ रही।
1: सुंदर बात।
0: और ये ऐसा, अब मुझे लगता है कि जब आप आपके प्रांत के बाहर जाते हो, आपके कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा ना कि डिटर्मिनेशन अगर आपका होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
1: लेकिन ये आपके भीतर जो डिटर्मिनेशन है, लोगों के भीतर चिंगारी होती है, आपके भीतर आ गए।
0: हाँ, मतलब वो पहले से ही है, क्योंकि नहीं होती तो फिर जिस गांव से मैं निकला हूं और जो आपके सामने बैठा हूं, ये जर्नी शायद कहीं आधे अधूरे में ही छूट जाती
1: जी, बिल्कुल
0: यहां तक आना, और अभी भी वो चिंगारी बुझी नहीं है, वो आग बुझी नहीं है, अभी भी कुछ बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अभी तो एक चौराहा पार कर लिया है यार, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ मीनिंगफुल करना बाकी है
1: जी।

0: आपके नाटकों की बातें चल रही थी, वो बात अभी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं और मैं उस चैप्टर की तरफ जा रहा हूं जीवन के जो बहुत सुनहरा और जज्बाती है, जहां आप नाटकों का प्रशिक्षण करने जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि कोई बुजुर्ग आएगा और वहां आता एक नवयुवक है जिसकी एक नवयुवती से मुलाकात होती है।
1: ओ, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ गया हूं। तो मैं यहां जब आया, मुंबई वापस आ गया, मेरा सारा रिसर्च का प्रोडक्शन भी किया, रिसर्च भी किया, एग्जीबिशन लगा उसके ऊपर, मेरे रिसर्च मेथोडोलॉजी पे एग्जीबिशन लगा, उसके ऊपर हमने कुछ साउंड एंड लाइट इफेक्ट से और स्लाइड शो किया
0: जी।
1: मेरे पश्चात मैं जब दिल्ली में नहीं था तो वो एग्जीबिशन एक महीना भर चालू रहा, क्योंकि मैं मेरा काम होते ही वापस मुंबई पहुंच गया
0: जी।
1: तो वो एग्जीबिशन रतन थियम जी ने देखा, शो जो पल्स पे किया था ऑटोमेटिक डबिंग और ये करके, उस समय की जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी
0: जी।
1: तो उन्होंने एक डायरेक्टर को, एनएसडी डायरेक्टर जब जो भी रहे हो, शायद मोहन महर्षि थे, उन्होंने कहा कि ये अद्भुत एग्जीबिशन है और मैं इसको इम्फाल ले जाना चाहता हूं। और उन्होंने वो सब जब खत्म हो गया दिल्ली का, वो पैक करके पूरा इम्फाल में ले गए और इम्फाल में एक महीना वो सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, प्रॉपर्टी थी, जो हमने फोटोग्राफ्स लिए थे, उसके ब्लो अप थे, वो सारा एग्जीबिशन उन्होंने जाके मणिपुर में एक महीने के लिए लगाया।
0: वाह वाह,
1: ये भी उसका एक साइड इफेक्ट रहा। दूसरी एक बात है उससे

0: पंडित हैं, ये सब देखने के बाद, ये सारा जो काम देखने के बाद, हमारे जे एन कौशल साहब थे जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं और थिएटर हमारे एनएसडी के एल्यूमिनाई भी रहे हैं, उन्होंने ये सारा जो काम देखा मेरा, रिसर्च का देखा, फोटो देखी, ये देखी, वो देखी, एल्बम्स देखे, उन्होंने एक दिन अलका जी साहब से जिक्र किया कि मैंने ऐसा कोई एक अद्भुत काम देखा है और मैं चाहता हूं कि आप उसको देखिए। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूंगा। तो अलका जी साहब ने कहा मैं तो उसके ऊपर किताब निकालना चाहूंगा, पब्लिश करना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल काम है। तो खैर कुछ दिनों बाद अलका जी साहब का मुझे मैसेज उन्हीं के द्वारा कि भाई अलका जी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अलका जी साहब से मिलने का मतलब तो बहुत बड़ा सपना हो गया, कि मैं जब एनएसडी में गया तब तो अलका जी साहब वहां नहीं थे, वो तो इंग्लैंड चले गए थे या जहां भी और कहीं जगह जहां उनकी सिटीजनशिप है वहां गए थे। तो गया मैं, जब उन्होंने बुलाया तो उस समय वो सारे एल्बम तो वो एनएसडी के पास थे, वो एल्बम उन्होंने देख लिए थे और सामने रख कर बैठे थे। और जाते ही मुझे बुलाया और बोले यार क्या काम किया आपने, अद्भुत काम किया, ये क्या है, ये एक फोटो की तारीफ करते रहे और बोले मुझे इसके ऊपर किताब छापनी है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया कि मैंने कहा यार इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी कि अलका जी साहब खुद उसको छापेंगे, उनकी पब्लिकेशन हाउस की तरफ से, उन्होंने उसके पहले एक ही किताब छापी थी उनकी मिसेस की थी, मिसेस अलका जी की, जो कॉस्ट्यूम के ऊपर थी और बहुत गजब की किताब छापी थी उन्होंने, और बोले मुझे दूसरी किताब ये छापनी है। तो एक तरफ ऐसा लगा कि क्या कहते मन में लड्डू फूट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये सारा तो सारे प्रॉपर्टी तो एनएसडी की है, उन्होंने एनएसडी का ये सब खर्चा किया है। तो मैंने बड़ा डर डर से वो कहा कि सर ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन ये सारा का सारा इसके जो राइट्स है, जो मैंने थेसी सबमिट की है, ये फोटोग्राफ सबमिट की है, ये तो एनएसडी के पास राइट है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो परमिशन देते तो मेरे जैसा खुश नसीब आदमी नहीं होगा। खैर उन्होंने कुछ बात की और फिर उनको जवाब दिया गया कि नहीं हम खुद छाप रहे हैं, उसके लिए हमने 80,000 रुपया अलग से रखा है बजट, 1984 की बात है।
1: जी
0: तो अगर किताब छप जाती तो अब तक तो बहुत बड़ी हो जाती, पर बाद में वो हुआ नहीं, जो भी होना होता है। अब वहां से हम चल पड़े मुंबई की तरफ और यहाँ आ गए तो रोजी रोटी के चक्कर में एक दिन कमलाकर सोनटक्के जी यहाँ पर सांस्कृतिक विभाग के संचालक थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा वामन आपको 1 महीने के लिए अकोला जाना है, वहां पर हम ये कार्यशाला जो स्टेट कंपटीशन में जिनको पहले आते हैं मेडल मिलता है उनके लिए कार्यशाला करना चाहते हैं ऐसे एक्टर्स के लिए, और आप उसके लिए काबिल है मुझे पता है। तो हमने कहा चलो चल, हमें क्या काम मिल रहा है, तो हम चले गए अकोला में। तो वहां के जितने भी ये सारे विद्यार्थी थे, जिसमें गौरी पढ़ते ये भी विद्यार्थिनी थी, तो उनको लगा था कि भाई अब ये वर्कशॉप करने कोई आ रहा है तो बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा। और जब मुझे इंट्रोड्यूस किया वहां के हमारे बड़े रंगकर्मी रहे हैं, तो वहां कोई गवर्नमेंट का जो आदमी था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये भाई वामन केंद्रे हैं और ये आपकी कार्यशाला लेने वाले हैं 1 महीना भर। तो कुछ लोग हंस पड़े,
1: दुबले पतले वामन
0: दुबले
1: केंद्रे
0: पतले वामन केंद्रे, बहुत सारे लंबे लंबे बाल है,
1: जी
0: हीरो टाइप या उस टाइप का हुलिया है,
1: दाढ़ी वाड़ी थी तब
0: दाढ़ी वाड़ी थी थोड़ी बहुत।
1: जी
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: जी
0: तो कुछ लोगों ने यह तय किया, जिसमें से पहली महिला थी या विद्यार्थिनी थी, वो तब सौभाग्यवती नहीं थी,
1: जी
0: कुमारी गौरी पढ़ती थी, सरनेम था उनका। तो उन्होंने कहा कि आज का एक सेशन अटेंड करेंगे और कल से इस बच्चे से क्या सीखना है,
1: ओके
0: ये क्या सिखाएगा हमको। उद्घाटन वगैरह होना था, वो हो गए, सब चले गए और क्लास शुरू हो गई। और 1-1.5 घंटे के बाद वो क्लास रुक गई, तब तक मैंने देखा कि सब हिप्नोटाइज्ड है, कि क्लास की वजह से, जिस तरीके से मुझे पढ़ाने का थोड़ा बहुत तजुर्बा था, वहां केरल में भी मैंने कुछ किया था, फिर दिल्ली आके भी पढ़ाया था बच्चों के साथ, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ मेरे रिसर्च बेस पे एक प्रोडक्शन भी किया था, जिसमें पीयूष मिश्रा जिस बैच के विद्यार्थी है उस बैच के साथ मैंने नाटक किया था, या विभा छिब्बर जो एक्ट्रेस है वो भी उस बैच की थी, या दिनेश खन्ना है उस बैच के थे, तो उसके साथ मैंने उस रिसर्च बेस पे प्रोडक्शन किया था। तो उसका भी एक तजुर्बा था थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने का, और जो लीडरशिप या स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना चाहिए वो सब मालूम था।
1: बिल्कुल
0: तो इन्होंने तय किया था कि हम इंटरवल के बाद जैसे होगा उसके बाद कल से नहीं आएंगे। पर वो जिस तरीके से क्लास हो गई, जिस तरीके से वो वर्कशॉप हो गई, तो फिर उन्होंने घर जाना तो छोड़

0: दो। तो अंतिम दिन उन्होंने ये कहा कि हम मुंबई आना चाहते हैं,
1: ये बात
0: उसका अंदरूनी करंट पकड़ के जो पूछना चाह रहे तो। और बाद में वो गौरी पढ़ते जो थी, कुमारी थी, वो कुछ सालों बाद सौभाग्यवती गौरी वामन केंद्रे हो गई।
1: लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आप उन दिनों में जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनको भूल गए और प्रैक्टिस करने चले गए नाटक की। मतलब
0: नहीं,
1: जीनियस लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं
0: वो
1: उसकी
0: क्या हो गया कि हम वो
1: मिसाल।
0: सांस्कृतिक कार्य संचालनालय में कुछ मैं काम करने गया था, और वहां से मुझे फिर शाम को रविंद्र नाट्य मंदिर में रिहर्सल थी। तो उनको मैंने कहा कि मैं इस कार्यालय में जाता हूं, तब तक आप जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन वगैरह देख लीजिए, 1.5-2 घंटे बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। वैसे मैं आपको वहां से पिकअप करूंगा, या जैसे भी हम फिर चर्च गेट जाएंगे और सीधा रविंद्र चले जाएंगे। पर ये काम करते करते ऐसा हो गया कि मेरे रिहर्सल में देर हो रही थी, तो मैं तो चला गया कहां, रविंद्र नाट्य मंदिर, और मैं ये भूल गया कि मुझे किसी को पिकअप करना था या मैंने किसी को बोला है कि वहां पर खड़े रहो। तो 1-2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, उसके बाद अचानक रविंद्र नाट्य मंदिर के वहां जो गेस्ट हाउस था वहां पर फोन आया कि वामन केंद्रे को बुलाइए। तो मैं वहां पहुंचा, वो गौरी केंद्रे थी, मतलब गौरी पढ़ते थी तब। तो उन्होंने कहा, सर आपने ये क्या किया? मैंने कहा क्या किया? नहीं, आप मुझे बोलने वाले थे, मुझे साथ में ले जाने वाले थे। अरे, मैंने कहा मैं भूल गया।
1: यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो मैं भूलता हूँ।
1: आपकी भुलक्कड़ी के और भी किस्से हैं?
0: बहुत है, मतलब क्या है, ऐसा होता है ना, मैं जन्मदिन मुझे याद नहीं रहता।

0: भगवान, अपना नहीं कि दूसरों का।
1: मुझे मेरा जन्मदिन मालूम नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जाके उसकी खोजबीन करने की कोशिश की, मेरे माताजी से, पिताजी से, मेरे दादी से, मेरे बचपन के दोस्तों से, कुछ लोगों ने मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो साइन होती है वो निकालने की कोशिश की, पर आज तक कोई कुछ पता नहीं चल पाया। तो मेरा जो साइन है वो जो उस दिन का जो बेस्ट होता है वो मैं मान लेता हूँ, ये मेरा भविष्य है आज।
0: जो सबसे अच्छा है,
1: जो सबसे अच्छा है।
0: पर गौरी जी का जन्मदिन भूल चुके हैं आप?
1: हाँ, मैं कई बार भूल चुका
0: हूँ भगवान।
1: क्योंकि जन्मदिन होता है और वो सेलिब्रेट करना होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत सालों तक हमारे संस्कार में ही नहीं था। वो दिल्ली में भी मैं था तब भी नहीं था ऐसा कुछ, वो माहौल ही नहीं होता था हमारे यहाँ। घर में कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत टीका विका लगा के कुछ उसको आरती वरती उतारते होंगे, लेकिन ये बर्थडे मुझे लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ऊपर लादा हुआ कार्यक्रम है। उनकी मार्केटिंग के लिए है ये, रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो गया
0: जी।
1: तो पहले होता होगा राजा महाराजाओं का, गरीब का, श्रमिक का, किसान का, कहाँ बर्थडे होता है उसको कहाँ मालूम है। था मेरे पिताजी चौथी क्लास पढ़े हुए थे, पर बर्थडे वगैरह मेंशन करना होता है, रिक रखना होता है, ये नहीं मालूम था। वो तो किसान है। वो जब कभी एक महीना दो महीने के बाद आपको बेटा पैदा हो गया, चलो भाई वहां के अपने पुरोहित के पास जाओ और फिर उसको पूछा कब पैदा हो गया, वो सूरज जो है ना वो कासरा भर वर आला होता,
0: लो
1: मतलब जो कासरा होता है बैलों को पकड़ने का, जकड़ने का, उसकी लंबाई है ना उतना सूरज ऊपर आया था आकाश में। मेरा जन्म तो सूरज से पहले हुआ है, सूरज उगने से पहले। तो वो सेवन स्टार होते हैं ना, सप्तर्षि, चला उसको गांव की भाषा में तिकाट न बोलते हैं, वो तिकाट न कासरा भर वर आलेले होते। अब वो उसको भी काम आता, ज्योग्राफी कब कितना कहाँ ऊपर आया, उसको जो लगेगा वो इम्पल्सिवली उसके आपका ये जन्म नाम है और आपकी ये जन्म राशि है कुछ ऐसा कह दिया होगा
0: जी।
1: तो वो भी करना होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी थी, इसलिए मुझे मेरा जन्मदिन नहीं मालूम है। तो स्कूल में जब कोई ले गया होगा, पिताजी ले गए होंगे, तो मास्टर जी को जो इम्पल्सिवली लगा वो मेरी जन्म तारीख है।
0: वाह वाह।
1: और वो है 17 जनवरी।
0: अच्छा, वो मास्टर जी की मर्जी?
1: हाँ, मास्टर जी का पेन से जो उतरा वो मेरा जन्मदिन है।
0: गजब।
1: तो मैंने कहा वही मान लो ना, वही है, क्या मालूम है
0: जी, जी।
1: तो उसके बाद मेरे साथ इतने सारे दोस्त गांव आए जिनको एस्ट्रोलॉजी में, कि फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पूरा गांव खंगालने की कोशिश की, घर तो खंगाल लिया, फिर उनको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा कि गुरुवार को इसका जन्म हुआ है और सूरज होने से पहले हुआ है, उषा काल के समय से पहले हुआ है, इतना ही पता लगा। अब उससे वो मेरा ये तुम्हारी ये राशि है, तुम्हारी वो राशि है, तुम्हारा फलाना है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, उससे क्या फर्क पड़ा। तो ये है मेरे जन्मदिन की कहानी
0: जी। और गौरी जी के जन्मदिन भूलने की कहानी?
1: भूलने की कहानी तो हर साल होती है, उनको मैं बोलता हूँ एक हफ्ता पहले से बोलना शुरू करो,
0: अरे भगवान
1: मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो अब ऋत्विक देखता है ये सारा
0: जी,
1: गिफ्ट विफ्ट लाना, गिफ्ट देना माता जी को, पिताजी को, जो भी है। तो ऋत्विक उसमें बहुत, क्योंकि वो अगली जनरेशन का है तो उसको सब संस्कार है
0: जी,
1: तो उसका जन्मदिन हम सबको मालूम है।
0: हाँ।
1: जब ऑपरेशन हुआ वो कितने बजे पहला टैब बोला तो वो सब हमने लिख के रखा, पर वो मेरे समय पे अभी कुछ नहीं मालूम है कि मेरा जन्मदिन वाकई कौन सा है
0: जी। जी जी,
1: ये किसी को भी नहीं मालूम।
0: अच्छा, जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने तय किया कि गौरी जी आपकी जीवन संगनी होंगी?
1: मुझे लगा कि जब वर्कशॉप खत्म होके वापस निकल रहा था और मैं अकोला के प्लेटफॉर्म में आ गया ट्रेन पकड़ने के लिए मुंबई की, मेरा रिजर्वेशन था, तो सारे ही बच्चे आए उन्हीं के साथ और उसमें आधे से ज्यादा रो रहे थे, पर सबसे ज्यादा गौरी जी रो रही थी और ये कह रहे थे कि आज के दिन रुक जाइए।
0: ओके।
1: तो मैंने कहा एक दिन रुकने से क्या होगा। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि नहीं यार, इतने दिन का, महीना सवा महीने का सबका साथ है। तो सभी गांव गांव जाने वाले थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे, बोले सर हम भी आज एक दिन रुकेंगे, आप रुकेंगे तो। तो फिर मैं उतरा, वाकई उन्होंने मुझे उतारा नीचे,
0: अरे कैसे,
1: और फिर मैं रुका और फिर दूसरे दिन वही सिलसिला हो गया। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा, अब जिनको आना है वो मुंबई आए।
0: वाह।
1: और कुछ दिनों बाद गौरी पड़ते जी की चिट्ठी आई मुझे कि मैं 3 महीने के बाद मुंबई आ रही हूँ।
0: ओहो हो।
1: और मैं करियर करना चाहती हूँ नाटक में और आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना सीरियसली नहीं ली बात को, पर वाकई वो जब एक दिन आके सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई हूँ सर।
0: अरे बाप रे,
1: तो मैंने कहा ये तो धर्म संकट आ गया।

0: पर वो अपनी बहन के पास रहती थी आयरोली में,
1: रबालेर
0: वहां रहती थी, और वो हर दिन जाती आती थी। तो मैंने देखा, साल हो गया, दो साल हो गया, वो थकती नहीं है। तो हर बार वो आती है, साथ में काम भी करती है, फिर वापस जाती है। मुझे मालूम था कि वो शादी करना चाहती हैं, वो तो हमारे दोस्त बोलते थे। तो एक दिन मैंने कहा चलो 6 जून को शादी कर लेते हैं, रैंडमली बोला 6 जून को शादी करते हैं, 7 जून को बारिश आती है तो बारिश के आगमन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी, ऐसे करके बोल दिया। फिर घर में बता दिया, मेरे घर में, कि माताजी, पिताजी, चाचा जी लोग आ गए, भाई और एक बहन आ गई। फिर उसके घर में बोला तो उसके भी माताजी, पिताजी और उसकी बहनें तो यहाँ, लगभग 2-3 बहनें तो यहीं थी, मुंबई में थी, कुछ लोग अकोला से आ गए। तो कुल मिला के दोनों साइड से 10-12 लोग थे। देवदत्त साबले हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने ये दोनों फैमिली को अपने गाड़ी में डाला। हमारी शादी हो गई फिल्म सिटी में,
1: अरे
0: स्टूडियो नंबर 1 में।
1: ऐसा क्यों,
0: क्या कहते हो, नोटिस देना पड़ता है 1 महीने पहले। हमने बांद्रा कोर्ट में जाके जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन का 1 महीने का बोल दिया। हमारे मित्र जो एक वहां के अधिकारी थे मोपलवार, और बहुत अजीज दोस्त थे हमारे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी जब भी होगी वो मेरे घर में होगी, मतलब जहां मैं रहूंगा। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, तुम्हारी शादी तो मेरे यहाँ होगी, और वो फिल्म सिटी में अधिकारी थे तब। तो हमने कहा कि चलो कोर्ट में करने के बजाय, तो उन्होंने कहा कोर्ट की क्या बात करते, हम रजिस्ट्रार को यहीं बुलाएंगे। तो रजिस्ट्रार को फिल्म सिटी में बुलाने के लिए पहले जाके हम रजिस्ट्रार से मिले, तो उसने कहा कि मुझे अंधेरी से पिकअप करना होगा, अंधेरी वेस्ट में कहीं शादी है, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से पिकअप करने आऊं। तो ये सारे बाराती तो वहां पहुंचे हैं स्टूडियो नंबर 1 में,
1: और दूल्हा,
0: हाँ, दूल्हा रजिस्ट्रार को ढूंढने गया है। मेरे साथ एक मेरे मित्र विनोद पवार
1: जी,
0: जो प्रमोद पवार के भाई भी है और अपने आप में बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने झुलवा उपन्यास मुझे लाके दिया था
1: जी,
0: वो और हम दोनों रजिस्ट्रार को ढूंढने गए और रजिस्ट्रार वहां आया ही नहीं है।
1: अरे
0: हम वहां 1 घंटा इंतजार कर रहे, 2 घंटा इंतजार कर रहे, वो शादी वाले बोले शायद वो नहीं आएंगे।
1: लो
0: अब उनको कहां ढूंढे, 2-3 घंटा हो गए हम यहीं ढूंढ रहे, इस गली में, उस गली में, यहां इस शादी में आने वाला था, इस शादी में भी आने वाला था, तो कहीं आए ही नहीं वो रजिस्ट्रार। तो अब करे तो क्या करे। अच्छा, तब कोई मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन टू लैंडलाइन ऐसा कम्युनिकेशन था। तो हम दोनों ने तय कर लिया, चलो यार रिक्शा में बैठो और जो वहां पहुंचे हैं बाराती वहां तो चलो, नहीं तो तब तक उनको लगेगा कि दूल्हा भाग गया। इसके मन में ही नहीं है। तो वहां वही माहौल हो गया था कि गौरी और उनके माताजी पिताजी में आपस में यही चर्चा कर रहे थे ना कि भाई वामन ने सही हाँ कहा था ना तुम्हें, क्या ये तुम्हारी अपने मन की कुछ धारणाएं थी। तो वहां हम गए और आत्मा बंसोड़े हमारे मित्र है, वो वहां अधिकारी थे, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने आत्मा को फोन किया, यार रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है, वहां देखो कहीं आया हो। तो वहां पहुंचे हम, तब पता नहीं चला कि रजिस्ट्रार कहाँ है। अब शादी करे तो कैसे करे। कोई 2 मालाएं लाई थी
1: जी,
0: जो उन्होंने मोपलवार जी ने, तो वो माला एक दूसरे को पहनाएंगे तो क्या करिए। तो किसी ने बोला नहीं वो रजिस्ट्रार आया हुआ है, कोई एक आदमी अधिकारी तहसील से या जो कोर्ट से आता है वो। तब तेजाब की शूटिंग चल रही, वो वहां पर बैठा हुआ है, वो शूटिंग देख रहा है। फिर ये आत्मा बुनसुड़े गए, उसको पकड़ के स्टूडियो में लाया, फिर उसने हमारी दस्तखत कर दी।
1: वाह वाह।
0: माता पिता जी गांव से आए हुए हैं, उनको तो ढोल बाजा ढमका ढमका सब वो अपने मन में देख रहे हैं। एक तो एक आदमी आया, उसने साइन करवा लिया, उसने मेरी साइन, उसकी साइन हो गया और दफ्तर बंद किया, उसको आने जाने का पैसा दे दिया, वो निकल गया,
1: हो गई शादी।
0: 42 रुपए में हमारी शादी हो गई।
1: वाह वाह।
0: 42 रुपीज
1: जी जी,
0: वो ये रिकॉर्ड है दुनिया का।
1: दुनिया की सबसे सस्ती शादी।
0: सस्ती शादी। और फिर 20-25 लोग जो थे मित्र थे, श्रीराम बड़े भी थे और ये मोपलवाद की फैमिली थी और ये सब कुल मिला के 25-30 लोग होंगे हम। तो उनके लिए उन्होंने खाने का इंतजाम किया था मोपलवार जी ने, वहां पर बहुत बढ़िया ज्वार की रोटी, बेसन पिठल, झुनका छेचा और भी कुछ कुछ ऐसा खा पी के लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद हम भी अपने घर चले गए। मैंने गौरी को बोला तुम अपने घर चले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: क्योंकि हम एक कमरे में रहते थे।

0: माता जी, पिताजी, चाचा जी, बहन और ये सारे लोग आ गए वहां सोने के लिए जगह का। तो बोले आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा मेरा क्लास है साहित्य संघ में, मैं वहां जाके क्लास कर लूंगा अभी।
1: ओहो
0: ऐसा करके वो कहीं और अपने रिश्तेदार के पास चली गई, मैं क्लास में गया। फिर शाम को कहीं हमारे एक मित्र यहाँ सांता क्रूज में रहते थे, उन्होंने कहा आप दोनों हमारे पास यहाँ आइए, हम यहाँ पार्टी देते हैं आप लोगों को। ऐसा करके हमारी शादी हो गई।
1: गजब गजब गजब, ये तो बड़ा अद्भुत किस्सा है भाई शादी का। और चूंकि आपने तेजाब की बात की
0: तेजाब का
1: तो
0: गाना बनता है।
1: ये गाना सुनते हैं।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। सलमा की ओर से नमस्कार। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो के ना याद हो। रंग तरंग कार्यक्रम का आगाज बेगम अख्तर की आवाज में सुनकर ये गजल, कलाम है मशहूर शायर मोमिन खान मोमिन का।
1: रंग

तुम्हें याद हो कि ना याद हो कि कार्यक्रम है रंग तरंग। लीजिए सुनिए एक एल्बम सॉन्ग अलीशा चुनॉय की आवाज में, म्यूजिक है बिद्दू का।

0: हमारे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
3: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
3: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
3: सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम में अगला गैर फिल्मी गीत है लक्की अली की आवाज में। गीत को लिखा है असलम ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुना जाए फाल्गुनी पाठक की आवाज में गैर फिल्मी गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने। एल्बम का नाम है याद पिया की आने लगी।

0: जेरेमाई जैक्सन अदनान समी की आवाजें हैं अगले गीत में. इस गीत को लिखा है इरफान सिद्दीकी ने, संगीत है अदनान समी का, एल्बम का नाम है एक लड़की दीवानी सी.
1: सरंगी.

साथियों, रंग तरंग कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग है शान की शानदार आवाज में। गीत है विशाल ददलानी का, म्यूजिक कंपोज किया है विशाल शेखर ने। एल्बम का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

0: आइए सुने अगला गैर फिल्मी गीत शोभा मुद्गल की आवाज में। रचना है अनिल पांडे की, संगीत रचना संदेश शंडल्य की, एल्बम का नाम है प्यार के गीत।
1: तुझसे दूर है जा

हर तरफ धुंध है, जुगनू है, ना चराह कोई, कोई पहचाने का बस्ती में अगर जाऊंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। गुलुकार गुलाम अली की आवाज में समात कीजिए शायर मोइन नजर का कलाम, एल्बम का नाम है तेरे शहर में।

0: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी गीत है गायक और संगीतकार भूपेंद्र हजारिका की आवाज में। गीतकार है गुलजार, एल्बम का नाम है मैं और मेरा साया।
1: आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर,
2: आमी एक जाजाबर।
1: पृथ्वी आमा
2: बहुत मशहूर नगमा है भूपेंद्र का।
1: भूले छी निजेर घर, आमी एक
2: जाजाबर का सही तर्जुमा मुसाफिर भी नहीं, बंजारा भी नहीं, आवारा भी नहीं, लेकिन सबसे करीब आवारा है। बिना मंजिल के घूमते रहना, चलते रहना, बहते रहना, इस जमीन पर, इस पूरी जमीन पर जिसे वो अपना घर समझता है या मंजिल समझता है। और घर जो कहीं नहीं है इसे क्या कहेंगे, आवारा कहीं का या आवारा कहीं का नहीं।

खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें। शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समात फरमाए चंदन दास की आवाज में। एल्बम का नाम है कितने ही रंग, और ये होगी कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: श्रोताओं, आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। राष्ट्रीय सेवा विविध भारती इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी समाचार बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
2: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें, आप प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
2: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
1: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
2: अजीत जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
1: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
2: जी।
1: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
2: श्रोताओं, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
1: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
2: जी।
1: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
2: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
1: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
2: जी।
1: लेकिन ये जापान में मशीनों के प्रति सम्मान

0: और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
1: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है, तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
0: जी हाँ श्रोताओ, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था?
1: जी,
0: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओ, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
1: जी,
0: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
1: जी हाँ श्रोताओ, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है।
0: जी श्रोताओ, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर,
1: जी,
0: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारे आभार के पात्र नहीं हैं? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, मशीनों को रिटायर करने की जापान की एक छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है, उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
0: तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है, तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए,
1: जी,
0: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
1: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
0: जी श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
1: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: जी, तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: CIET NCERT presents the program द स्मार्ट मंकी।

मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा।

0: मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी। एक छोटा सा बल्ब भी तो है, पर अगर ना जले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
2: नमस्कार साथियों।
4: मेरा भी नमस्कार।
2: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
4: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
2: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
4: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोक गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
2: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
4: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
2: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
4: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
2: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
5: अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
2: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
4: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
2: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
4: वास्तव में

0: चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
1: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
0: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
1: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
0: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
1: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
0: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
2: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
0: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
1: साहब, ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
0: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
1: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
0: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
1: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
0: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
1: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
0: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
1: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
0: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
1: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
0: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
1: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
0: सिंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
1: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
0: एक तरफ

0: में काली बाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
1: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
0: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
1: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
0: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
1: कालीबाई, तुम्हें हमारा
0: सलाम।
2: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
1: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।

0: रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम था जिगरी दोस्त। आइए सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आप आए आए दिन बहार के।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन। फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है नीरज, संगीतकार है सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है शर्मीली।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी

बतलाते चलें कि आज की इबारत क्या है। मोहब्बत कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास, प्यार यहाँ जो ना करे वो खाक जिए खाक मरे, मर के भी जो ना मिटे ये वो दीवानगी। दूर रहे पास रहे दिल में तेरी प्यास रहे, प्यार के बिना ये भी कोई जिंदगी है। इसलिए उस बेखबर को कोई ये खबर दे कि ये प्यार हमको पागल ना कर दे, क्योंकि आशिकी इम्तिहान लेती है। फिर भी पागल प्रेमी कहता है कि मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। तेरी गोरी रंगत का तो बड़ा चर्चा है, जब तू कमरे में चांदनी बनकर आई तो बिजली का क्या काम है। इसलिए झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, और सच्चे प्यार को तड़पाना अच्छा नहीं। तो बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। ये शोखियां ये बागपन, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। ये रुत प्यार की जुदाई में गुजर जाएगी, मेरी याद तेरा दिल तड़पाएगी। तौबा तौबा फिर क्या होगा। आखिर तो आप फूल हैं फौलाद नहीं, कहीं बुलबुल है किसी बाग की सयाद नहीं। शमा के परवानों को इस घर के मेहमानों को कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को, कि एक से भले दो दो से भले तीन। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ मैं दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की आवाज हूँ। अनहोनी पग में काटे लाग बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, फिर दिल वाली क्यों घबराए।

सुरीला सफ़र के हमारे बहुत सारे साथी हम सफ़र बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफ़र में बन के हम सफ़र हम और आप मिलकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश।

मोहब्बत रूह का वो नूर है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। जो इस आग में ना जला उसने जीना ही कहाँ सीखा। ये वो इबादत है जो फासलों को मिटाकर धड़कनों को एक कर देती है। कोई जाकर मेरे उस बेपरवाह सनम को बता दे कि उसकी सादगी ने हमें दीवाना बना दिया है। अगला मैसेज था ये कि सच्ची मोहब्बत कोई समझौता नहीं, वो खुद का विसर्जन है। मोहब्बत में मैं मिटता है और सिर्फ तू ही बचता है। इसके बाद अगला मैसेज इन्होंने लिखा है कि प्यार एक साधारण इंसान को भी शायर और पूरी दुनिया को एक खूबसूरत ख्वाब बना देता है, और एक पागल आशिक के लिए उसका महबूब ही उसकी बंदगी बन जाता है। तुम्हारी आँखों के आईने में मैं अपनी पूरी हयात देखूं, अगर मिले जो तुम्हारा साया तो धूप में भी बारात देखूं। अच्छा, अगला ये मैसेज हमें मिला है कि दो दिलों की मोहब्बत भरी दीवानगी दास्तां बयां करती है। दमदार इबारत है कायनात की इस कुदरती करिश्माई तोहफा मोहब्बत की। तड़प तन्हाई का खूबसूरत चित्रण प्रेमी युगल के बेसब्री बेकरारी को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। और प्रेमपूर्ण संगीत सफर के इस कार्यक्रम में हम श्रोतागण डुबकी लगाकर तर जाने को बेकरार रहेंगे। तो साथियों, शुरुआत में तो हमने आपको कुछ संदेशे पढ़कर सुना दिए। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ में, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर, पद्मिनी और सुषमा श्रेष्ठ की। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात। और बचपन में बिछड़े तीन भाई उनके माता पिता की हत्या का बदला लेने और बिछड़कर फिर से मिलने की एक क्लासिक कहानी थी यादों की बारात। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस गीत में जो सबसे छोटा बच्चा था वो आज का बड़ा सुपरस्टार है, कौन है वो? और इस फिल्म में खलनायक अजीत का नाम क्या था, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे उनका नाम भी हमें बताएं। तो ये तीनों बातें आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। तब तक सुनते हैं ये खास गीत। इस खास गीत के जरिए बिछड़े भाई कई सालों बाद आपस में मिलते हैं।

आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दे दिए हैं कि वो छोटा सा प्यारा सा क्यूट बच्चा था आमिर खान, और जो फिल्म में खलनायक थे उनका नाम था शाकाल, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे वो थे विजय अरोड़ा। एक मित्र ने ये मैसेज भेजा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम इतना सुरीला होता है कि हर दिन इसके साथ दोपहर का भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। और ये क्या लिख दिया आपने कि आज की इबारत में बहुत सारे गाने हैं, बस हमें लिखने का समय नहीं मिल पाया। चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं।

साथियों, अब तक तो आप भी समझ ही गए होंगे कि आज हम ऐसी फिल्मों के गीत लेकर आए हैं जिनमें परिवार से बिछड़े लोग कई सालों के बाद आपस में मिल जाते हैं। तो इसी कड़ी में अगला गीत है इस फिल्म का, जिसमें बचपन में बिछड़े तीन भाई अलग अलग धर्म और माहौल में पलते बढ़ते हैं। तो इस ब्लॉकबस्टर मूवी में यानी कि अमर अकबर एंथनी में उनकी माता जी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का नाम हमें बताएं, और साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट और किशन लाल कौन थे इसकी भी जानकारी हमें दे दे। इसके अलावा बिछड़ के मिलन की और कौन सी फिल्में आपको याद आ रही हैं हमें वो भी बताएं। तब तक सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह की। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ही गायिका हैं जो बाद में पूर्णिमा बन गई, ऐसा मंदाकिनी जोशी ने एक कार्यक्रम में बताया था, तो बिल्कुल सही बताया था, सही बात है वो। चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो कमेंट्स में हमें जवाब मिले हैं वो ये है कि निरूपा रॉय ने माँ की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में और किशन लाल का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता प्राण, और फिल्म के मुख्य खलनायक रॉबर्ट का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता जीवन ने, जो एक बड़े बॉस और स्मगलर थे इस फिल्म में। तो साथियों हमें ये बताइए कि क्या आपके आसपास कभी ऐसा भी हुआ कि कोई बिछड़ के मिल गया, या कभी कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़कर आपको मिला, तो फिर उसे कैसे घर पहुंचाया आपने, या कैसे उसे घर पहुंचाना चाहिए। कोई घर छोड़ के चला जाता है तो उसे खोजने के अभियान में आप भी शामिल हुए थे कभी, या किसी को ढूंढने में आपने कोई सहायता की थी। कभी कभी घर का पालतू जानवर भी खो जाता है तो क्या करते हैं आप, कैसे ढूंढते हैं, और मिल जाए तो कैसे पार्टी करते हैं, हम भी तो जाने, हम भी तो सुने। लिख भेजिए हमारे FB पेज पर, क्या कभी खोया पाया केंद्र पर गए हैं आप। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है धर्मवीर। तो धर्मवीर फिल्म में दोनों बिछड़े भाइयों के रोल में कौन से अभिनेता थे उनके नाम बताएं। वैसे इस फिल्म में एक हीरो का तो नाम छुपा है, और साथ ही अपने विचार भेज दीजिए हमें।

हमारे दोस्तों ने हमें जवाब भेज दिए हैं कि धर्मवीर में दो जुड़वा भाइयों के रोल में नजर आए थे धर्मेंद्र और जितेंद्र, और उनके साथ में जीनत अमान और नीतू सिंह थी। एक दोस्त ने लिखा है कि सच्चे दोस्त समय आने पर काम आते हैं। ये कमेंट मिला है कि 4 साल पहले हमारा पालतू जानवर घर से गायब हो गया था। बहुत खोजा गया, खोया पाया केंद्र में भी गए और कुछ भी पता नहीं चला। बहुत दिनों तक घर के सभी लोग उसे ढूंढते रहे, उदास रहे, याद तो आज भी आती है। राहों में चाहे कितने ही कांटे हो, वक्त चाहे कितनी ही दूरियां क्यों ना ले आए, सच्चा प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। क्योंकि मोहब्बत फूल की तरह नाजुक जरूर होती है, मगर उसकी खुशबू उम्र भर साथ रहती है। मैं और तुम से हम हो जाना ही मोहब्बत है। प्यार का एहसास अपने आप किसी से रूह से निकलने वाली आवाज़ से होता है। वो किससे होगा या नहीं होगा या कहाँ होगा, ये कोई नहीं कह सकता। बस सब आत्मा और समय का खेल है। सुरीला सफर कार्यक्रम में अपने विचार, अपनी बातें, अपने संवाद, अपने पैगाम, अपने संदेश, अपने मैसेज, अपने कमेंट्स आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं। तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। इस दार्शनिक गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है धर्म करम, जिसकी कहानी नाटकीय और भावुक थी। तो इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था और खलनायक की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, लिख दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो लगातार भेजते रहिए अपने कमेंट्स।

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि रणधीर कपूर और राज कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और मुख्य विलन थे प्रेम नाथ। ये कुछ कमेंट्स मिले हैं कि चार दिन की जिंदगी में किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं। त्रिमूर्ति, वक्त और संबंध, इन फिल्मों में एक बार बिछड़ जाते हैं और फिर सभी लोग दोबारा मिल जाते हैं। पहले फिल्मों की कहानी में ऐसा बहुत दिखाते थे कि एक भाई कुंभ के मेले में खो गया और फिर फिल्म के एंड में मिल जाते हैं। हमें लगता था कि ये जल्दी से मिल जाएंगे। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि इश्क, प्यार, मोहब्बत, प्रेम में तो अक्षर भी अधूरे हैं, तो मोहब्बत क्या पूरी होगी। मोहब्बत जिसकी हमेशा से दुखदाई उसका अंजाम होता आया है, लैला मजनू, सोहनी महवाल, हीर रांझा हो या सास समंदर पार वाले रोमियो जूलियट, सभी के प्रेम का अंत समाज के हाथों से हुआ है। यही वजह है कि शायरों ने भी मोहब्बत की खूबसूरती से ज्यादा उसके अंजाम के बारे में लिखा है। ऐ मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया और मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई। साथियों, अब बात करते हैं समय और भाग्य के फेर में बिछड़ जाने वाले परिवार की कहानी की, जहां वक्त सबका अलग अलग इम्तिहान लेता है और आखिर में ऐसे हालात बनते हैं कि सब आमने सामने आ जाते हैं। निर्माता बीआर चोपड़ा की ये फिल्म हमें क्या सीख देती है वो बताएं, और लाला केदारनाथ की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता का नाम भी बता दें। और हाँ, इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, वो कैसे भूल सकते हैं, तो लिख दीजिए जल्दी से। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम आप बताएंगे हमें, और साथ में ये भी बताएंगे कि इस जोहरा जबी का नाम क्या है।

0: हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि मोहब्बत वो जुनून है जो मिटती नहीं फना होकर, ये रूह में बसती है सांसों की सदा होकर, चांदनी का क्या गिला जब हुस्न ही महताब बने, हर बात में शोखियां हैं हर अदा लाजवाब बने। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीत हैं आज इबारत में, और उन्होंने गीत के बोल लिखे हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, ऊपर से आप लोग भी इम्तिहान लेने लगे हैं तो हमें तो चक्कर आ रहे हैं, तो ये तो नहीं बताया कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। कमेंट्स में जो जवाब मिले हैं उसमें लिखा है कि ये मशहूर डायलॉग बोला था राजा यानी कि राजकुमार ने, चिनोई सीट जिसके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और लाला केदारनाथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता थे बलराज सहानी, और हिंदी फिल्मों की पहली जोहरा जबी का नाम है अचला सचदेव, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म में वरिष्ठ अभिनेत्री ने काजोल की दादी का किरदार भी अदा किया था। तो साथियों अब बात करते हैं एक्शन और थ्रिलर फिल्म की। ये कहानी है बचपन में बिछड़े दो भाई मोहन और सोहन की। बड़ा भाई सीआईडी अधिकारी और छोटा भाई गैंगस्टर बन जाता है इस फिल्म में। तो इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम हमें बताएं, और ऐसे भी इसमें कलाकार थे जिन्होंने हमेशा पुलिस कमिश्नर की भूमिकाएं निभाई थी, तो उस अभिनेता का नाम भी लिख दें अपने संदेशों में। और अब फिल्म का नाम, गीतकार, संगीतकार आप बताएंगे क्योंकि आपको सब पता है। तो मोहन सोहन कौन थे, और इस ये भी बताएं कि इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से किस जगह पर हुई थी, हमें ये भी बताएं।
1: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं,

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म की शूटिंग बिहार के नालंदा, खंडर और राजगीर के जंगलों में हुई थी। देव आनंद, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ, इफ्तखार, जगदीश राज, एक साथ सारे नाम लिख दिए आपने। इस गीत में आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि जब मैं लगभग 2 साल का था, तब मेरी बड़ी दीदी मुझे शहर में सब्जी मंडी लेकर गई थी। जब घर लौटी तो केवल सब्जियां ही थी घर पर। माताजी ने पूछा कि भैया कहाँ है, तब दीदी को समझ आया कि मैं वहीं छूट गया। तब वे दौड़कर आई और वहां आकर देखा तो मैं वहीं खड़ा रो रहा था। बस इतना ही किस्सा है बिछड़ने और मिलने का। तो हम भी आपसे पूछ लें कि आप मिले कि नहीं। एक साथी ने लिखा है कि वक्त फिल्म, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें वक्त की कदर करना चाहिए। साथियों, बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ जाने वाले उस बच्चे की कहानी जो समाज में खुद को लावारिस पाता है, उसे समाज में अपनी असली पहचान और अपने पिता को ढूंढने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं उसे फिल्म का गीत। तो बताइए उस गीत के बोल क्या है, गीतकार का नाम क्या है, फिल्म का नाम भी बता दीजिए, संगीतकार भी बता दीजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि इस मूवी में गंगू गणपत किरदार को किस दिग्गज महान अभिनेता ने निभाया था।

साथियों, हमें जवाब मिले हैं कि फिल्म का नाम था लावारिस। अलका याग्निक की आवाज थी, गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। और गंगू गणपत की जो जो किरदार जिस अभिनेता ने निभाया था, उनका नाम था डॉक्टर श्रीराम लागू। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि वक्त फिल्म की एक सीख होने और अच्छी लगती है कि कितने ऊंचे हो जाएं पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बहुत बलवान होता है, एक झटके में अर्श से फर्श पर ला देने के का सामर्थ्य रखता है। फिल्मों में खोए हुए भाई बहन पिता पुत्र तो मिल जाते हैं, किंतु हमारे कमेंट्स गायब ऐसे होते हैं कि मिलना मुमकिन नहीं लगता। वक्त फिल्म का दूसरा

मशहूर डायलॉग है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाएगा तो खून निकल आता है। और ये एक मैसेज मिला है कि वक्त में अचला सचदेव ने जोहरा जबी का किरदार निभाया था, और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, और मेरी लिस्ट का पांचवा गाना भी शामिल हो गया है।

दोस्तों हमें बताइए कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे और इस फिल्म में अभिनेता कौन थे, ये भी हमें बता दीजिए।

दोस्तों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। आवाजें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर साथियों की। इस गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस फिल्म में अभिनेता का नाम लोगों ने लिख दिया है अमिताभ बच्चन।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, अपनी बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए। आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे सुंदर संदेश चरैवेति अर्थात चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वेद वाक्य हमें सिखाता है रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं, जीवन गतिमान है।

जैसे जल यदि स्थिर हो तो वो उपयोग के लायक नहीं होता और प्रवाहमान जल शुद्ध स्वच्छ उपयोग युक्त होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह हमें भी जीवन में कभी नहीं ठहरना है। यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ही नहीं कहते, यात्रा जीवन को समझने, नए नए अनुभव प्राप्त करने और निरंतर कर्म करते रहने, स्वयं को निखारने और सदैव गतिमान रहने, सीखने और प्रगति पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए चले चलते हैं जीवन की सुगम निर्गम धूप और छांव की इस यात्रा में।

यात्राओं और देशाटन की गौरवशाली परंपरा रही है। यात्राओं से हमें अलग अलग स्थानों को देखने, जानने, तरह तरह की लोक संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारा मन और जिज्ञासु होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आपसी सद्भाव और सहिष्णुता का भी विकास होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि दुर्गम मार्ग से यात्रा किया करते थे। विदेशी यात्रियों का भी भारत में आना जाना था। यूनान से मेगास्थनीज, चीन से फाहियान और विंस

सांग जैसे विदेशी यात्री भारत की संस्कृति को समझने आए, अनुभव, ज्ञान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए यात्रा जरूरी है।

हमारा तन और मन दोनों ही एक निरंतर यात्रा के पथिक हैं। ये यात्रा हमारे जन्म के साथ आरंभ होती है। हम पहली बार संसार को आश्चर्य और मासूमियत से देखते हैं। फिर युवा अवस्था की यात्रा में संवेदनाओं, सपनों और संभावनाओं का संसार हमारे सामने खुलता है। ये जीवन यात्रा का सबसे ऊर्जावान और कर्म प्रधान समय होता है। इसी समय के हमारे निर्णय, हमारा परिश्रम और हमारे कर्म ये तय करते हैं कि समाज हमें किस रूप में याद रखेगा। धीरे धीरे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं हम। और वृद्धावस्था की यात्रा, ये यात्रा पूरे जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब होता है, झलक होती है। अतः जीवन की इस यात्रा को, इस सफर को बड़ी खूबसूरती से सजाएं, सुमधुर और सुहाना बनाएं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में

0: एफसी अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुकुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
5: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप करुण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आप

0: आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
0: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या

0: स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला सदाबहार गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है आराधना।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुना जाए वो गीत जिसमें आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। और इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। तो कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अन्नदाता इस फिल्म से। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी और इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: ही रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अनुरोध। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ यहाँ।
0: बिल्कुल, और मुलाकात तो होती ही रहती है ना, अब सखी सहेली के साथ माइक के साथ
1: जी
0: मुलाकातें बारी बारी से होती रहती है सखियों से। और एक मिलना होता है, मन का मिलना,
1: जी
0: वो बहुत जरूरी है।
1: जी
0: बस वो मुलाकात होती रहे ये काफी होता है। और जब मन मिलता है
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि दो लोगों का मन मिलता है तो दोस्ती बहुत लंबे समय तक कायम रहती है।
1: बिल्कुल सही
0: दो
1: कहा।
0: लोगों का जब मन या दिल मिलता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और जब दो दिल मिलते हैं तभी तो दाम्पत्य के सूत्र में बनते हैं ना।
1: और मिल तो जाते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बन जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं एक बहुत लंबी पारी तक उन्हें साथ जाना होता है। इस लंबी पारी तक साथ चलने के लिए बहुत सारे सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं, कई बार एक बहुत सारी बातों को कहते हैं कि समझ के लेना वाली बात जो होती है, कि हमेशा होड़ नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, तू तू मैं नहीं करनी है, सिर्फ उन बातों को तालमेल कैसे बिठाए ताकि घर में एक सुख शांति का वातावरण बना रहे, सबके बीच में प्रेम बना रहे। तो सुखी दाम्पत्य जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे जो सुनने वाले लोग हैं, अगर वो बहुत लंबी पारी तक आ चुके हैं, यानी कि आज उनके विवाह जो वैवाहिक जीवन है उसको 35 बरस, 25 बरस हो चुके हैं या 15 बरस हो चुके हैं, तो अब तक जीवन कैसे रहा और कैसे तालमेल बिठाया उन्होंने अपने साथी के साथ में।
0: और जब दोनों में से कोई एक नाराज हो जाता है, रूठ जाता है,
1: जी
0: तकरार होती है, तो मेल कैसे होता, अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और ये तो आज हम ये बातें इसलिए शुरुआत में ही करें कि सुखी दाम्पत्य जीवन आज का एक मुद्दा है,
1: जी
0: विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोता भी इस चर्चा में शामिल हों।
1: और सोमवार
0: तो
1: के दिन हम जो प्रादेशिक व्यंजन है उनको लेते हैं, और अगस्त के पूरे महीने में हमने लिए हैं पश्चिम बंगाल के जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं ना, चाहे वो तीखे चटपटे हों या मिठास लिए हुए हों, ऐसे व्यंजन हमने बताए हैं। तो आज ये आखिरी सोमवार है अगस्त के महीने का, तो बहुत सारे जो व्यंजन हम जिन्हें शामिल नहीं कर पाए हैं उनको आप जरूर बताइए उनके बारे में, और कुछ नाम हमने दिए हैं हमारे श्रोताओं को, उनके बारे में वो बताएं और उनकी रेसिपीज लिखकर साझा करें।
0: और कथा सुधा की बात भी करेंगे, कथा सुधा सुनवाएंगे। और आज एक खास दिन और है, एक ऐसी कवित्री लेखिका का जन्मदिन है जिन्हें जब हम याद करते हैं तो बस प्रेम का भाव, प्रतिरोध का भाव मन में पैदा होता है कि उनकी लेखनी में प्रेम भी था, प्रतिरोध भी था। और बड़ी बेबाक लेखिका
1: जी
0: मानी जाती है, रसीदी टिकट आप सबने पढ़ी होगी। और भी उनकी कृतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा उनका लिखा ये गीत सुन लेते हैं।

0: कादम्बरी फिल्म का ये गाना था, और ये इसलिए गाना खास तौर से सुनाया गया,
1: जी
0: अमृता प्रीतम की याद को ये गाना समर्पित था। और अमृता जी की के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम श्रोताओं को दे दें कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्हें भारत के जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है।
1: जी
0: उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आखा वारिस शाहनू के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, और इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का बहुत ही दुखद वर्णन है। और इसके अलावा इनके उपन्यास है 5 बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां, और इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने रसीदी टिकट तो जरूर पढ़ी होगी, कहानी संग्रह कहानियां जो कहानियां नहीं है कहानियों के आंगन में, और संस्मरण कच्चा आंगन, एक थिसारा, और बहुत सारी अन्य कृतियां भी हैं इनकी। और जब भी हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो
1: जी
0: खास तौर से महिलाएं उन्हें उनसे प्रेरणा भी पाती हैं, क्योंकि उनकी उनकी जो लेखनी थी उसमें पंजाब की मिट्टी की सौंधी गंध थी, उसमें
1: जी
0: प्रेम की आवाज थी, विरह भी था, विद्रोह भी था, तो ये सब कुछ एक महिला को परिपक्व और परिपूर्ण बनाता है। तो अमृता जी की याद को आज नमन कर रहे हैं।
1: और अब सुनते हैं कथा सुधा।

0: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: छह आने का टिकट, इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना।
2: आप ही किशोर जी हैं
3: जी।
2: आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
3: अच्छा।
2: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
3: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ हाँ हाँ हाँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया।
2: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृत वाणी मैं नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
3: जी?
2: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
3: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता।

0: सकता हूं। लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
1: किशोर जी,
0: जी
1: आज तो आपकी छुट्टी है।
0: हाँ,
1: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
0: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भीखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2-6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
1: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
0: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
1: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
0: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

0: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है और श्री राम खिलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझमें इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे।

0: जी हाँ, हैं तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं। आध घंटा हुआ लाए गए हैं, आप उन्हें ले जाइए।
1: जी, रिसीवर मैंने रख दिया। अच्छा, तो हमारे श्री राम खिलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी है, भाई मान गए। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होते हैं। ऐसा लग रहा है जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। अब ये राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह जैसे आदमी इतना पी सकते हैं कि थाने में बांध दिए जाए, तो हम जैसे न पीने वालों के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बहरहाल, अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था और मैं हवालात पहुंचा। पूरे 5 रुपए देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर ले आया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींच कर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। आखिर मुझे ही पूछना पड़ा, राम खिलावन शरण जी, भला आपको यह क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकले?
2: मैं शपथ से कहता हूं कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है।
1: क्या?
2: बदमाश पुलिस वाले ने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया।
1: अच्छा, वो क्यों भला?
2: अरे ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूं। आज 6 आने की टिकट ने मुझे मार डाला।
1: ये कैसे भला?
2: देखिए किशोर जी, आपने मुझे 6 आने का टिकट दे ही दिया था।
1: हाँ,
2: जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने 2 आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ, ट्राम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था, और उसी ट्राम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टालीगंज गया, बालीगंज गया, बहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदह, राजा बाजार, श्याम बाजार, बाग बाजार, डलहौजी, हाई कोर्ट गया, बहू बाजार गया, हैरिसन रोड गया, नीम तल्ला भी मैं घूम आया।
1: तो
2: शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी तो पास में 2 आने पैसे थे तो नाश्ता डट कर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर पहुंचा, वहां उतरा। मैंने हिसाब लगाया, 6 आने के टिकट में मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था, और अब घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुकता, और 6 आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया घूमना चाहिए था, और इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था। लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था, क्योंकि एक एक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए, क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था, और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। इधर ये ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी। जिस पर बेलगछिया लिखा था, मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया। मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम में बैठा रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा।
3: अब आप जाइए।
2: मैंने कहा मैं धर्मतल्ला जाऊंगा।
3: 11 बज गए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप? अब यहां से कोई ट्राम नहीं जाएगी।
2: किशोर जी, मैं चौंक उठा। मैंने कहा कि क्या क्या क्या आप कोई ट्राम नहीं जाएगी, हैं? नहीं जाएगी यहां से?
3: कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस

0: मिल जाएगी, चले जाओ।
1: मैं उठा वहां से, लेकिन मेरी जेब में एक पैसा नहीं। मतलब बस पर कैसे आता? मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतला यहां से कितनी दूर है?
0: होगा कोई 5 मील।
2: तो फिर आपने क्या किया?
1: किशोर जी, मैं पैदल धर्मतल्ले की तरफ रवाना हुआ। करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुंचा। पूरी तरह थका हुआ था। धर्मतल्ला में कोई ट्रॉम नहीं मिली, इसलिए मुझे वहां से भी पैदल ही रगड़ना पड़ा। डेढ़ बजे के करीब मैं उस बड़े चौराहे पर पहुंचा। किशोर जी, आप जरा देखिए ना, 9 मील पैदल चलकर आया था। दिन भर खाना भी नहीं खाया था, प्यास जोरों से लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकल पड़ती थी। और उसी समय एक पुलिस वाले ने बढ़कर मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले, और अगर निकले भी होंगे तो टूटे फूटे, बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया। उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया कि मालूम होता है सर, दारू पिए हैं, पैर सीधा नहीं पड़ते, जबान नहीं खुलते, नशा में बेहोश है। तो दूसरे ने कहा कि तो फिर थाने ले चलो, कल सुबह होश आई जाए। उस समय मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका, या फिर वो मुझे नहीं समझ सके।
2: ओहो, ये बात है भिखू। अरे खाना ले आओ थाली में। भाई राम खिलावन जी, आपका अनुभव तो बहुत बुरा हुआ है। अब मेरी सलाह ये है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइट पर घर से नहीं चले थे।
1: जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे, कह
2: अच्छा,
1: गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन तो हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, चला जाऊंगा।
2: लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
3: छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, पुलिस कर्मी यूनुस खान, ट्राम का कर्मचारी दीपक केसावलेकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: विविध
1: अंतराल
0: भारती
1: के बाद।
0: से। अरे हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं
1: जी
0: तो बस यही बताना है कि ये कार्यक्रम है सखी सहेली, जो आज पहली बार जिन्होंने ट्यून किया होगा उनके लिए जरूरी है बताना कि सखी सहेली कार्यक्रम। और अब हम अपने एक मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो है शादी, दाम्पत्य।
1: जी
0: शादी दरअसल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती हैं।
1: जी
0: जीवन में यदि खुशियां हैं तो गम भी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे में जरूरी है कि हम इनमें संतुलन बनाकर चलें। लेकिन संतुलन बनाए कैसे? पति और पत्नी दरअसल होते एक सिक्के के दो पहलू हैं।
1: जी ममता जी
0: दोनों में से किसी एक को कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी परेशानी नहीं समझे बल्कि अपना कर्तव्य समझे और एक दूसरे के मन को समझे।
1: बिल्कुल। और ये जो रिश्ता है बहुत समझदारी से काम लेने का होता है, प्यार और विश्वास पर टिका होता है जो रिश्ता है पति पत्नी का। कभी भी इस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो जो इमारत है उसका गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब पति पत्नी के रिश्ते की इमारत है, इसके दो आधार स्तंभ होते हैं प्यार और विश्वास, ये स्तंभ अगर कमजोर हो जाएंगे तो रिश्ता ज्यादा समय टिक ही नहीं पाएगा। और जो भी पति पत्नी है जिनके बीच ये दो बातें बहुत मजबूत हैं, इनकी प्यार भी है और विश्वास भी है, उनका दाम्पत्य जीवन मान के चलिए कि हमेशा

0: का सुखमय रहता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो खट्टी मीठी बातें हैं वो तो जीवन का हिस्सा है, चलनी भी चाहिए।
1: बिल्कुल, देखिए ना इसी तरह की कुछ बात हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखी है, लिखा इन्होंने कि कहते हैं कि जो धनुष बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं वो चटक कर टूट जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू होती है। दाम्पत्य जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर एक दूसरे की खूबी को आप सराहते हैं तो कमियों को भी नजरअंदाज करना सीखिए। एक दूसरे की असहमति को समझे और ध्यान दें कि कहीं आप कंट्रोल फ्रीक तो नहीं होते जा रहे। एक दूसरे की कमियों और खूबियों को ही उसकी विशेषता समझे और हर कदम पर अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश हरगिज ना करें, वरना जीवन में सिवाय कलह के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तुम समझो कुछ हम समझे, ये वाला सूत्र अपनाएं और दाम्पत्य की गाड़ी को दोनों पहियों पर चलने दें।
0: और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बदलने की कोशिश ना करें, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो आप उसको उसकी हर अच्छाई बुराई उसकी कमियां खूबियों सबके साथ उसे अपनाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। कहीं आपको सिर्फ खूबियां देखकर किसी से प्रेम हुआ और बाद में कमियों के देखते अगर झगड़े में चीज़ें बदल जाती हैं तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन की निशानी रही है, क्योंकि जहां खूबियां होती हैं वहीं कमियां सब में होती हैं। और एक चीज़ और है ममता जी कि जो चीज़ आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है। ये सबका देखने का समझने का अपना नजरिया होता है।
1: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी

0: जीवन की निशानी रही हैं, क्योंकि जहां खूबियां होती हैं वही कमियां सब में होती हैं। और एक चीज और है ममता जी, कि जो चीज आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है, और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है। ये सबका देखने का समझने का अपना नजरिया होता है।
1: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी।

0: किसी स्त्री के पति हैं, उनकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और ये ऐसे समय में ना एक जीवन साथी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। हो सकता है कि अगर कोई महिला है वो कोई बिजनेस वुमेन है, यानी कि वो नौकरी करती हैं या कोई व्यापार करती हैं, और उनके व्यापार में घाटा हो गया, तो चाहे वो पति हैं या पत्नी हैं, कामकाज जब मंदा होता है या छूट जाता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने लगती हैं। ऐसे में परिवार में लोगों का तनावग्रस्त होना जरूरी है। तो अगर आपके पति तनावग्रस्त हैं ऐसी चीजों को लेकर या पत्नी तनावग्रस्त हैं, तो दोनों एक दूसरे का साथ दें और प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। और ऐसे में यदि अगर ताने देंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ही ये नुकसान हुआ, तुमने ऐसे ठीक से नहीं किया, तो ये चीजें है ना घर में चीजों को और क्लेश बना देती हैं।
1: मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे की बात को समझें, और जहां कोई एक परेशान है तो साथी को चाहिए कि वो आपकी उस परेशानी को दूर तो नहीं कर सकता है कोई एकदम से, लेकिन उस परेशानी में ये जताना बहुत जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो ये नौबत जो आपने ऑफिस की बात कही, चाहे वो हो, चाहे एक दूसरे में से कोई जोड़ा बीमार पड़ जाता है तब की समस्या है, या फिर कई कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसका शिकार हो जाता है, तब तो निश्चित रूप से दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है। बात जरूरत की नहीं है, जरूरत तो आप और भी तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यहाँ पर बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं, दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की नींव होती है, मतलब प्रेम की बुनियाद पर ही टिका होता है, उस प्रेम को टूटने से कैसे बचाएं।
0: और जैसे आपने कहा ना कि चिंता ना करते हुए अगर कोई भी एक शख्स ये कह देता है कि आप चिंता मत करो मैं हूं ना आपके साथ,
1: बिल्कुल,
0: तो ये जो शब्द हैं बहुत कहते हैं कि मजबूत बना देते हैं।
1: अब एक गाना सुनते हैं।

0: टिकाऊ रखने के
1: हाँ
0: लिए
1: हाँ
0: बच्चे बच्चे की भूमिका बहुत अहम होती है।
1: हाँ
0: कई बार बच्चे पति पत्नी के झगड़ों में आकर अच्छी बड़ी भूमिका निभाते हैं और झगड़े को खत्म भी करवा देते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: कई
1: कहा।
0: बार ये माता पिता भी बच्चे के लिए अपने झगड़े खत्म कर देते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। और कई बार ऐसा भी होता है ना, जब मुश्किल का समय आता है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, हमने एक सिर्फ कारोबार या नौकरी की बात की, ऐसे समय में पत्नियां एक तरीके से इस चीज को टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी। यानी कि बात बात पर आपको अपने, चाहे वो कोई छोटी सी नोकझोंक वाली बात है या कोई बड़ी समस्या आपके साथ में हुई है
0: चंचल
1: दाम्पत्य
0: जी,
1: जीवन
0: यहाँ पर अब उल्टा
1: में
0: भी होने लगा है। हमने तो सुना है कि अब महिलाएं ये कहती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको घर से निकाल
1: अच्छा तो भाई
0: दूंगी।
1: दोनों ही परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है। ना तो पति को घर से बाहर निकालने वाली परिस्थिति ठीक है, ना ही मायके जाने वाली है। जो भी कोई समस्या आपके जीवन में आई है, जो दाम्पत्य जीवन के साथ में उलझनों को बढ़ा रही है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करना है और दोनों को मिलजुल कर ही करना है। अगर किसी तरह से हमें पता लगता है कि जीवन साथी के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या भी है, किसी रोग से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में भी धैर्य से काम लेना है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो पति हैं या पत्नी, तो उनका सहयोग अगर मिलेगा, आप ध्यान देंगे, तो वो जो भी आपका रोग है या आपकी समस्या है, उससे जल्दी स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर, उबर कर बाहर आ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कुछ मिलती जुलती बातें हमारे श्रोताओं की ओर से भी आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी खुशी है, जो पारस्परिक सम्मान, अटूट विश्वास और खुले मन से संवाद रूपी की चेन में बंधी हुई है। अध्यात्म और ज्योतिष दृष्टि से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती को ध्यान में रखना चाहिए। और इस मतलब आध्यात्मिक की ओर ले जाने की बात इन्होंने कही है।
1: जी
0: दरअसल आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, ऐसे में आपको सबसे बड़ा बड़ी कुंजी तो यही है कि आप एक दूसरे की बात को सुने और समझें, तो काफी कुछ मुश्किलें हल हो जाती हैं।
1: एक बड़ा छोटा सा बात छोटी सी कही है श्रोता ने, लेकिन अहम बात है। उन्होंने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन कोई बना बनाया नियम नहीं, ये दोनों की भागीदारी की निरंतर प्रयासों और आपसी समझ के बिना किसी शर्त को एक दूसरे को किसी शर्त के बिना एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना से ही ये रिश्ता फलता और फूलता है।
0: चंचल जी, दरअसल ये बड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक डोर होती है
1: जी
0: दाम्पत्य की, और इस नाजुक डोर को टूटने से बचाना ही सही होता है। हालांकि अब दौर बदल चुका है, जब हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की जब बात आती है, तो यही होता है कि आपकी, जब आपका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो आप एक दूसरे के साथ को छोड़ दें। लेकिन बहुत मुश्किल होता है छोड़ना भी।
1: जी
0: जोड़ना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही कठिन होता है। तो जब आप घर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज्यादा रोज रोज की मारपीट, लड़ाई झगड़े जब एकदम
1: जी
0: अति हो जाती है, तो निश्चित रूप से छोड़ना ही बेहतर होता है। लेकिन उसके लिए लड़कियों की बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, बच्चों लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जो परवरिश होती है, उनको शुरू से ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। अब पिछला समय जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही सम्मान देना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि घरों में लड़कियां कभी पिता के सहारे, कभी भाइयों के सहारे, फिर कभी दोस्तों मित्रों के सहारे ही अपना जीवन जीती हैं। तो
1: जी
0: जब पति पत्नी के बीच ऐसी नौबत आती है, तो वो औरत ये सोचती है कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। तो ये जो सहारे वाली बात मन में आती है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो दौर बदल चुका है।
1: और कई बार जब त्रिकोण वाली परिस्थिति आती है ना, अगर आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, पति की कोई अगर महिला मित्र है या पत्नी की कोई पुरुष मित्र है, तो उनको लेकर भी कई बार संदेह मन में इस तरह के आते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है।

जीवन को संभाला जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक साथी की नाइट शिफ्ट होती है और दूसरा घर में है, मान लीजिए पति की नाइट शिफ्ट है और पत्नी घर में रहती है और घर की पूरी देख रेख कर रही है, उसके कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी है, तो यहाँ भी टसल होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसको नींद की ज़रूरत होती है पति को, और वो घर उतना मैनेज नहीं कर पाता है, तो भी मुश्किलें होती हैं। तो ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण टकराव होते हैं।

0: देखो ना तेरे मेरे मिलन की, ये रहना अभिमान फिल्म, ये भी तो
1: जी
0: दाम्पत्य जीवन पर ही
1: आगे
0: आधारित है,
1: किस तरह
0: जहाँ
1: से थोड़े से अहम को लेकर दाम्पत्य जीवन टूट जाता है।
0: तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन भाई दाम्पत्य जीवन सुखमय ही नहीं अपितु तो आनंद युक्त होना चाहिए, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लोगों के पास आनंद नहीं है, बहुतेरे अपने उस बेगाने प्यार की तलाश और मोबाइल में कर रहे हैं, तो क्या किया जाए।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब कुछ खट्टे मीठे चटपटे जिस तरह के भी व्यंजन हैं इनकी बात हो जाए। और आज हम बात कर रहे हैं जिन व्यंजनों की, उसमें से एक है शुक्तो। ये एक पारंपरिक बंगाली मिश्रित सब्जी होती है जिसका स्वाद हल्का कड़वा और मलाईदार होता है। मुख्य सामग्री इसमें होती है करेला, कच्चा केला, बैंगन, सहजन की फलियां यानी कि ड्रमस्टिक्स, और राधुनी मसाला और दूध। इसे बंगाली दोपहर के भोजन की शुरुआत के समय मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता है।
0: और एक व्यंजन इस तरह से बना है, सोनार मूंग दाल। ये भुनी हुई मूंग दाल से बनने वाला खास और शाही व्यंजन कहलाता है। इसमें दाल को पहले सूखा भून दिया जाता है, जिससे इसमें एक बेहतरीन सोंधी खुशबू आती है। मुख्य सामग्री है सोना मूंग दाल, छोटे दाने वाली खास तरह की दाल, घी, काजू, किशमिश और हरी मिर्च। इसे बंगाली शादियों, त्योहारों और विशेष पूजा के अवसरों पर चावल के साथ परोसा जाता है।
1: इसी तरह से एक और रेसिपी हमारे पास आई है, ये मोचार घंटो, और ये बिहारी रसोई में भी बनाया जाता है बंगाली रसोई के साथ साथ। और जिनके भी घर में केले का पेड़ लगा हो वहाँ केले का गोंद गिरता है, उससे फूल बनता है। और ये इन्होंने रेसिपी बताई है कि उस फूल को निकाल कर ये सब्जी बनाई जाती है। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है, लेकिन उसके भीतर पुंग केसर को निकालना पड़ता है और थोड़ा सा एक कसैला भी लगता है। इसे उबाल कर बेसिक मसालों के साथ और बिना प्याज लहसुन के बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। उबालने के बाद पिसे हुए चने या मसूर दाल में मिलाकर इसकी पकौड़ियों की तरह बनाकर इसके कोफ्ते भी बनाए जाते हैं।
0: पातिशाप्ता जानती हैं आप क्या होता है? नहीं जानती?
1: जी
0: चलिए हम बता
1: बताइए।
0: रहे हैं। तो हमारी श्रोता ने ये लिख भेजा है, पातिशाप्ता ये एक तरह की पारंपरिक बंगाली मिठाई है और जो पतले चीले की तरह दिखती है। ये बेहद मीठी और मलाईदार होती है। मुख्य सामग्री इसमें लगती है मैदा, सूजी और चावल के आटे का घोल, जिसमें खोया कद्दूकस किया हुआ, मतलब मावा कद्दूकस करके नारियल और खजूर का गुड़ भरा जाता है, और इसे विशेष रूप से पौष संक्रांति के त्योहार पर सर्दियों में बनाया जाता है।
1: इसी तरह से एचौरा डालना, ये कच्चे कटहल की एक गाढ़ी और मसालेदार तरी वाली सब्जी होती है। इसका स्वाद और बनावट काफी हद तक जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं उनकी तरह, मतलब देखने में लगता है। और इसमें मुख्य सामग्री होती है कच्चा कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। बंगाली पंचफोरन के साथ और गर्म मसाले के साथ इसे परोसा जाता है और इसे शाही मटन भी कहते हैं।
0: और जब भी ये सब व्यंजन बनाए आप, तो उस समय गाना जरूर सुने, वो भी विविध भारती से। फिलहाल ये गाना सुने।

0: श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान पर विशेषज्ञों से बातचीत। बालों की सुंदरता और इसके लचीलेपन को लेकर हम बड़े सजग रहते हैं और हर तरह से इनकी सुंदरता के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी बालों को लेकर एक समय के बाद कुछ न कुछ समस्याएं देखने में आ ही जाती हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो बालों की समस्या वो दो तरह से होती है। एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है। दूसरा, जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में। इन दोनों को रोका जा सकता है? इनका कोई उपाय है? या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
2: एक भ्रम है लोगों में।
1: अच्छा,
2: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है।
1: Okay.
2: ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए। हो सकता
1: है? नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
2: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
1: ओके okay.
2: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पॉन्स काफी तरह से होता है। सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है। स्टेज वन, स्टेज टू, अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देने होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा क्योंकि बहुत बड़ा चांद है।
1: बहुत बड़ा चांद है, सिर पर बहुत बड़ा चांद
2: है। तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: जी जी जी, ओके।
2: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाएं।
2: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
1: जी,
2: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
1: राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं, इसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले, और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
2: चाहेंगे। तभी तो उससे विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
1: हाँ, कि ये रिचनेस आती है, फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है, या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
2: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है। इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम,

0: गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं, ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है, अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
1: जी जी
0: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
1: झाग ज्यादा है तो अच्छा है,
0: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
1: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा, उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह क्या झाग वाला शैम्पू है।
0: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
1: जी
0: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
1: चला जाएगा। जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है,
0: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो।
1: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो,
0: झाग वाला नहीं चाहिए। अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार। अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है। और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है, कोकोनट ऑयल। से क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है। तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना, वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से।
1: ओके
0: तो ड्राई नहीं होते हैं,
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है।
0: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए। भले ही आप 2 मिनट के लगाओ, 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए। पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं। इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए, उसको बोलते हेयर शार्प डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है। वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है।
1: ओके
0: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है।
1: जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के ही शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या बोलते हैं माहौल रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे। रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे हैं जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
0: हाँ जी,
1: वो तेल से मेंटेन रहती है।
0: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी परंपरा कितनी साइंटिफिक
1: है। तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है।
0: जी,
1: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है
1: इकोसिस्टम के हिसाब से। अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने, इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
0: रूखे हो जाते हैं।
1: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहता है, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए। लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है। तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं, तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है।
0: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए।
1: हफ्ते में 2-3 बार।
0: ओ,
1: आप शैम्पू तो हफ्ते में 2-3 बार कर ही रहे हो। और बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल।
0: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
1: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है, आपका मेन कॉज क्या है? अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला।
0: जी, वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा इकोसिस्टम,
1: ये होलिस्टिक अप्रोच ले करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: दूसरा, मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है।
0: जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए।
1: जो बालों में तेल लगाते हैं।

0: बालों में, मतलब स्किन पर. जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इंप्रूव करने का काम करता है,
1: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
0: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं.
1: जी बहुत बढ़िया है. अब यहाँ पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से थोड़ा सा उजाला होने दे. सुनते हैं ये गाना.

0: इतने जुल्फों के गाने हम बजा रहे हैं और इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, आपने कई ऐसी पॉपुलर मान्यताओं में तोड़फोड़ कर दी जिनको हम मानते थे कि जैसे झाग वाला शैम्पू, तेल ना लगाना, ये तमाम बातों को लेकर बड़ी उपयोगी जानकारी आपने दी। और बालों को लेकर जो फैशन है, मतलब तरह तरह के कलर्स लगाना, आजकल तो लोग पर्पल और नीला और हरा क्या क्या रंग बालों के कर लेते, वो कितना नुकसानदेह, अब इस पर आ जाते हैं। पहले
1: आपका बैंक बैलेंस है और आपको खर्चा करना है, कितना खर्चा करना चाहते हो ताकि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नेगेटिव में जाए, ये आपको डिसाइड करना है।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है ये।
1: मतलब ये जो कलरिंग करते हैं, बहुत जो डार्क कलर अलग तरीका करते हैं,
0: पहले ये नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ही वो जो बम्बैया शब्द है, अतरंगी कलर्स,
1: ये बट ये आपका फैशन है
0: जी,
1: पर ये फैशन आएगा आपको नुकसान के साथ आएगा,
0: राइट?
1: आपको चलने वाला है?
0: नहीं
1: नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है
0: जी।
1: आप सोचिए कि नुकसान के साथ आने वाला है, तो ये बैगेज के साथ आएगा आप।

0: तैयार है उसके लिए, गो अहेड।
1: बहुत सही बात है। मतलब ये जो लोग तरह तरह के बालों में कलर्स लगाते हैं, चाहे वो गोल्डन कलर्स हों, चाहे
0: हाँ,
1: वो
0: लेकिन क्या होता है, इन लोगों को बहुत ऐसे एक मन में इच्छा होती है, बहुत सारे यंगस्टर
1: ट्रेंड के
0: को,
1: साथ चलने
0: ट्रेंड
1: की।
0: के साथ चलना। तो मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ।
1: हाँ
0: ठीक है,
1: हाँ
0: एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, आप डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हम ऐसे जनरलाइज मैं स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो,
1: लेकिन
0: करना
1: आपको
0: है।
1: देखना है कि
0: हाँ,
1: कितना नुकसान हो रहा है,
0: हो रहा है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार है, ठीक है, फिर
1: तब
0: आगे
1: करिए
0: बढ़िए।
1: जी। और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं, और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं, और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का। इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए।
0: हाँ, जो ग्रे होते हैं, जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है।
1: जी, उसको
0: कुछ
1: रोक सकते हैं?
0: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ तरह के लोशंस है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है, 40-50% इम्प्रूवमेंट होता है लोगों में। और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं, उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें, तो उसको आपको कलर करना होता है। अभी कलर कौन सा करें, कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है, कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है, तो उनको वो कलर नहीं सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है।
1: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर और
0: हाँ, अमोनिया
1: अमोनिया
0: से
1: फ्री
0: थोड़ा
1: कलर।
0: डैमेज कम हो जाता है,
1: जी
0: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल, डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है। जैसे ही आप, वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा ज्यादा होते हैं। मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है,
1: बिल्कुल।
0: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में।
1: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा
0: हाँ,
1: कि इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है।
0: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई,
1: जी
0: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल। तो ये जो डाई करना है, कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है, हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर आप बहुत अलग तरह के, मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे, फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी।
1: बिल्कुल। तो इसलिए समझदारी से चीजों का
0: समझदारी से
1: इस्तेमाल
0: करना
1: करना जरूरी
0: जरूरी
1: है। यहां पर एक गाने की बारी है।
0: है।

0: ये जो हेयर कलर्स हैं, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली

0: विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है, डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी टाइप का डैंड्रफ होता
0: है,
1: गिरता रहता है। लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुंह से हुए, ये गलत है, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में है, वो अलग है। मुहासे का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है
0: जी।
1: डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहां मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कल्प सोरेसिस होता है। ये स्कल्प सोरेसिस अलग बीमारी है
0: जी।
1: जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है, वैसे एक स्कल्प सोरेसिस एक प्रकार है,
0: उसके बारे में भी बता दीजिए।
1: तो ये स्कल्प सोरेसिस हमको वो टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कल्प सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कल्प सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कल्प सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, पर रिकरेंस इज वेरी कॉमन। तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है। कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं?
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता,
1: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए
0: जी। कई शैम्पूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डैंड्रफ के दुश्मन है, क्या ऐसा होता है?
1: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए है?
0: बताइए कि शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
1: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है।
0: अच्छा,
1: आपको लगता है कि अब ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी ये मलेशिया फरफर करके एक फंगा होता है, वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो। पर भी आपके नहीं जा रहे, तो आपको देखना है कि आपका स्कल्प सोरेसिस नहीं है ना। आपको नहीं पता चलेगा, दोनों स्कल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया
0: जी,
1: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्कल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए।
0: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना है जी, ये एक थम रूल
1: मतलब लोग ऐसे ही बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बहुत परेशान हो जाते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो आपको देखना है कि आपको स्कल्प सोरेसिस है कि नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये मैसेज जाना चाहिए,
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
1: बहुत बड़ा मुद्दा।
0: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है ना।

0: डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का, लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए और एक और बहुत ज्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल, मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका क्या जनरलाइज्ड सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी,
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं जानते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इशू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं।
0: ओहो हो,
1: तो ये गलत बात हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो भी, ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है। जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे?
0: सीधी सी बात है।
1: लोकल एनेस्थीसिया देते हो, डॉक्टर को सब मालूम है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वर्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है।
0: यस।
1: सो अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया जो आप मूर्तिकार है, और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है, और आप मूर्तिकार हैं, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं तो आपके हाथ में बहुत सेफ है।
0: यस।
1: तो आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है,
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1: यस,
0: बिल्कुल। ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
1: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
0: जी,
1: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है ट्रांसप्लांट, और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं, वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहां से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहां से बहुत घने होते, वहां से कुछ प्रमाण से 2000, 3000, 4000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं। अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ। लोकल एनेस्थीसिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है
0: जी।
1: तो रूट्स को हम, जैसे हम झाड़ की सैंपलिंग करते हैं, वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिट देते हैं छोटी सी, और उसमें हम डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी उसको, रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले, बट हेयर निकलने का टाइम रहता है 6 से 9 महीना
0: जी।
1: उसके बाद वहां से बाहर, और आप उसको कोम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब आपके ओरिजिनल
0: ओरिजिनल बालों की तरह हो जाते हैं,
1: बिल्कुल ओरिजिनल
0: बालों के, जैसे पौधे को यहां से हटा के
1: वहां लगा दिया
0: जी। जी, और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
1: ये थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है,
0: क्या ये फेल्योर भी हो सकती है?
1: फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी,
1: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की इसमें ना, महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई, बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रही हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: आप अभी सही पकड़े हो। बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या
0: जी।
1: उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में। फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है। ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखे, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं। बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि उनके स्कूलमेट्स उनको चिढ़ाते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुआ कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको, या तो एलोपेशिया एरियाटा होगा।
0: ओके,
1: फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है, वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम शेयर नहीं करना चाहिए। और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं। परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो उसके लिए वो केरियन कहा जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कि एक दिन दस दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक भी चल सकती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। और ये 6 हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है, तो उनके टॉवल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग।
0: अच्छा, इतना सब करना पड़ता
1: है। इतना सब करना पड़ता है
0: जी।
1: एलोपेशिया एरियाटा, अभी एलोपेशिया एरियाटा की जो बात करते हैं, सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है। इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं, और जब तक हमारे पास आते हैं उनके 5-6 साल हो जाते हैं। ये 5-6 साल इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है।
0: जी, जी, जी।
1: जितना आपने टाइम गमाया उतना आपका हेयर ग्रोथ की चांसेस कम होती जाती है। तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए है उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए है जो बालों की ये जो एलोपेशिया एरियाटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है।
0: ओके, तो एक उम्मीद बंधी है।
1: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी।
0: हमारी पूरी बातचीत में ये बात बार बार आती है कि समय पर सावधान होकर इलाज की तरफ बढ़ना है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहां ये बात करनी जरूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं कि बदलते हुए मौसमों में भी किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें, क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज करते हो, आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में। तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। साथ में अगर ऑयल लगा के करें 1 घंटा पहले या रात को ऑयल लगा के करें तो बेहतर है। खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया ऑटोफेजी, ऑटोफेजी और 16-16 घंटे खाते नहीं है, उसका असर बालों पर गिरता है। तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना जरूरी है। फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूं जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं
0: जी।
1: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है, वो एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और सोडा,
0: नींद
1: मॉर्निंग से हो गया, अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना नहीं खाना है। आप कहेंगे मैं 11 बजे नॉनवेज खा के सोता हूँ, आपके इंटेस्टाइन सोने के टाइम पर आप उसको इंटेस्टाइन को जगा रहे हो
0: जी जी,
1: तो वो नहीं ठीक है। ओकेशनली ठीक है, पर हर बार डेली डेली होते रहेगा तो नहीं चलेगा। बाहर का आप बहुत सारा चीजें खाते हैं जो प्लास्टिक में आती रहती है, टेस्ट के लिए एक बार खा लिया ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा?
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल हेयर को मेंटेन करने के लिए है, बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग हैं।
0: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है। डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

श्रोताओं, हसीन जुल्फों पर, खूबसूरत बालों पर न जाने कितने ही गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं। जब हम सजते संवरते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को खास तरह से संवारते हैं। बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ, तो सुनते रहिए सेहतनामा। कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस युववाणी के अंक में। और आज का अंक आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा के साथ। दोस्तों, आज के इस अंक में आइए अब चर्चा करते हैं ऑनलाइन खरीदारी के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, हम सभी अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स का एक रूप है। ये ग्राहक को इंटरनेट पर विक्रेता से सीधे सामान या सेवाएं खरीदने की सुविधा देता है। ऑनलाइन शॉपिंग में हम ऑनलाइन स्टोर देखते हैं, प्रोडक्ट चुनते हैं और उन्हें वर्चुअल शॉपिंग कार्ट में जोड़ लेते हैं। इसके बाद उन सामानों के लिए क्रेडिट, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट या UPI से डिजिटल रूप से भुगतान करके चेकआउट की प्रक्रिया की जा सकती है। जहां ऑनलाइन शॉपिंग के कई लाभ हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन उचित सावधानियों के साथ आप एक सुविधाजनक और आसान शॉपिंग अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन शॉपिंग का अर्थ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बजाय फिजिकल स्टोर से सीधे प्रोडक्ट खरीदना। ये ग्राहकों को खरीदने से पहले आइटम यानी प्रोडक्ट को देखने, टच करने और टेस्ट करने की अनुमति देता है। दुकानदार सेल्फ स्टाफ के साथ बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और तुरंत सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऑफलाइन शॉपिंग भी डिलीवरी की प्रतीक्षा किए बिना प्रोडक्ट की तुरंत उपलब्धता प्रदान करती है। ये उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो व्यक्तिगत अनुभव पसंद करते हैं, फेस से फेस ट्रांजेक्शन करते हैं और व्यक्तिगत रूप से ब्राउजिंग का आनंद लेते हैं। भारत में ऑफलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और घरेलू सामान के लिए लोकप्रिय है, जो रिटेलर्स के साथ सीधे कीमतों पर बातचीत करने की सुविधा, विश्वसनीयता और अवसर प्रदान करती है। आइए अब आपको बताते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के क्या लाभ हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप अपने घर या ऑफिस में आराम से बैठकर 24/7 यानी 24 घंटे इसे कर सकते हैं। आप ट्रेवल करने, स्टोर की भीड़ भाड़ और भुगतान के लिए लगी लंबी लाइनों जैसी परेशानियों से बच सकते हैं। ये शॉपिंग करने का एक सुविधाजनक और समय बचाने वाला तरीका है। ऑनलाइन स्टोर फिजिकल स्टोर की तुलना में प्रोडक्ट की व्यापक रेंज ऑफर करते हैं, क्योंकि वहां स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर किराने के सामान तक आपको जरूरत की लगभग हर चीज मिल जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग में आप विभिन्न विक्रेताओं की कीमतों की तुलना कर सकते हैं। इससे आपको अपने पैसे पर सबसे बेहतर डील पाने में मदद मिल सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग खरीदारी से पहले अन्य ग्राहकों के रिव्यू और रेटिंग पढ़ सकते हैं। इससे आपको सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग में सेल्स पर्सन द्वारा दबाव दिए जाने की संभावना नहीं होती। आप रिसर्च करने और सबसे बेहतर विकल्प चुनने के लिए अपना समय ले सकते हैं। दोस्तों, आसान किश्तों के साथ आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग को और अधिक किफायती बना सकते हैं EMI के द्वारा। आइए अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के नुकसान क्या हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में अक्सर व्यक्तिगत अनुभव नहीं मिल पाता और उस पर्सनल टच का अभाव होता है जो हमें किसी फिजिकल स्टोर में शॉपिंग करते समय मिलता है। यानी जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो उस चीज को छूकर, टच करके देख सकते हैं, उसका मटेरियल, उसका टेक्सचर, उसका फैब्रिक। आपको सोशल इंटरेक्शन, प्रोडक्ट को छूने और महसूस करने का अनुभव और सेल्स पर्सन की पर्सनलाइज्ड सलाह की कमी महसूस हो सकती है। हालांकि कई ऑनलाइन स्टोर फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं, लेकिन कई अन्य नहीं करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में शिपिंग में देरी होने की समस्या सामान्य हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी और पहचान की चोरी का जोखिम होता है, इसीलिए प्रतिष्ठित वेबसाइट से खरीदारी करनी चाहिए और अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग में किसी प्रोडक्ट को वापस करने और उसका रिफंड प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। कुछ ऑनलाइन स्टोर्स की रिटर्न पॉलिसी जटिल हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग टेक्नोलॉजी पर निर्भर होती है, जिसका मतलब है कि ये वेबसाइट क्रैश होने, पेमेंट गेटवे त्रुटियां

और स्लो लोडिंग जैसी तकनीकी समस्याओं से प्रभावित होती है। ये समस्याएं आपके शॉपिंग अनुभव को खराब कर सकती हैं और कभी कभी खरीदारी को बीच में भी रोक सकती हैं। दोस्तों, आप आसान ईएमआई पर भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आप स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, स्मार्ट वॉच और स्पीकर सहित आसान ईएमआई पर ऑनलाइन प्रोडक्ट की विस्तृत रेंज खरीद सकते हैं। अन्य लोकप्रिय कैटेगरी में होम अप्लायंसेस, फर्नीचर, किराने का सामान, फिटनेस उपकरण, ट्रेवल बुकिंग और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट शामिल कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म यानी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी चर्चा ऑनलाइन शॉपिंग के लाभ और नुकसान के बारे में। कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो सतर्क रहें। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अपने कार्ड की जानकारी किसी से शेयर न करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।

0: दोस्तों, अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत वीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किए जा रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO

0: के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष SCO अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। सम्मेलन का केंद्रीय विषय है 25 years of SCO together towards sustainable peace, development and prosperity. SCO मध्य एशिया और यूरेशिया का एक प्रमुख बहुपक्षीय संगठन है जिसमें भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस सदस्य हैं। भारत वर्ष 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना था और तब से संगठन के एजेंडे में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ऐसे में बिश्केक शिखर सम्मेलन भारत के लिए मध्य एशिया के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। SCO सम्मेलन और भारत किर्गिस्तान के संबंधों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं किर्गिस्तान में भारत के राजदूत श्री वीरेंद्र सिंह यादव। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान यात्रा के दौरान SCO समिट में शामिल होंगे और ये 26th समिट है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप ये समिट भारत के लिहाज से?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा है, ये प्राइमरी इज टू पार्टिसिपेट इन द 26th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ द SCO एंड इंडिया अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज अ क्लाउड इन द ग्लोबल arena and Jee. India is also a very strong and respected voice of the global south and India is one of the largest global economies growing at very fast rate enjoys a considerable interest or I'll rather say influence amongst the other member states on what India's stand is on various issues. In that respect, everybody is looking forward to Honorable Prime Minister's statement during the SCO summit and wherein he would be highlighting what the India's priorities would be. And I think this visit is also an opportunity to strengthen our bilateral relationship with the Kyrgyz Republic and the warm and friendly ties between our two countries which are based on historical and civilizational foundation.
0: सर, यदि भारत और किर्गिस्तान के संबंधों की बात करें तो किस तरह से आप इन्हें डिफाइन करते हैं, किस तरह से आप परिभाषित करेंगे?
1: बहुत ही वार्म और फ्रेंडली पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच और बोथ द कंट्रीज शेयर अ सिमिलर ग्लोबल विजन एंड वी कोऑपरेट वेरी क्लोजली नॉट ओनली बायलेटरली बट ऑल्सो इन द मल्टीलेटरल फोरम एंड जो चैलेंजेस हैं वो दोनों देशों के देयर सिमिलर चैलेंजेस और बोथ द कंट्रीज कोऑपरेट ईच अदर लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस and to continue in their journey of economic development to bring prosperity to their respective citizens.
0: सर, आपने जो चुनौतियों की बात की तो दोनों ही देश, भारत भी और किर्गिस्तान भी, एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उसमें टेररिज्म भी है, सेपरेटिज्म भी है और रेडिकलाइजेशन भी है, तो किस तरह से आपस में मिलकर इनसे निपटने की रणनीति तैयार होगी?
1: हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है किर्गिज गणराज्य के साथ एंड वी कंडक्ट एनुअली अ बायलेटरल एक्सरसाइज खंजर विच वुड बी हैविंग इट्स 14th एडिशन इन फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड वी ऑल्सो कोऑपरेट वेरी क्लोजली इन द capacity enhancement through participation of Kyrgyz official in the defense high-tech programs and by curating tailor-made courses as per their specific requirements. And the joint working group meets annually and they chalk out a plan of action and all this is to enhance the capacities and share each other's experience to prepare for the meeting common challenges which you have listed.
0: सर, किर्गिस्तान जो है वो भारत का एक एक्सटेंडेड नेबरहुड है। यदि हम सेंट्रल एशिया के साथ में भारत के संबंधों की बात करें तो कितना महत्व रखता है भारत के लिए किर्गिस्तान?
1: अगर आप देखें तो बिश्केक से दिल्ली 3 घंटे से कम समय लगता है थ्रू एन फ्लाइट, तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि हम कितने करीब हैं। और जैसे आपने कहा कि सेंट्रल एशिया और किर्गिज रिपब्लिक इंडिया के एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक नेबरहुड में आता है, दिस इज अ वे to closely cooperate with the region and including the Kyrgyz Republic. And this engagement is through the political dialogue, through the established institutional mechanisms in the field of defense and security, enhancing the trade and economic cooperation, and also having an excellent people-to-people linkages and cultural cooperation. And Kyrgyz Republic also hosts more than 16,000 Indian medical students and they ensure that they have a safe and secure environment to study.
0: सर, भारत और किर्गिस्तान का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है संबंधों का। इसमें जो दोनों के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, इनको और मजबूत बनाने के लिए हाल फिलहाल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं

0: और भविष्य में और क्या कदम उठाए जाएंगे?
1: 2019 के बाद जो हमारा बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर है वो पिछले 5 सालों में लगभग दुगना हो गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको और ऊंचाई तक कैसे ले जा सके। उसके लिए हम व्हाट आर द न्यू एरियाज वेयर वी शुड फोकस ऑन एंड लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस डेलीगेशंस दे विजिट किर्गिज रिपब्लिक, सिमिलरली फ्रॉम हियर दे पार्टिसिपेट इन वेरियस एग्जीबिशंस एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर हाउ द बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर कुड बी इंक्रीज्ड एंड हाउ द म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स कैन बी प्रमोटेड बिटवीन द टू कंट्रीज।
0: जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो भी किर्गिस्तान में बड़ी संख्या में, तो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें और स्ट्रेंथन करने में वो कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
1: The Indian diaspora always is an asset because they are the organic bridges between the two countries and they help in creating an image of the country and we are very proud that the Indian diaspora in the Kyrgyz Republic has lived up to that reputation and they act as a facilitator or medium to enhance the people-to-people linkages.
0: Pradhan Mantri Narendra Modi ji ki Kyrgyzstan ki ye teesri yatra hai. Iske pehle bhi wo 2019 mein ASEAN summit mein bhi shamil hone ki aa chuke hain. Ye yatra ka kitna mahatv hai?
1: प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण होती है, वो भले ही पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो। प्रधानमंत्री की यात्रा से बायलैटरल रिलेशंस को एक फिलिप मिलता है, एक सुदृढ़ता मिलती है और नए आयाम एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है। मैं तो यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण है।
0: सर, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान जो वर्ल्ड नोमैड गेम्स है उसके शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जी का उसके शुभारंभ समारोह में शामिल होना कितना महत्व रखता है और इस पूरे रीजन के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है?
1: The organization of the 6th World Nomad Games is very significant for the Kyrgyz Republic because the games are returning to the Kyrgyz Republic after a little gap and they have been preparing extensively for organization of these games. They have built a new beautiful stadium which is the biggest stadium in the Central Asia in the form of traditional yurta, and the World Nomad Games is an opportunity for them to promote and propagate their rich cultural nomadic heritage, and there is a participation from India also, and we have a 73 strong contingent which is participating in archery, in wrestling, in other forms of game, and Honorable Prime Minister, he would be participating in the inauguration of the World Nomad Games, which is also a reflection of both the countries respecting their rich heritage, cultural heritage and way of life in case of India, which has been in existence for many centuries.
0: Thank you so much, sir. आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत वीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में आप सभी खुद को अपडेट रखने के लिए क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं या फोन पर समय बिताते हैं। समय की मांग तो यही है कि आप हर क्षेत्र में खुद को आगे रखें, तभी इस प्रतियोगिता के माहौल में खुद को साबित कर पाएंगे। दोस्तों, समय की मांग तो यही है कि आप आज के इस युग में कंप्यूटर की जानकारी जरूर रखें, थोड़ा बहुत या डिग्री डिप्लोमा। कंप्यूटर में आपको अपने करियर में पंख लगाने के लिए काफी है, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर का युग है। यदि आप इसके साथ चलते हैं तो आप अपने लिए एक सम्मानजनक और संतोषजनक करियर ऑप्शन चुन सकते हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर में काम करने में कतराएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और जानकारी के अभाव में रोजगार के अवसरों से चूक जाएंगे। इसीलिए कंप्यूटर पर काम करने से कतराए ना, प्रयासरत रहने पर आप महारत हासिल कर ही लेंगे। आप अपने आसपास कोई भी कोचिंग सेंटर पर एडमिशन लेकर इसकी छोटी मोटी बारीकियों को पकड़ सकते हैं। ये एक बुनियादी जरूरत बन गया।

गया है। शिक्षा, व्यापार, संचार, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सरकारी कामकाज सहित जीवन के हर क्षेत्र में समय बचाने, कार्य कुशलता बढ़ाने और जानकारी तक तुरंत पहुंचने के लिए अनिवार्य है, जिसके बिना आधुनिक जीवन और करियर में आगे बढ़ना मुश्किल है। यह ज्ञान हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने, वर्क फ्रॉम होम करने, ईमेल भेजने और इस तरह के डिजिटल काम करने में सक्षम बनाता है, जिससे हमारी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसीलिए युवाओं को कंप्यूटर सीखना और इसका सही उपयोग करना जरूरी है।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
1: कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
2: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
2: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, गीता में लिखे श्लोक के अनुसार आपका शांत एवं स्थिर दिमाग जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। अब प्रीति सिन्हा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

अनीता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आप सब कैसी हैं? उम्मीद है आप सब अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और आज के दिन त्योहार मना रही होंगी। और इस समय बहनों त्योहारों का सिलसिला जारी है, तो इंजॉय भी कर रही होंगी। और आज है कजली तीज का त्यौहार, तो हमारी बहुत सी बहनें इस त्यौहार को मनाती हैं। इस त्यौहार में कजली गीत गाए जाते हैं, बहनें सज धज कर झूला झूलती हैं और बहनें अपने भाइयों को जरई पहनाती हैं। जरई के लिए पहले से ही एक मिट्टी का गोला बनाकर उसमें जौ बोए जाते हैं और वही जौ हरे भरे बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें धोकर भाइयों को पहनाया जाता है और माता रानी दुर्गा को चढ़ाया भी जाता है, चढ़ाकर फिर पहनाते हैं। तो इस तरह से हमारी बहुत सी बहनें इस त्यौहार को मनाती हैं। और साथ ही साथ बहनों, आज गणेश चौथ का भी बहुत सी बहनों ने व्रत रखा होगा और शाम को पूजा करेंगी। बहनों, आज के दिन पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं और बहनें झूला झूलती हैं। इस तरह हम प्रकृति के साथ जुड़े हैं। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में तो बहुत ही महत्व है। बहनों, ये पेड़ पौधे ही हमारे जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमें जीवन देते हैं और हमारे स्वस्थ रहने में इनका महत्वपूर्ण योगदान भी है और हमें खाने के लिए भोजन और फल देते हैं।

मैनो, हमारे जीवन में खुशियाँ देने के लिए, जीवन को महकाने के लिए इतने तरह के फूल हमें पेड़ पौधे देते हैं। आप फूलों को देखकर हम कितने खुश होते हैं। तो बहनों, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है इन पेड़ पौधों से, और पर्यावरण सुरक्षित रहता है तो हम अच्छी बारिश होती है, जिससे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बचाकर रखना है, संजो कर रखना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे और एक लंबी आयु जी सके। बहनों, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हमारी बहनें कभी भी पीछे नहीं रहीं। उनका हमेशा से पर्यावरण से लगाव रहा है। घर में तुलसी के पौधे लगाना, उनकी पूजा करना, उनकी देखभाल करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, वट वृक्ष की पूजा करना, उन्हें सुरक्षित रखना और उन्हें कटने से बचाना, ये सब हमारी बहनें करती हैं। साथ ही घरेलू स्तर पर भी बहनों का बहुत योगदान है। महिलाएं घर में पानी, बिजली और ईंधन का समझदारी से उपयोग करती हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों में रहने वाली महिलाएं अलग-अलग तरीकों और उपायों का इस्तेमाल करके अपने आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा कर सकती हैं। बहनों, साथ ही साथ काफी धन भी बचा सकती हैं। बहनों, इसके लिए 3 R यानी रीड्यूज, रीयूज एंड रीसाइकिल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जिसका अर्थ है कूड़े को कम करना, किसी भी वस्तु को बार-बार इस्तेमाल करना और पुनः चक्रित यानी रीसाइक्लिंग करके उसका पुनः इस्तेमाल करना।

बहनों, हम घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों को केवल जरूरत के वक्त ही स्विच ऑन करें, जरूरत ना हो तो उन्हें बंद कर दें। ये नहीं कि कमरे में कोई नहीं है फिर भी पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो इससे हम जानबूझकर ये गलती करेंगे तो हम अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करेंगे। बहनों, इसके अलावा बल्ब खरीदने से पहले उसकी ऊर्जा का मूल्यांकन की जाँच करें और तुलना करें। कम बिजली खर्च करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। साधारण बल्बों की बजाय अगर हम CFL लगाएं तो उससे हमारी बिजली की ऊर्जा कम खर्च होगी, जो प्रकाश बल्ब की तुलना में 4 गुना कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और 8 गुना अधिक चलते हैं। इसके अलावा किसी भी टपकते नल या लीक पाइप को तुरंत ठीक करवाएं। पानी अगर घर में लीक कर रहा है या किसी नल से टपक रहा है तो अनजाने में ही सही काफी पानी बर्बाद होता है। बहनों, इसके अलावा घर के आस

पास साफ जगहों में बारिश के पानी को सहेज कर रखा जा सकता है। साथ ही नए घर बनाते हुए ऐसे डिजाइन के घर बनाए जा सकते हैं जहां बारिश के पानी को रोककर सहेज कर रख सकते हैं, ऐसे घर बनवाने चाहिए। मैंने इसके अतिरिक्त हम अपने बगीचे और लॉन में उर्वरक और जहरीले रसायनों के प्रयोग से बचें। इससे वन्य जीव प्रभावित होते हैं और जल के स्रोत को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा हम प्रतिदिन फल और सब्जी काटते हैं तो उनके छिलकों को हम फेंके नहीं बल्कि उन्हें बचाकर एक साथ इकट्ठा करके हम उससे खाद बना सकते हैं। इससे पौधे बड़े तेजी से बढ़ते हैं। बहनों इसके अलावा जो भी हमारा भोज्य पदार्थ या हम जो भी खाने पीने की चीज़ें जो हमारे घर में बच जाती हैं उससे भी हम खाद बना सकते हैं, उसे भी हम पौधों में डाल सकते हैं। इसके अलावा बहनों कुकिंग गैस को बचाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करें। अगर हम प्रेशर कुकर में खाना बनाएंगे तो हमारा गैस बचेगा, इसमें खाना जल्दी पकता है। बहनों इसके अलावा घर के पास खुले में कूड़ा न फेंकें, घर में पॉलिथीन का प्रयोग न करें, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें।

0: बहनों, अगर आप एक कामकाजी महिला हैं तो भी आप पर्यावरण और वन संरक्षण में अपना योगदान दे सकती हैं, जैसे कागज का पुनः उपयोग करके इसके दोनों पक्षों पर फोटो कॉपी या प्रिंट लेकर काम किया जा सकता है। किसी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या कम करें और लिफाफे का पुनः उपयोग कर सकती हैं। डिस्पोजल कलम के बजाय दोबारा भरी जाने वाली कलम या पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है। मैंने इसके अलावा यदि आपके पास समय है तो अपने क्षेत्र के किसी स्थानीय पर्यावरण समूह से जुड़ें, ताकि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखने में लोगों को जागरूक कर सकें, साफ सफाई पर ध्यान दे सकें। मैंने घर में जगह कम हो तो गमलों में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। हमारे घरों में बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं, हम उन कपड़ों से दरियां बना या बनवा सकते हैं, जिसको कि हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जो काफी टिकाऊ और सस्ती होती है। मैंने इस तरह हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर और व्यवहार में लाकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं। साथ ही हम अपने परिवार और पास पड़ोस के लिए मिसाल बन सकते हैं। बहनों, आइए अब कुछ और बातें करते हैं। मैंने इस समय 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, तो मैंने आज हम इसी विषय से संबंधित एक भेंट वार्ता लाए हैं, जिसका विषय है कर्नियल अल्सर या पुतली में घाव से बचाव। और भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह, नेत्र सर्जन, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लोढ़ी सोनभद्र, और उनसे बातचीत की है संजू सिंह ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आंखें हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो हमें यह सुंदर और रंगीन दुनिया देखने में मदद करती है। इनके बिना जीवन की कल्पना बहुत ही कठिन होता है। आंखें शरीर का मुख्य संवेदी अंग है, जिसकी देखभाल हमें हमेशा ठीक ढंग से करना चाहिए। जाने अनजाने थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती है। आंखों से संबंधित समस्याएं कुछ मामूली तो कुछ गंभीर होती हैं। इन्हें स्वस्थ रखने के लिए कौन से जरूरी उपाय करने चाहिए, बात करते हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह जी से, जो नेत्र सर्जन है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लोढ़ी में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: और आकाशवाणी ओबरा के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत नमस्कार मेरे श्रोतागण और आकाशवाणी के लोगों को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया।
1: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम सबको ये बताएं कि आंखों में क्या क्या समस्याएं आती हैं।
2: आंख एक बहुत ही अभिन्न अंग है, आंख नहीं तो कुछ भी नहीं।
1: जी,
2: आंखों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मौसम हो, मौसम से हम लेते हैं। तो अभी हमारे बरसात का मौसम है
1: जी,
2: खेती प्रधान देश है
1: जी,
2: तो इस समय धान की खेती होती है, तो मैक्सिमम आबादी हमारे सब खेती करने वाले लोग हैं। खेती में मिट्टी, बुआई के समय धान से पत्तों से कोई डंडा लग गया, कोई कांटा लग गया, इससे पुतली में घाव बन जाता है।
1: अच्छा।
2: जिसको फंगल कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं,
1: या पुतली का घाव कह सकते हैं।
2: पुतली का घाव कह सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, ये पुतली का घाव होने का कारण, जैसा कि अभी आपने बताया कि बरसात के मौसम में ये कृषि में काम करने वाले लोगों को ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, इसके होने का और भी कुछ कारण है?
2: इसके विभिन्न कारण है, जिसको बहुत

0: लंबे समय से कोई स्टेरॉइड की दवा चल रही है
1: अच्छा,
0: जिसको और बीमारी हो, जैसे HIV, जिससे इम्यूनिटी लोगों की खराब हो,
1: जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो
0: जाती बहुत है। कम हो
1: जी,
0: कोई भी घास का पत्ता लगना
1: आंखों में लग जाए
0: तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है उसका ध्यान देना, एक विशेषज्ञ के पास जाके इसका इलाज बहुत जरूरी है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, इसके होने का लक्षण कैसे पता करें कि ये, मतलब चोट लग जाती तो वैसे ही आंखों में लाली आ जाती है, इसके अलावा और क्या क्या लक्षण प्रतीत होते हैं?
0: अगर किसी को पुतली का घाव हो गया, जो मैं फंगल की बात कर रहा हूँ, यह बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, हम बेसिकली प्रमुख लकड़ी से जो चोट लगती है वो फंगल मानते हैं।
1: अच्छा, और बैक्टीरिया जो होता
0: बैक्टीरियल होता है उसमें पुरलिन डिस्चार्ज, जैसे पीले रंग का हरे रंग का डिस्चार्ज होना,
1: पानी आंखों से
0: आके पानी कीचड़ आने लगता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: इसमें सफेद रंग का एक फफूंद सा लगता है।
1: अच्छा,
0: ये फर्क है। पुतली का घाव हो गया उसमें लालपन होना, आंसू आना बहुत ज्यादा,
1: अच्छा,
0: लाइट से बहुत ज्यादा परहेज, जैसे हमें लाइट बहुत चुभती
1: होगी
0: आंखें में
1: जी,
0: बहुत ज्यादा दर्द असहनीय, और आंख की लाली बढ़ती जाएगी दिन पे
1: अच्छा।
0: दिन, और कई जब बढ़ जाता है रोग तो हमें एक उड़ती हुई चीजें भी दिखने लगती
1: अच्छा।
0: है, और धीरे धीरे हमारी रोशनी कम हो जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जब ये घाव इस तरह के हो जाते हैं और इस तरह के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, तो इसको बचाया कैसे जाए, इसको बचाव के उपाय हम क्या करें?
0: जो भी खेत में काम करते हो या जिनका ऐसा काम हो जो कि वेल्डिंग हो या कोई चीज काम कर रहे हैं जिसमें आंख पे चोट लगने की जो समस्या हो
1: जी,
0: ये प्रमुख कारण के एक सफेद कलर का पूरे आंख को ढकने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आते हैं, जैसे मोतियाबिंद के काले ग्लास आते हैं वैसे ही सफेद ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आते
1: अच्छा।
0: हैं, वो सस्ते से मार्केट में 50-100 रुपए के किसी को कहीं से भी आप ले सकते हैं
1: जी।
0: उसको लगा के काम करें, एटलीस्ट कोई भी छींटा पड़ेगा हम खेत में कर रहे हैं तो हमारे आंख में नहीं जाएगा।
1: हमारी महिलाएं भी साफ सफाई घरों में झाला साफ करना होता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल एक सफेद चश्मा लगा ले तो वो प्रिकॉशन हमारे बीच में एक जो बीमारी की चीजों से और हमारे बीच में एक पर्दा बन जाएगा
1: जी।
0: तो इससे हमारे चोट लगने की समस्या कम हो जाएगी, इन्फेक्शन होने की समस्या कम हो जाएगी, आखिर काम तो हमें करना ही है, काम तो छोड़ नहीं सकते
1: जी बिल्कुल। अच्छा, उपचार या फिर इलाज के दौरान परहेज किस तरह का होना आवश्यक है?
0: सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें मरीज को जैसे ये लक्षण आने लगे
1: जी,
0: कीचड़, पानी आना, बहुत दर्द होना, लाली ना जाना
1: जी,
0: तो ये तुरंत अपने किसी भी नजदीकी चिकित्सालय, जो कि हमारे जिले में तो चिकित्सक की कमी बहुत है
1: जी,
0: चिकित्सालय जो नजदीकी है, डॉक्टर आंख के स्पेशलिस्ट
1: जी
0: अलग होते हैं
1: बिल्कुल।

0: अस्पताल में पहुंचे
1: जी,
0: आंखों में अनावश्यक कोई भी दवा ना डालें किसी भी दुकानदार से लेके
1: जी।
0: तीसरी बात, आप आंखों में पानी डालना छोड़ दें, पानी एकदम ना डालें।
1: पानी जैसे नहाते वक्त भी पानी जाता
0: नहाते
1: है,
0: वक्त आंखों से पानी नहीं जाना।
1: कभी कभी लोग मुंह में पानी भर के भी आंखों को साफ करते हैं कि उससे आंख की रोशनी बढ़ती है,
0: नहीं
1: तो ये बिल्कुल
0: इस बीमारी में करना
1: जी।
0: वो क्योंकि हमारा फंगस जो है वो ग्रो ही करता है पानी में।
1: अच्छा,
0: पानी नहीं जाना चाहिए
1: जी। तो डॉक्टर साहब, घाव की जल्दी रिकवरी के लिए और दैनिक दिनचर्या में मरीज और उनके परिवार वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?
0: सबसे पहले इसमें स्टेरॉयड बिल्कुल आग में घी का काम करता है। जितने भी लोकल दुकान वाले होते हैं वो डीएक्स करके एक दवा आती है, सिप्लॉक्स डीएक्स, मॉक्सी डीएक्स, ऐसी करके दवा जिसमें डीएक्स लिखा हो वो दवा तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ये हम जितना डालेंगे वो उतना ज्यादा फैलता है।
1: अच्छा,
0: तो डीएक्स नहीं डालना।
1: अच्छा।
0: मोतियाबिंद की दवा अलग होती है, पुतली के घाव की दवा टोटली अलग होती है।
1: अच्छा,
0: और उसके लिए एक चिकित्सक जो है आंख के उनके पास जाना जरूरी है। अगर सुविधा हो रही है तो जिला अस्पताल सबसे अच्छा है
1: जी,
0: आप आए वहाँ पे आपका, और ये जितनी जल्दी इलाज होगा उतना ही जल्दी ठीक
1: होगा। अच्छा, क्या ये परेशानी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है डॉक्टर साहब?
0: ये परेशानी उम्र से देख के नहीं आती, ये तो चोट लगने की वजह से होती।
1: अच्छा।
0: है या बाहरी फंगस वाले जो मैंने पहले बताया
1: जी।
0: तो ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये पुतली का घाव ठीक होने में कितना समय लग जाता है लगभग?
0: अगर शुरुआती दौर में जैसे हमें 2-4 दिन पहले चोट लगी और आप आए तो 15 दिन से 1 महीने के अंदर पूरी तरह से आप ठीक हो जाते
1: हैं। अगर सावधानी से
0: इलाज किया गया 15 दिन से 20 दिन में ठीक हो जाता है अगर शुरुआती है
1: जी।
0: अगर ये घाव बिगड़ गया है, कहीं से आपने दवाइयां ले ली हैं और जो भी, और घाव बिगड़ने की स्थिति, तो इससे 3 महीने से 6 महीने तक भी, साल भर तक भी दवा चलती
1: लग सकते हैं जी। अच्छा, जिन लोगों के आंखों में लेंस लगा हो डॉक्टर साहब, क्या ये समस्या उनको भी हो सकती है?
0: देखिए, पुतली हमारी सबसे बाहरी हिस्सा है और लेंस हमारा इसके पीछे होता है।
1: अच्छा,
0: तो मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसमें हम लेंस डालते हैं।
1: अच्छा।
0: और ये घाव हमारी पुतली का है, बाह्य हिस्से का है। पुतली सबसे पहला बाह्य हिस्सा है।
1: अच्छा,
0: हमारा,
1: जी,
0: हमारी आँख का, तो ये पुतली की बीमारी है।
1: अच्छा।
0: लेंस हमारा बहुत पीछे।
1: अच्छा।
0: तो लेंस और पुतली से हमारा संपर्क नहीं है
1: जी,
0: तो ये किसी में भी हो सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, देखें, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अच्छा, चलते चलते सभी श्रोताओं से उनको अपनी आँखों की सुरक्षा हेतु क्या सलाह देना चाहेंगे? और
0: अगर कभी भी, हमारे काम तो ऐसा है कि हमें खेती बाड़ी तो करना ही पड़ेगा
1: जी, बिल्कुल,
0: दिन रोजमर्रा की जिंदगी का जीवन यापन के लिए कार्य तो करना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल, हमारा देश ही कृषि प्रधान
0: है, तो हम तो यही, बहुत एक छोटी सी चीज है, एक चश्मा पहन लें
1: जी
0: और फिर काम करें। और नहीं तो अगर मान लीजिए आपको कहीं से बाय चांस चोट लग गया तो नजदीक के अस्पताल में जाके तुरंत दिखा लें, उसको इग्नोर ना करें कि मेरी खेती खत्म हो जाए फिर मैं करूंगा, देर नहीं करना
1: जी। संपर्क सूत्र बता दे डॉक्टर साहब
0: जी। अगर मुझसे जिला अस्पताल में मिलना है तो नेत्र रोग विभाग है, कमरा नंबर 34 पुराना अस्पताल है, पहले वाले में ही, वहाँ पे कमरा घुसते ही पहला कमरा है, वहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को आके आप कभी भी किसी समय दिखा सकते हैं
1: जी। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ मेहमान थे डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, जो कि नेत्र सर्जन हैं स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लोढ़ी में। श्रोताओं, आंखों की समस्या अगर मामूली भी हो तो इसका इलाज खुद से बिल्कुल ना करें, तुरंत अच्छे डॉक्टर से मिलें और अपनी समस्या का निदान करें। याद रखें, समय रहते किया गया इलाज आंखों की ज्योति बढ़ा और बचा सकती है, तो नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें और जागरूक बने अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। और डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: धन्यवाद।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: बहनों, इस संदेश से पहले आपने भेंटवार्ता सुना जिसका विषय था कार्नियल अल्सर या पुतली में घाव से बचाव और भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर प्रदीप सिंह, नेत्र सर्जन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लोढ़ी सोनभद्र, और उनसे बातचीत की थी संजू।

सिंह ने। तो बहनों देखिए अभी आपको कितनी अच्छी जानकारी मिली, आइए अब कुछ और चर्चा करते हैं। बहनों हम गृहणियाँ ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, गृहिणी चाहे कामकाजी हो या घरेलू, हर बहन को अपना घर बहुत अच्छा लगता है, या यूं कहें कि सभी को अपना घर बहुत अच्छा लगता है। घर में हमें सुकून मिलता है, घर शांति देता है और हमारी सुरक्षा करता है, हमें सुरक्षित रखता है। तो हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो, फ्लैट हो या मकान हो, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे सजाएं, अपने घर को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से रखें, कैसे सुंदर बनाएं जो हमें भी अच्छा लगे और आने वाले मेहमान भी हमारी तारीफ करें। तो बहनों सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को हम साफ सुथरा सुंदर तरीके से रखें। अगर हमने घर में पेंटिंग लगाई है, गुलदस्ते रखे हैं, फूलदान रखे हैं, तो हमें प्रतिदिन उसकी साफ सफाई रखनी चाहिए, उस पर धूल ना जमने दें, घर में जाले नहीं लगने चाहिए, पर्दे और चादर साफ रखें, क्योंकि सजावट की चीज़ कम भी हो या न भी हो तो चलेगा, लेकिन प्रतिदिन साफ सफाई जरूरी है। यही मन को सुकून देता है और हमें बीमारियों से भी बचाता है और हमें भी अच्छा लगता है। बहनों हम अगर हमें घर सजाना है तो हम घर के दीवारों पर अच्छे कलर करवाएं और कमरे की किसी एक दीवार को किसी चमकीले या अलग रंगों से रंगें। बहनों इसके अलावा दीवार पर सुंदर रंग या वॉलपेपर लगाना भी अच्छा रहता है और अपनी बजट के अनुसार कम खर्च में हम सजावट के सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा दीवारों की सूनेपन को दूर करने के लिए सुंदर पेंटिंग या तस्वीरें लगा सकते हैं। कमरों में उचित लाइटिंग की व्यवस्था करें, झूमर फ्लोर लैम्प का प्रयोग करें, इससे कमरा बड़ा और जीवंत लगता है। घर में हरियाली लाने के लिए मनी प्लांट या अन्य छोटे पौधे रखें, इससे घर सुंदर दिखता है। आप मिट्टी के गमले को भी रंगीन पेंट करके भी सजावट में इस्तेमाल कर सकती हैं। बहनों घर की गैलरी में दीवारों पर पेंटिंग करा सकती हैं या किसी सीनरी की तस्वीरें लगा सकती हैं। फर्श की शोभा बढ़ाने के लिए एक संपूर्ण लुक देने के लिए स्टाइलिश कारपेट का प्रयोग किया जा सकता है। बहनों इसके अलावा सोफे या बिस्तर पर रखे जाने वाले रंग बिरंगे और आरामदायक कुशन का उपयोग करके सुंदरता में चार चांद

सकती हैं। फर्श की शोभा बढ़ाने के लिए एक संपूर्ण लुक देने के लिए स्टाइलिश कारपेट का प्रयोग किया जा सकता है। बहनों, इसके अलावा सोफे या बिस्तर पर रखे जाने वाले रंग बिरंगे और आरामदायक कुशन का उपयोग करके सुंदरता में चार चांद

बहनों, गीत तो बहुत ही अच्छा था और उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। बहनों, गीत के बाद आइए अब चलते हैं किचन की ओर। बहनों, किचन हमारे घर का वो हिस्सा है जहाँ हम भोजन बनाते हैं और खाते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। बहनों, एक तरफ तो हम किचन या रसोई में अपनी मनपसंद डिशेज बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो दूसरी ओर किचन में हमें बहुत सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बिजली से संबंधित उपकरण होते हैं, गैस होता है, हीटर होता है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा खाना बनाने के बाद गैस नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से बंद कर दें। भूल से भी गैस खुला छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अनजाने में दुर्घटना हो सकती है। प्रेशर कुकर भी ठीक होना चाहिए। बहनों, इसके अलावा भोजन पकाते समय स्वच्छता पौष्ट का ध्यान रखना चाहिए और पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा और सही तापमान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फल और सब्जियां काटने से पहले साफ पानी से धोएं, रसोई की स्लैब या सतह को साफ रखें, बर्तनों को पूरी तरह से साफ रखें ताकि कीटाणु ना फैलें। भोजन को बहुत ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि इससे पौष्टिकता समाप्त होती है। अंत में बहनों, मैं यही कहना चाहूंगी कि भोजन खुशी से बनाएं तो खाना अच्छा बनता है। तो बहनों, इसी के साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय भी अब समाप्त होने को है। तो अगले कार्यक्रम में हम फिर होंगे साथ। तब तक के लिए अपनी बहन अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से रिले भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड और ये खंड पर रेल सेवा के शुरुआत बदे बहराइच जिला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल भैले। ये मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि ये रेल सेवा के नाते अब बहराइच क्षेत्र का कनेक्टिविटी और यो बढ़िया हुई।
1: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय रेल आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल जरिया से शामिल भेले। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पालो कार्यक्रम में मौजूद रहले। सरकार देश में चिप विनिर्माण तंत्र के बढ़ावा देवे बदे 1,27,000 करोड़ रुपया के बजट के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरका फेरा के अधिसूचित कई दिहले हवे। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहले कि ये से आवे वाला बरिस में दुनिया भर का सेमी कंडक्टर बाजार में भारत का हिस्सेदारी करीब 10% हो सकेला।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: नेपाल में बाढ़ से मरे वालन का संख्या बढ़ के 903 हो गई है। 4,247 से बेसी लोग अभिनो लापता बाटे। सज्जो 8 गो प्रभावित जिला में राहत और बचाव अभियान तेजी से चली रहा है। एगो रिपोर्ट।
3: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये बिचे नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण वाला इलाकन में तेज वर्षा के नाते बिहार में गंडक और कोसी नदियन का जलस्तर बढ़ गई हौ। नदी के बहाव के नियंत्रित करे बदे वाल्मीकि बैराज का सज्जो 36 गेट और कोसी में बीरपुर बैराज का 56 में से 25 गेट खोल दिया गई हौ। कौशाम्बी जिला के पुरा मुफ्ती थाना इलाका के मोहम्मदपुर गांव में आज एगो पटाखा फैक्ट्री में भई भीषण धमाका।

0: में 3 लोगों का मौत हो गई जबकि 15 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। वहां के जिलाधिकारी अमित पाल बतौले कि प्रशासन और पुलिस का टीम मौका पर पहुंच के राहत कार्यान में जुट गई है।
1: जनपद प्रयागराज कौशाम्बी के बॉर्डर की ये घटना है। लगभग 10:40 बजे इसकी सूचना प्राप्त हुई थी, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगभग 3 की मृत्यु की सूचना है, बाकी अभी उपचार चल रहा है और राहत कार्य भी जारी है।
0: हापुड़ जिला में बीतल रात गंगा एक्सप्रेस वे पर एक सड़क हादसा में 4 लोगों का मौत हो गई। बदायूं से दिल्ली की ओर जा रहा एगो कार सिंभावली थाना इलाका का हाजीपुर गांव के लगे बेकाबू होके पलट गई। हादसा में कार में सवार 4 लोगों का ओही झुक में मौत हो गई जबकि एगो किशोर गंभीर घायल हो गई। सूचना पौते पुलिस घटनास्थल पर पहुंचलस और शवन के पोस्टमार्टम बदे भेज दिहलस। ये हादसा में घायल किशोर के अस्पताल में भर्ती करा दिहल गई। प्रदेश भर में हो रहा बरखा और बैराजन से पानी छोड़ने के नाते कई गो नदियन का जलस्तर बढ़ी रहा हो। बलिया और फरुखाबाद में गंगा नदी खतरा के चिन्ह से ऊपर बह रही हो। चित्रकूट में मंदाकी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हो। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ने के संभावना के देखत जिला प्रशासन 61 बाढ़ राहत शिविर 21 गो बाढ़ चौकी और 198 नाव का व्यवस्था कैले हवे। वहां गंगा नदी चेतावनी के चिन्ह के लगे पहुंच गई हो। एहर गोरखपुर और आसपास के इलाकन में आज दोपहरिया बाद से रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी हो। ये बीचे मौसम विभाग राज्य भर में 5 सितम्बर ले कहीं कहीं भारी बरखा का चेतावनी दिहले हवे। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों से आपको अवगत करा दें।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के फरमाइशी ईमेल पर आधारित कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 9:30 पर। अगर आप पुराने गानों के शौकीन हैं तो जी हाँ, ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का समय होगा रात्रि 9:15 का। कुछ गैर फिल्मी नगमों का आप लुफ्त लेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत रात्रि 8:00 और रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस लेकर हम हाजिर होंगे शाम 7:31 पर। कार्यक्रम लोकगीत आप सुनेंगे शाम 7:05 पर और कार्यक्रम फिल्म संगीत का समय होगा शाम 6:50 का।

कार्यक्रम ग्राम जगत का समय होगा शाम 6:10 का। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है।

0: सब पंचन के राम
1: राम, राम जीरा बही
0: ना आपके भी राम राम। और देखा थीला की बरखा उन्नी में जो ना कि माने अगर अपन समय हो गलो पंचायती का
1: हाँ।
0: तो हम लोग जब शामिल होइला तो सब तरह का देखा बात तो भी करेला, लेकिन बरखा बुन्नी में जो ना एक को दिन देखा नागा नहीं होता। पहले कहल गल कि एदा पारी बारिश कम हुई, लेकिन देखा एदा जो ना कि बारिश जो ना कि बहुत ज्यादा होता, जेकरे वजह से कल गल कि अपने घर गृहस्थी की तो हम लोग देखबे करीला पंच भी है बहन लोगन और हम सभी लोग अपने। तो उम्मीद क्या होला, कोई कोई का देखा जो ना कि सोचलन कि हम अपन काम भीज के कर ली, लेकिन ऐसा गलती ना करें काहे से कि देखा एक स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़े।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जो आप पानी की जो बात करते हैं, वर्षा के बात करते हैं, तो अगर देखा वर्षा भी बहुत जरूरी चीज है अपने धरती पर हरियाली लावे बदे, चाहे हम लोगों के हर चाहे खेती किसानी से देखा हम लोगों जुड़ल नहीं
0: हाँ।
1: तो खेती किसानी में भी देखा हम लोगों का बहुत ऐसा जगह बा जहाँ वर्षा आधारित खेती ही होला। तो देखा अगर बारिश का मात्रा अगर अधिक होत बा जीरा बहिन, तो हम लोगों के ओके संचय करे के व्यवस्था बनावल जाए।
0: एकदम सही बात।
1: और देखा अगर जल संचय का अगर व्यवस्था अगर हम लोगों बनावल जाए ना, तो हम लोगों के भी देखा कहीं न कहीं लाभ ही हुई। और देखा आज के समय में मांग भी यही बा, धरती माई का यही मांग बा कि वर्षा का जो जल बा एक करल जाए।
0: बिल्कुल सही बात कर तो गुलाबो बहन। और देखा जल संकट जो समस्या है जेकरे लिए वर्षा संचयन माने जरूरी है ला जल के,
1: बिल्कुल
0: ओकरे खातिर देखा हम लोगन के जागरूक होए के चाहिए। और जल संकट के समस्या जो मुख्य कारण होला वो में देखा आपका जो भूजल का माने गिरत असर स्तर काला और ट्यूबवेल बोरिंग के माने अत्यधिक उपयोग से जमीन के नीचे का पानी लगातार खत्म हो रहा बा। और कंक्रीट जंगल में जैसे शहर में या हर तरफ सड़क और इमारत बने से बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पावत, बर्बाद हो जाता। और जल जो प्रदूषण भी होता उसे बचे खातिर देखा कल गल ना कि नदी तालाब और आपका जो झील बा में कचरा केमिकल बहावे से भी वो पानी देखा इतना दूषित हो जाला ना कि ओके माने कोई चीज में आप उपयोग नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जो जलवायु के प्रकृति के बात है कि धरती माई के हरा भरा करना और बरखा बुन्नी करना, वो में देखा मानसून के समय में अगर बदलाव और अनियमित बारिश अगर होता तो उसे देखा मन की सूखा की स्थिति जो ना कि पैदा हो सकेला।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन एक चीज और गुलाबो बहन बता दी आपकी कि वर्षा जल संचयन करना इसलिए जरूरी है कि ऐसा तकनीक है जिकरे तहत हम लोग बारिश के पानी के वहाँ के बर्बाद हुए से
1: रोक सकीला। बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ये पानी के देखा अपने अपने छत पे भी जैसे टंकी बना के और उसके बाद इस ना ही तो खाली मैदान में जैसे गड्ढा होगल पोखरा होगल बोरिंग वाला कुआं होगल ये सब में अगर हम लोग पानी के इकट्ठा करत ही तो कहीं ना कहीं जो है ना कि हम लोगों के लिए जो है ना कि
1: बहुत ही फायदे का चीज बा। और देखा हम लोगों के आज के समय

0: मांग भी ये बा कि हम लोगन वर्षा जल संचय करल जाए और देखा ऐसे एक एक करे खातिर कई ठी विधि होला। अब वो विधि के जाने खातिर देखा वर्षा जल संचयन के विभिन्न विधियां एक विषय पे जो डॉक्टर जय नारायण तिवारी है जो उनके एक जागरूक ग्रामीण है। अब हम तो कहा कि हम लोगन के बातचीत के बाद अगर इनकर जानकारी अगर हम लोगन सुनल जाए तो अपने जो पंच भय लोगन है इनकर जानकारी और भी मजबूत हुई। तो हम तो कहा ना कि बिना देर के लिए अब इनकर जानकारी सुनल जाए वर्षा जल संचयन के विभिन्न विधियां डॉक्टर जय नारायण तिवारी जागरूक ग्रामीण से मुनई भैया की बातचीत बा आमे सुनल जाए।
1: चला सुनल जाए। किसान भाई लोग अगर हम लोगन खेती बाड़ी करत है और खेती से जुड़ल है तो निश्चित बा कि पानी का बहुत बड़ा महत्व बा। अगर पानी सही समय से बरसात हुई तब हम लोगन का खेती किसानी हुई। कहे से कि अपने अंचल में जो अपन खेती बा वो वर्षा आधारित खेती है तो जल कैसे बचावल जाए। कहे से कि जल ही जीवन है। जल न रही तो फसल तो छोड़े पशु पक्षी या हम लोगन का जीवन भी असंभव हो जाए। तो किसान भाई लोग आज रावर्ट्सगंज ब्लॉक के मुसही गांव में हमार मुलाकात डॉक्टर जय नारायण तिवारी साहब से मुलाकात हो गई और कैसे आप जल बचावत हुआ और जल का सदुपयोग करत हुआ एक बारे में आपका अनुभव काबा स्वयं आपसे जानल जाए। तिवारी जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: ये बताओ कि ये जल संचयन का जो विधि रहल ये आप कहाँ से सीखना।
2: देखें जल संचयन की जो विधि है इस देश में तो बहुत पुरानी है और सबसे ज्यादा इसका उपयोग आजकल राजस्थान में हो रहा है क्योंकि राजस्थान में वर्षा करीब करीब 400 से 500 मिलीलीटर होती है उसकी तुलना में 1000 मिलीलीटर हमारे यहाँ होती है। लेकिन राजस्थान के लोग सालों से इसको बचाते आए और अब तो यहाँ एक क्रांति के तौर पर हर गाँव हर ब्लॉक में राजस्थान में ये काम किया जाता है और मैंने यहाँ तक देखा है कि उस बालू में लोग अब केले की खेती करने लगे क्योंकि इस जल संचय चयन से उनको बहुत पानी मिलने लगा और उसका उपयोग खेती और पीने दोनों के लिए कर रहे हैं। तो हमने वही
1: बिल्कुल सही बात आप कहते हो कि धान पान और केरा ये तीनों पानी का चेरा और जहाँ पानी रही वहीं केला का खेती हुई। अच्छा ये बताओ कि एकर प्रयोग आप अपने यहाँ करत हो तो कौन विधि अपनौले हुआ।
2: हमने अपने घर में वर्षा जल संचयन जो छत से होता है वो किया है। मैं करीब करीब 800 स्क्वायर फीट का जो हमारा मकान का एक हिस्सा है उसमें हम पाइपलाइन से पानी नीचे ले आते हैं और उसको फिर फिल्टर करते हैं। फिर उस फिल्टर के हुए पानी को फिर उसी पाइपलाइन से दो चैम्बर बना के एक 30,000 लीटर की टंकी में इकट्ठा कर रहे हैं। तो इससे हमको एक तो उस वो जल का उपयोग हो जाता है जो छत पे बहता हुआ बाहर चला जाता था और उसका क्या उपयोग होता है मैं बताऊंगा आपको। दूसरी एक प्रथा जो हमने लगाई है वो कि आधे छत का पानी हम एक पुराने कुएं में डाल देते हैं जिससे हमारा कुआं आसपास की जमीन को सोतों को रिचार्ज करता रहता है और हमारा अपना बोर जो केवल 110 फीट पर है कभी भी फेल नहीं होता किसी गर्मी में। लगभग 2 इंच पानी देता है उससे हमारा घर का काम चल जाता है। और इस जो वर्षा जल का उपयोग जो आप बताया आपने हम क्या कर रहे हैं तो उसमें हम दो उपयोग करते हैं। एक तो उसका पीने का पानी उपयोग में आ जाता है आवश्यकता पड़ने पर और दूसरा गर्मियों में जब चारों तरफ पानी नहीं रहता है तब भी मेरे यहाँ हरियाली है और लगभग 22 पेड़ बड़े बड़े हैं और करीब 300 के आसपास छोटे छोटे पौधे जो गमलों में लगे हुए हैं जिनको मैं जल से सिंचित करता रहता हूँ और ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करता हूँ। तो सिंचाई और पीने दोनों के काम आता है।
1: अच्छा जौन ये समय आप जल एकत्रित करत हुआ तो ये कितना दिन तक आपके टंकी में बना रहा।
2: देखिए जल तो पूरा करीब करीब 10 महीना तक हमारे टंकी में रहता है। पीने लायक योग बनाने के लिए उसके वो तो पीने लायक शुरू शुरू में होता ही है लेकिन 3-4 महीने के बाद में जब उसमें बैक्टीरिया आने लगते हैं तो उसका बड़ा सरल उपाय है कि उस टंकी में 10,000 लीटर प्रति टंकी के करीब 300 से 400 ग्राम कली चूना डाल दें अगर हम तो वो बैक्टीरिया मर जाता। तो मैं अपनी टंकी में 2 महीने बाद में 1.25 किलो के आसपास कली चूना डालूंगा और 250 ग्राम के आसपास फिट करी तो वो साल भर पीने लायक रहेगा और 10 महीने तक उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इस पिछले बरसात का जो जल है इस बार हमने जुलाई महीने में पिया था और कई अधिकारी अधिकारियों ने पिया, उनको कोई अंतर नहीं लगा कि ये पुराना जल है और इसको हमको नहीं पीना चाहिए, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसको पी सकते।
1: जैसे आप अपने यहाँ जल संचयन का विधि अपनौले हुआ, एक प्रयोग करत हुआ, एक बहुत बढ़िया ये काम आपका बा, लेकिन एक ही एक अभियान के रूप में जोड़ कर जौन अन्य किसान भाई लोग बाया उनकर समय से जैसे नर्सरी धान का नहीं हो पावे या छोटी छोटी बागवानी लगवले हो, वहाँ वो पानी के कारण खास तौर से गर्मी में सूख जाए, तो उनके बदे आप का करी हैं?
2: देखिए, उनके लिए हमारा एक सुझाव ये है कि जल संचयन की एक और विधि है कि जमीन में आप अपना जो आजकल कुआं बनाने का और तालाब बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आप संचयन करने के लिए एक नीचे गिट्टी डाल दीजिए, ऊपर बालू डाल दीजिए, जिससे कि आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो आप उस जल को भूमि जल में जो भूमि में जाएगा उसको लेके आप अपनी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप एक 5000 लीटर की टंकी लीजिए और उस टंकी से ड्रिप के माध्यम से, जो मैंने दिखाया है आपको कि मैं धान की खेती कैसे कर रहा हूँ, तो ड्रिप के माध्यम से उसको पूरा सिंचाई कर सकते हैं और समयानुसार चाहें तो बोर उस 5000 लीटर को आप बरसात के जल से भर लें, या जिस तरह से पहले मैंने बताया कि नीचे जल संचय करके और फिर बोर से उसको लाके अपनी टंकी को भर सकते हैं। तो दो तरीके हैं जिससे किसान भाई जो छोटे छोटे क्यारी लगाए हुए हैं या धान की क्यारी जब सूखने लगती है उसको बचाने के लिए एक प्रयोग किया जा सकता है।
1: अपने जनपद में आप प्रथम पुरुष हुआ जौन ए तरह से जल संचयन का काम करत हुआ, आगे आपका काज क्या सा?
2: आगे हमारा प्रोग्राम जो ये है कि विचार भी ये है कि जो गांव है सोनभद्र के जहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा है या कुछ गांव में आर्सेनिक भी पाई गई है, कहीं आयरन ज्यादा है, उनके लिए एक छोटा मॉडल बनाना, क्योंकि अगर हम सामूहिक रूप पर एक गांव के लिए एक फ्लोरीन हटाने का यंत्र लगाते हैं तो उसको मेंटेन करने में 2-4-6 साल के बाद में ऐसा समाचार मिलता है कि वो सिस्टम फेल होने लगता है और फिर पुराना पानी पीते हैं लोग। लेकिन अगर हम एक 5000 लीटर की टंकी हर परिवार को उपलब्ध करा दें, उसका एक छोटा मॉडल हमने बनाया भी है, तो साल भर 5 लोगों का एक परिवार प्रतिदिन 3 लीटर जल के हिसाब से पी सकता है उस पानी को लगभग 11 महीने तक, और 12वें महीने में तो बरसात रहती ही है तो आप उस टंकी को फिर से भर सकते हैं। इस तरह से ये जो शरीर का जो अंग भंग हो जाता है फ्लोरिन की वजह से, टेढ़ा हो जाता है, दांत काले हो जाते हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, इसी पर मैं अब काम कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल, वर्षा जल संचयन आप करत हुआ और जो किसान भाई लोग पानी नहीं बचा सकत और पानी बहा देते हुआ, वो किसान भैया लोगों से आप का कहल जाए?
2: हम ये कहना चाहेंगे कि हर घर में जिसका पक्का मकान है कम से कम 10,000 लीटर का एक अंडरग्राउंड टैंक बना लें। सरकार ने भी ये कार्यक्रम बहुत तीव्र गति से चलाया है, तो जहां वो सामूहिक रूप में कर रहे हैं वहां हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी पानी पीने के लिए ला सकते हैं। देखिए, टैंकर का जो पानी आता है वो पानी भूगर्भ पानी है और वो पानी भी हम खत्म करते जा रहे हैं पीने के लिए, और धीरे धीरे क्या होगा कि जलस्तर नीचे जाएगा। जब हम भूगर्भ पानी बंद कर दें और वर्षा पानी लेना शुरू कर दें तो हमको दो लाभ है। एक तो हमको शुद्ध पानी मिलेगा, क्योंकि वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। इसका नियम यह है कि 2 बरसात छोड़ के 3री बरसात से ही पानी इकट्ठा करें, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी वायुमंडल में प्रदूषित गैसें होती हैं या जो कण होते हैं वो धुल जाते हैं, तो आपको एकदम शुद्ध जल मिलता है। तो आप 5000 लीटर की टंकी लीजिए, 5 आदमियों का परिवार है, 3 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से उसको पीजिए। कपड़ा धोने के लिए हैंडपंप वगैरह जो भी उनकी आवश्यकता हो जाए, गर्मी में तो पीने का ही पानी नहीं मिलता है, बाकी तो अलग बात, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो बनाएं, और इसका लाभ जो राजस्थान में लोग ले रहे हैं उस तरह का लाभ भी हमारे क्षेत्र में लोग लें, क्योंकि बहुत सारी जगह हमारे क्षेत्र में ऐसी हैं जहां पर केवल भूगर्भ जल ही उपलब्ध है और कोई साधन नहीं है पानी पीने का।
1: तो डॉक्टर साहब, आज आपसे मुलाकात भइल और इतना बढ़िया जानकारी का बात भइल, ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठे हैं, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
3: गुलाबो बहिन,
0: हाँ जीरा बहिन,
3: देखा है वर्षा आधारित जोन बात होत रहल, ओकर जोन विभिन्न विधियां हो ओकरे बारे में जोन अभी आपका जोन की डॉक्टर संजय नारायण तिवारी,
0: जय नारायण तिवारी जीरा बहिन जागरूक ग्रामीण रहलन है, मुनई भैया के बातचीत रहल है, बहुत ही पुरहर जानकारी रहल और सही कहलन है कि देखा वर्षा का जोन पानी है ना ओके संचित करके जमीन के भीतर भेजे से अपन जोन कम हो जोन भूजल का जोन स्तर होला वो फिर से ऊपर आ जाला, और साथ में देखा गर्मी या सूखा में के दिन में भी देखा पानी का जो आपूर्ति बनाए रखे के कारण भी यह जल संचित बहुत ही काम आवला। और देखा जीरा बहन यो बात हम लोगन के खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण बा कि किसान हम लोगन है जैसे कि इस जमा कइल गेल पानी का उपयोग सिंचाई के खातिर जो अच्छा पैदावार हम लोगन पैदा करेला ओकरे भी खातिर बहुत महत्वपूर्ण होला। तो इतना बढ़िया जानकारी भैया देलन है तो उनके देवल जय बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा हम तो कहब ना कि खेती किसानी का जो हम लोगन ग्रामीण है खेती किसानी से जुड़ल है तो देखा जब हम लोगन खेती

0: कार्य करल जाला तो देखो ओकरे खातिर हम लोगन के काफी योजना बनावे के जरूरत होला और बिना योजना के जीरा बहन देखा कोनो भी काम नहीं होला।
1: बिल्कुल।
0: और देखे कहल जाला ना कि हम लोगन खेती करत हैं तो देखो फल और सब्जी का व्यवसाय खेती एक अत्यधिक लाभकारी व्यवसाय होला।
1: आपके बता दी गुलाबो बहन की खेती हम लोग तो किसान है ही, खेती तो पूरे भारत वर्ष में होला। तो देखा जो हम लोगन गेहूं चावल के खेती करी ला वो तो देखा फसल आपके साल भर के भंडारण के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन जब कभी बाढ़ या सूखा से जो है कि ऐसा नौबत आ जाला कि माने कि कम पैदावार फल और हमें जो संकट का समस्या करे को था उनमें जो ना कि अगर हम लोग फल और सब्जी के माने व्यवसाय करत ही ला तो उससे देखा हम लोगों का आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई और हम लोग आगे भी बढ़ल जाएगी।
0: एकदम सही बात कहलू है। और देखा व्यवसायिक खेती के सफल बनावे के खातिर भी योजना बनावे के चाहिए, जैसे कि का फसल लगावे के है ओकर भी जानकारी रखे के चाहिए। जैसे आम हो गयल, केला हो गयल, पपीता हो गयल, अनार, नींबू, अमरूद और स्ट्रॉबेरी, ईटा देख फल हो गयल और जेके लगावे के चाहिए। और देख लगावे के बाद हम लोगों ने कर आमदनी भी काफी अच्छा मिल जाला।
1: बिल्कुल।
0: और ये देखो बरहो मासी फल होला अपन हमेशा बाजार में एक मांग बनल रहेला। और देखन सब्जियन में भी देखा टमाटर हो गयल, शिमला मिर्च हो गयल, कद्दू वर्गीय, खीरा हो गयल, करेला हो गयल, ब्रोकरी हो गयल, मशरूम और देखा हरा मिर्च भी लगावे से देखा हम लोगन के बहुत ही फायदा हो सकेला। और देखा एके लगा के भी हम लोगन आय में वृद्धि करल जा सकेला। और जीरा बहन हम तो कहो कि साथ में खेती करत भी है और आधुनिक तरीका से करी, जैसे पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में बेमौसम सब्जियन को उगावे का बेहतरीन तरीका होला।
1: और देखा जो मैंने ड्रिप टपक सिंचाई होला वो हम लोगों के लिए फायदेमंद होला। तो जैसे आम आप जो ना कि माने तमाम तरह के जो ना कि फल वाला पेड़ बतौली न ओकरे साथ साथ तरकारी भी देखा कल गल ना कि अगर आगे आगे हम लगावा थी तो आगे आगे में बढ़िया आमदनी भी बाजार में मिली।
0: बिल्कुल।
1: ओकर देखा एक चीज और भी है मैं गुलाबो बहन कि ये देखा 2-3 महीना में तैयार हो जाला और हम लोगन के माने आर्थिक स्थिति के बदे जो है ये सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर हम साग तरकारी फल या बगीचा में फूल लगावा थीला जिससे हमार जो ना की थाथी
0: बिल्कुल
1: बनल रही। और जो माने अनाज जेकर कल छोट किसान के अगर बात करें जिनके पास खेत कम बा उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखा एक ही करे से भी हम लोग योजनाबद्ध तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों के देखा 4 पैसा की आमदनी हुई। और देखा है हम लोगन जब भी पंचायती में भी जुटल जाला जीरा बहन तो देखा अपने जानकारी के बढ़ावे खातिर विशेषज्ञ भैया लोगन के, जागरूक ग्रामीण भैया लोगन के जब अपने उनका जानकारी शामिल करल जाला कि उनकी जानकारी से जौन भी हम लोगन के खेती में अगर सहयोग ना मिल पावत बा या हम लोगन थोड़ा ओकर ज्ञान अधूरा रह जात बा तो उनकर बात सुन के हम लोगन के ज्ञान पूरा हो, उनके बात सुन के हम लोगन और भी सीखी और अपने खेती में दिन दूना रात जोगुना तरक्की करी। तो हम तो कहब ना कि आज अपने पंचायती में हो फल और सब्जियों के बीज का महत्व डॉक्टर मुक्ता सिंह जो उनके कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे ही मुनई भैया के भेंट मुलाकात भइल बा और के तरीका से वो का कहल चाहत हवा का बतावल चाहत हैं डॉक्टर साहब तो हम तो कह देने कि इनकर जानकारी भी आवे लगले है सुन लेवल जाए।
1: चलो
2: किसान बहन लोग देखे आज हम कृषि फार्म मंगुराही में है और यहाँ हमार मुलाकात जौन बा वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का प्रोफेसर डॉक्टर मुक्ता सिंह मैडम से होगा। कैसे कि देखे इसमें खेती बाड़ी का काम चलत है किसान बहन लोगन और आप लोगन खेती बाड़ी से जब परिश्रम कई का निकलनी तो अपने शरीर का ध्यान नहीं देती कि कैसे अपने शरीर के स्वस्थ रखे के चाहिए। तो स्वस्थ शरीर बदे फल और सब्जी का जोन बीज बा ओकरे सेवन का काम महत्व बा आज हम लोगन डॉक्टर मुक्ता सिंह मैडम से जानल जाये। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार भैया। नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। ये बतावे कि जौन आपन किसान बहिन लोगन हैं खास तौर से अपने शरीर के स्वस्थ रखे बदे फल और सब्जी का जौन बीज बा ओकर सेवन कैसे करें।
3: पहली बात तो हम ये बता दे कि फल और सब्जी मोहम्मन वो पौष्टिक तत्व मिलल जौन कि आपके ना अनाज में मिले ना आपके कोनो और ऐसा चीज में मिले जैसे कि मिनरल खनिज लवण और विटामिन और आपके मस्तिष्क विकास के लिए आपके शरीर के विकास के लिए इस सब दोनों पौष्टिक तत्व बहुत जरूरी है
2: जी।
3: और अब बात आप कह रहे हैं कि सीड बीज तो बीजन का सेवन बीज जो जैसे आजकल बात भर हम अभी बतावत रहे कि कटहल का कोवा, कटहल का कोवा लोग खाए के फेंक देते
2: जी।
3: तो अब हम यही कहेंगे कि कोवा फेंक मत, बीज फेंक मत, सुखा धो के सुखाए के
2: जी
3: या तो भून करके खा सकते हैं और या तो पाउडर बना करके कोनो रूप में आप वो खा सकते खा पी सकते हैं
2: जी।
3: तो इस तरह से एक तो बीज कटहल का, फिर हम जामुन के बीज की बात करते हैं
2: जी।
3: जामुन के बीज भी जो है शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है।

0: आप कभी फिर दिनचर्या शुरू करें तो उससे बहुत स्वस्थ रहेंगे
1: जी।
0: फिर आपके बता दें कि हम वही सब बीज के बात करते नहीं जो कि वो लोग घर में खाता रहे।
1: बिल्कुल, जो अपने घरे मिला या रसोई में मिला,
0: जो रसोई में मिला था। अब जैसे कि अब तीसी का अलसी भी कहल जाला, कहीं कहीं पर लोग अलसी कहल,
1: यहाँ अपने जनपद में लोग तीसी ही
0: तीसी कहल। तो तीसी का लड्डू पहले हम छोट रहे थे तीसी का लड्डू बहुत खाए रहे और जाड़ा में बहुत बना
1: जी जी,
0: जाड़ा में तीसी का लड्डू। तो तीसी में बहुत बहुत एक बहुत फायदेमंद चीज हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमारे बहन लोग तो ना जानिए, बाकी हम जानते हैं कि विज्ञान में एक बहुत ज्यादा काम होगा।
1: अच्छा।
0: और एपर जो ये फाइबर भी बहुत ज्यादा मिला है और एमन जो प्रोटीन मिला था वो बहुत उच्च कोट का प्रोटीन
1: जी।
0: तो ये तीन चीज जो एक ही बीज में मिल जाए, और तो हम अगर इसका सवेरे आधा चम्मच भी तीसी का पाउडर दोनों रूप में आप पीस ले, सुखा के पीस के खा ले, या ऐसे लड्डू बना के एक लड्डू भी खा ले, तो आपको समझिए आधा से ज्यादा जो शरीर के दिन भर का शक्ति ये मिनरल और खनिज लवण और जरूरत पड़ी तो शरीर का पूर्ति हो जाता है
1: जी।
0: फिर हम आपके बताए बीज के और दो चार बीज हैं, मेथी का बीज
1: जी,
0: ये हमारे रसोईया में सबके रसोई में मिला है। तो मेथी के बीज के कई लोग जानबो कर रहे कि कहे कि शुगर में बहुत खा जाला, जिससे शुगर की बीमारी रहना। अब पता नहीं यहाँ देश में शुगर के का कहा जाला, कौन बीमारी,
1: शुगर है कहा जाला,
0: शुगर कहा जाला। अच्छा, चीनी वाला रोग कहा सब। तो शुगर के बीमारी में मेथी का बिया, मेथी के बिया के बीज के भिगो के भी रात के, जैसे अगर जिसके शुगर भगा वो रात के भिगो के सवेरे का पानी पी जाए और अगर उसे बर्दाश्त हो तो वो चबाए के पानी पिए, और ना तो चबाए कम से कम पानी तो पिए। तो वो मन इतने शक्ति बा, मन थायमिन मिला था, फोलिक एसिड होला, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, ये सब मेथी के दिया में पाया जाला। अगर वो कर सेवन करिए तो बहुत फायदेमंद है। और मिनरल खनिज लवण के हिसाब से कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, कितना कुछ है जो खनिज लवण एक ही बिया में मिला ला। जैसे हम तो यही कहेंगे कि आप लोग एक सेवन करें, ब्लड शुगर जो जो शुगर के जो लेवल होता है रक्त में वो का नीचे करा था, वो का लेवल बराबर कर देते जितना हमारी जरूरत बा
1: जी।
0: और जो हमारी वो है दूध पिलाती धात्री महिलाएं
1: जी जी,
0: जो अपने बच्चन के दूध पिया होते हैं, अगर एक सेवन करे तो दूध बहुत बना था। अगर इनके लोग बहुत लोग महिलाएं जब दूध पिलाती करते हमारे दूध बनते नहीं, दूध यह से ना बनल है, कहे कि दिन भर तो काम करते हैं, खाना पीने पर कोनो ध्यान ना देते, तो कुछ है बस ये मेथी भी खाक ले तो दूध उनका बनने लगे। और ऐसे है कोहरा का बिया
1: जी जी,
0: बहुत जगह कद्दू कहती, बहुत जगह कोहरा कहती, तो कोहरा का बिया भी बहुत बढ़िया सोर्स है पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, खनिज लवण का
1: जी जी।
0: अगर कोहरा के बिया सुखाए धोए के सुखाए के, अभी हमें पता चला कि लोग बहुत लोगों का भूज के भूजा के रूप में खाते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। अगर वो भूजा के रूप में खाते हैं या तो सुखाए के पाउडर बना के खा सकते हैं, तो एमन इतना सब कुछ मिला था, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एक वह पौष्टिक तत्व होता है शरीर जो कि अगर हमारे अंदर कोनो बीमारी वाला सूक्ष्म कीटाणु तो उसका मार देता है तो आदमी बीमारी ना हो जाए, जैसे बड़े बड़े कैंसर बीमारी हो सब में ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और सेल्स जो होती है माई कोशिकाएं उसको भी मरम्मत करते हैं, कैंसर नहीं हो सकता है अगर आप कद्दू का बिया खाए। प्रोस्टेट की पुरुषों में प्रोस्टेट की बड़ी बीमारी होती है, उसमें फायदा करता है, और शुगर लेवल को, और यहाँ तक कि दिल की बीमारी में भी ये फायदा करता है
1: जी जी।
0: अब हम आपके बताओ थे तिल का, अभी भी अभी पता चला कि तिल का तेल का लोग कई तरह से
1: उपयोग कर,
0: हाँ उपयोग कर रहे, क्यों पूरी खाते हैं, क्यों उन्हें क्या कहते हैं उसे मालिश में भी प्रयोग करता है
1: जी जी।
0: और खाना में भी खाता हूँ, तो तिल में बहुत ज्यादा प्रोटीन पावा जाता है, फाइबर बहुत मिला था, बी विटामिन बहुत मिला था, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी बहुत मिलता है
1: जी।
0: इसीलिए यह भी हड्डियों के लिए बहुत उपयोगी है, तो अगर हड्डी की बीमारी है तो वो लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं
1: जी जी।
0: और जैसे ब्लड सेल जहाँ खून के जो कोशिका बनती है, हमारे शरीर में छोटे छोटे जो सेल बनते हैं, वो सेल के बनने में भी इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है तिल के तेल का या तिल का, और हार्ट की बीमारी में भी इसका

0: बहुत उपयोगिता है, इसलिए खाना चाहिए। और अंत में हम कहें त्रिफला,
1: जी जी
0: त्रिफला है, तीन फल का मिला हुआ, इस वजह से त्रिफला कहा जाता। हर्रे बहरे अमला
1: जी
0: ऐसे कहा जाता, हर्रे बहरे अमला और तो ये तीन, ये तीनों चीज के मिलाए के बहुत लोग ही, तो खैर काफी प्रचलित है, लेकिन आजकल फिर से लोग जो है टिकिया पे ज्यादा विश्वास करे लगे, फिर से कम खाते हैं। नहीं तो पहले इनका फाकी बनाते हैं, फाकी में सवेरे अगर ये तीनों मिलाए के फाकी बनाए के आधा से एक चम्मच भी पिए तो उसे शरीर के बहुत फायदा मिले, अमीनो एसिड्स मिला था, विटामिन सी होते हैं मन, और कोनो भी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावत है, हमें अगर कोनो पेट के कब्ज हो वो मन फायदा करत है, और कोनो भी पेट के बीमारी हो मन फायदा करत है, कोलेस्ट्रॉल के नीचे बढ़े ना दे, एलर्जी अगर हो तो उसको बचावत है, इमन मतलब चेहरा में भी सुंदरता चमक आ जाए, तो ये सब चीज खा सब बीज खाए के हमारे लोग का प्रचलन एकदम खत्म हो बाबा, हमको फिर से शुरू करेगा ताकि हमारे शरीर के सब को फायदा मिले।
1: बिल्कुल सही बात कहते हैं, अगर हम लोगन के स्वस्थ रहे के बाद, स्वस्थ जब हम लोग रह तब काम धंधा कर, तो फल और सब्जी का जो बीज बा ओकर उपयोग हम लोगन के करे के चाहिए, तो हम लोगन स्वस्थ रह। डॉक्टर मुक्ता सिंह साहब आज आपसे मुलाकात भइल और इतना बढ़िया जानकारी के बात भइल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
3: हम लोगन के भी तरफ से कि इतना बढ़िया जानकारी देवलो ने मुनि भैया कि अपन फल और सब्जियों के बीच का जो का महत्व होला। डॉक्टर मुक्ता सिंह बहन के भी बहुत देवल जाए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और देखा धन्यवाद के बाद आज तो झूरे झूरे तो धन्यवाद हुई नहीं, लेकिन हम तो कबला की जो माने की अभी साग तरकारी के बारे में जो बात होत रहा फल और सब्जी का, वो कर देखा यह है कि ऐसे अगर हम लोग के आर्थिक स्थिति में सुधार हो तो हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा जागरूक होके ये पे ध्यान दे, जो किसान भाई नहीं करे तो वो भी करे, पंच भी है लोग, तो जब हम लोगन का तरकारी तैयार होला ना गुलाबो बहन, तो देखा बाजार पे जो कल गल की जो दो आंखी होला एक तो खेते पे एक तो बाजारे पे लगल रहा कि आज बाजार में का भाव मिली,
3: बिल्कुल
2: तो आज देखा जो ना कि हमके रावण से
3: एकदम बिल्कुल आपके हाथ में देख रहे थे एक पाती है और कहाँ का पाती है के भेजले है अपने पंच भैया लोगन के, हम तो कहो कि आज बांस के बतावे कि का बाजार भाव उनके मिलत बा कहाँ पर।
2: बिल्कुल आज देखा रावणसगंज मंडी का बाजार भाव बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हैं
3: कुंतल
2: में,
3: अच्छा
2: लाल आलू हो 1100 से 1200, सफेद आलू आपका 900 से 1000,
3: बिल्कुल
2: 2200 से 2500 आपका टमाटर हो, गोल बैगन आपका 3000 से 3500 हो,
3: अच्छा अच्छा
2: बैगन लंबा वाला जो 1500 से 1800, परवल 7000 से 7500 हो,
3: बिल्कुल
2: बोड़ा 1800 से 2000 हो, नेनुआ 2200 से 2500 हो, 1000 से 1200 है, और करेला आपका 2800 से 3000 हो,
3: बिल्कुल
2: लौकी आपका 1200 से 1500 हो, कोहनी 1500 से 1800 है, और सूरन आपका 4000 से 5000 हो, प्याज आपका 4000 से 4500 हो, और लहसुन आपका 15000 से 16000 बा, हरा मिर्चा आपका 3200 से 3500 हो,
3: बिल्कुल
2: और धनिया के जो हरा पत्ती बा वो 9000 से 10000 हो, और मूली आपका 900 से आपका जो ना की 1200 है,
3: अच्छा
2: और उसके बाद जो ना की पालक आपका जो ना की 3000 से 3500 है, और खीरा आपका 1800 से 2000 है,
3: अच्छा
2: कुंदरू आपका 1800 से 2000 है, अब देखा सैकड़ा में बा फूल गोभी आपका 2000 से 2500 रुपया,
3: अच्छा
2: और पत्ता गोभी आपका 2200 से 2500,
3: अच्छा
2: नींबू आपका जो ना की 400 से 500 रुपया हो, ये आज के देखा ताजा बाजार भाव रावर्सगंज मंडी से बाबूलाल मौर्य,
3: तो भैया के देवल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया जानकारी भेजलन है, और देखा बहुत जागरूक किसान है अपन बाबूलाल मौर्य भैया, उस समय समय पे अपन बाजार भाव जरूर भेजल करना अपने पंचायती कार्यक्रम में शामिल करे बदे, और देखा ये लोगन के वजह से देखा हम लोगन के भी बहुत जानकारी मिल जाला, कहे कि देखा एक समय में जीरा बहन आदमी हर सब जगह ना ही पहुंच सकत, लेकिन फोन ऐसा माध्यम हो गए बा कि फोन के माध्यम से चाहे पांती के माध्यम माध्यम से अपन जानकारी उनकर हम लोग अपने कार्यक्रम में शामिल कर ले ला जा। और भैया के देवल जय बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा धन्यवाद के साथ हम तो कब मन फेर से हुई और देशभक्ति गीत से, लेकिन हम तो कहब ना कि देखा जो बरसात का समय चलत बजीरा बहन, अब ये बरसात के समय में देखा हम लोगों के भी अपने खेती किसानी तबे हुई जब हम लोगन स्वस्थ रह और

0: तब रहब जब हम लोग जागरूक रहब और जागरूक होवे के खातिर ई बरसात का जो समय चलत बा जगह जगह देखत हूँ अपन तरह तरह का जीव जंतु निकल जात हवा उनसे देखा अपने छोटवार बचवन हवा चाहे बड़ बुजुर्ग हवा रोज कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सुनाई भी देत बा कि ई जीव के काटे से मतलब इनकर मृत्यु हो गई या जान खतरा में पड़ गई चाहे उनके उठा पटा के अस्पताल लेके भागे के पड़ल। तो देखा हम लोगन के हमेशा जागरूक होके चले के बाद सावधान होके चले के बाद और ज्यादातर देखे हम लोगन साफ सफाई पर विशेष ध्यान देवल जाए।
1: बिल्कुल सही बात कह लू तो अब तो हम कहला की मन मनसायन होए की चाहिए और देखा बल्ली यादव संगाती लोगन जो देशभक्ति गीत के बोली ना उसे तैयार हम तो कहा तो सुनल जाए
0: चला।

0: जीरा बहन,
1: हाँ गुलाब,
0: देखा कितना बढ़िया देशभक्ति गीत बल्ली यादव भैया सुनौलन है और इनके भी देवल जी धन्यवाद।
1: हाँ।
0: कहे की देखा हम लोगन का बहुत ही एक मन के फरहर करे खातिर ये जो गाना हम लोगन सुनी ल जा।
1: हाँ।
0: गीत संगीत सुनी ल जा, ऐसे समझ ले कि हम लोगन के अंदर जो तनी सा भी आलसपन होला ओके सुन के देखो मन एकदम तरोताजा हो जाला और देखा कार्यक्रम में भी फिर बातचीत करे में और भी मन लगला।
1: तो देखा हम तो कहला कि हम लोग तो बात में मन लगे वाली जोन बात के लिए ना, तो एक चीज बता दी, बारिश बुन्नी में जो ना देखा अगर तरह तरह के माने कल गल की तल के और भून के लोग ज्यादा मतलब सोचल चटपटा खाली पकौड़ी खाली आलू चाप ब्रेड पकौड़ा, लेकिन इस सब
0: देखा बरसात में जीरा बहन यही कुल खाए के मन करे ला,
1: उसे अपन पेट जो है कहीं ना कहीं जो है की देखा खराब होला और वोकर सजा अपने स्वास्थ्य खराब हुई, तो काहे ना अच्छे पोषण का आहार अगर ले तो अपन शरीर भी स्वस्थ रहे और उसके बाद जो ना कि कल गल की काम धंधा भी हम अच्छे से कर सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखा ये भर नहीं इस समय तो देखा घरे घरे में सर्दी जुखाम बुखार ये सबसे पीड़ित व्यक्ति मिलत हवा, तो देखा ये वायरल इन्फेक्शन है के कहल जाला कहीं न कहीं, और देखा ऐसे हम लोगन के बच बचा के रहे की जरूरत बा, अपने आप के सुरक्षित रखे की जरूरत बा। देखा अगर हम लोगन का शरीर का एक आज के कुछ समय पहले कुछ साल पहले जो बीमारी चल रहा कोरोना उसमें देखा कहल जात रहा की इम्यूनिटी शरीर का कमजोर बा, हम लोगन का जो क्षमता बा बीमारी से लड़े वाला वो कमजोर बा, तो ये कमजोर काहे न हुई अगर हम लोगन आज के समय के जो तला भुना तेल मसाला का जो इस्तेमाल करत है उसे कहीं न कहीं शरीर प्रभावित होत बा। और देखा हम लोगन के ज्यादातर प्रयोग करे के चाहे कि अपने जो रोज बन रहा का हम लोगन भोजन करे थे खान पान बा में मोटा अनाज शामिल करे के प्रोटीन युक्त आहार ले, अगर प्रोटीन युक्त आहार लेवल जाये जीरा बहन तो हम लोगन का शरीर जो बा ना ये स्वस्थ रही, और जब अगर शरीर स्वस्थ रही ना तो कोनो भी अगर हम लोगन काम करब या कोई भी बातचीत करब तो सीधा वो मस्तिष्क तक जाये।
1: और एकर देखा एक के नहीं हो रहा है कि अगर हम लोग सवेरे उठा दिला तो कल गल जो माने सवेरे का नाश्ता कहला ओके करब देखा बहुत जरूरी है, और दोपहर में भरपूर भोजन में आपका साग तरकारी के साथ माने दाल चावल रोटी पूरा सब खाना ले, और माने सोए से पहले जो शाम के खाना खा लेला वो खाना देखा हल्का खा जाये तभी जाके हम लोगों का शरीर स्वस्थ रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखा कहा जाला प्रोटीन जोन होला वो हम लोगों के शरीर के बनावाला प्रोटीन, और देखा जो कार्बोहाइड्रेट होला वो हम लोगों के शरीर के एनर्जी देवाला जीरा बहन, और जो हम लोगों कहा जाला कि वसा वसा एक बहुत ही अच्छी चीज होले वो हम लोगों के दिमाग के चलावाला, साथ में जो विटामिन होला हम लोगों के शरीर के खातिर ओके मिनरल जो विटामिन मिनरल जेके कहा जाला वो हम लोगों के शरीर का रक्षा कराला।
1: और देखा जो ये मेवा मिश्री होला आपका जैसे बादाम होगा अखरोट होगल आपका घी होगल जैतून होगल ऐसे भी देखा हम लोगों के कल गल की जब दिमाग एकदम बढ़िया रही और हम लोग के शरीर में कमजोरी महसूस न हुई तो अपन काम धंधा काफी फुर्ती से हुई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखा फाइबर के बाद जहाँ अगर हम करी तो फाइबर एक ऐसा चीज बा ये देखा पेट हम लोगों के साफ करेला, और फाइबर देखा जो छिलकेदार चना का दाल हो गई चना हो गई छिलकेदार अरहर का दाल हो गई छिलकेदार कोनो भी चीज बा अगर हम लोगों खाते हैं तो उसे हम लोगों के शरीर में फाइबर जाये, और अगर फाइबर जात पर तो देखा पेट से जो संबंधित जौन भी बीमारी बा वो बिल्कुल नहीं हुई, और देखा कोनो भी बीमारी का एक ही जड़ बा वो है पेट, अगर आपका पेट सही बा तो समझ लो कोनो भी बीमारी से आप बच सकेलन। तो यही बाती के साथ हम तो कहब की आज का पंचायती भी यही समेटे के हो रहा बा वक्त, फिर मुलाकात हुई बढ़िया बढ़िया बात हुई तो चल जाए
1: तो सब पंचन के
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से हम बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया ये गीत। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत जतिन ललित का है। फिल्म का नाम है यस बॉस।

अभी आप सुन रहे थे प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी की लिखी इस गीत को। फिल्म थी वो लम्हे और इस गीत के लिए अपनी आवाज दी थी ग्लेन जॉन ने। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं चांद सा रोशन चेहरा फिल्म से। आवाज उदित नारायण की, गीत समीर के संगीत, जतिन ललित का है।

उदित नारायण के गाए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकगीत। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बल्ली यादव और उनके साथियों के गाए कुछ लोकगीत। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनका गाया ये लोक भजन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से प्रसारित कार्यक्रम लोकगीत, और इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं बल्ली यादव और उनके साथियों के गाए कुछ लोकगीत। और इसी क्रम में आइए अब सुनते हैं इनका गाया ये पूर्वी।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
3: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, आरबीआई कहता है
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, सीमा की सुरक्षा और क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा देगा ये कदम। प्रयागराज के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। अयोध्या में 2 सितंबर को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होगी अहम बैठक, ट्रस्ट के सीईओ समेत अन्य रिक्त पदों पर हो सकता है फैसला। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर, 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बहराइच में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअली नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इस खंड पर नेपालगंज रोड वाराणसी सिटी विशेष गाड़ी को भी रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए रेलखंड और ट्रेनों से मिली कनेक्टिविटी प्रदेश में केवल बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा और सुविधा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
1: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत सरकार की ओर से अपने मित्र राष्ट्र नेपाल के सहयोग के लिए त्वरित कदम उठाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेलखंड की शुरुआत से यात्रियों को अधिक सुगम आवागमन मिलेगा और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी के साथ विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि गेज परिवर्तन के साथ नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज व्यापक रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम में उन्होंने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमा से लगे रेलवे जोन के अधिकारी भी लगातार राज्य के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
2: भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है। रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर की कुछ हिस्से, इन सब के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और रेलवे के अधिकारी जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं। जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे, उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का भी रेलवे ने लगातार प्रयास किया है।
0: कार्यक्रम में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज शुरू की गई परियोजना से नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान से संबंधित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी समेत अन्य वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा समर्पण और अनवरत सेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा पूरे एक महीने तक सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा समर्पण और कर्तव्य पथ पर लगातार 25 साल अनवरत सेवा के जो वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे अवसर पर पूरे एक माह तक ये सेवा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, जिसमें रक्तदान और युवाओं को और जो निसहाय लोग हैं उनकी सबकी मदद करके हम गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाएंगे।
0: प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में आज एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में

0: 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के अलावा 100 मीटर के दायरे में 8 मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के समय फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के करीब 200 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉ अमित पाल ने बताया कि मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए कई जेसीबी मशीनें लगाकर तलाश और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से घायलों के उपचार और राहत बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक 2 सितंबर को मणि रामदास छावनी के चार धाम में आयोजित होगी। बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 चरणों में प्रस्तावित इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव और 2 रिक्त सदस्य पदों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद को लेकर भी फैसला होने की संभावना है। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास ने बताया कि बैठक में सभी मुद्दों पर ट्रस्ट के सदस्यों की सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार 2 बदमाश आज सुबह शामली में पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। इन दोनों शूटरों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में 2 आरक्षी भी घायल हुए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने बताया कि 4 लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
1: अभी तक की जांच से यह संकेत मिलता है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी एक प्री प्लान्ड प्लानिंग थी। शूटर्स का मोबिलाइजेशन था, हत्या के बाद का एस्केप प्लान था और सुनियोजित क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस इस हत्याकांड में शामिल शेष अपराधियों, उनके नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां हमको प्राप्त हुई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें कार्य कर रही हैं।
0: इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज शामली पहुंचकर अंकित के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 17 जिलों की करीब 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सरकार की ओर से अब तक 1,635 बाढ़ चौकियां और 254 बाढ़ शरणालय स्थापित किए जा चुके हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे बसे कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की हैं, साथ ही ड्रोन से स्थिति की निगरानी की जा रही है।
2: जिले में 24 बाढ़ चौकियां चिकित्सीय स्टाफ और आवश्यक दवाओं के साथ संचालित हैं। एम्बुलेंस सेवाएं अलर्ट पर हैं, जबकि अस्पतालों में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और रैन बसेरों में भी मेडिकल टीमें तैनात हैं और रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं। जिले में बारिश और जल प्रभाव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए आज और कल अवकाश घोषित किया गया है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: उधर चित्रकूट में रामघाट पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजापुर और मऊ तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जो ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित, जिसको हम लोग कहते हैं वरुणा से लगा हुआ क्षेत्र, वहां पर बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती की गई है, मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। इसमें एनडीआरएफ जो हमारी बाढ़ राहत पीएसी है उसका डिप्लॉयमेंट और जल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो ये एरिया हमारा दशाश्वमेध घाट और आसपास का, नावों का संचालन लगातार बंद किया गया है। साथ साथ में जो गंगा आरती है उसके स्थल में भी परिवर्तन किया गया है।
0: मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, सीमा की सुरक्षा और क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा देगा ये कदम। प्रयागराज के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। अयोध्या में 2 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होगी अहम बैठक। ट्रस्ट के सीईओ समेत अन्य रिक्त पदों पर हो सकता है फैसला।

0: कार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस, और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं निखिल विनय की बनाई हुई धुन पर समीर के लिखे इस गीत को। इस गीत के लिए अपनी आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। फिल्म है मुस्कान।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
0: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
2: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से प्रसारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस, अपनी रेडियो हम सफर रुखसार नाच के साथ। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं, रूप कुमार राठौर और जसपिंदर नरुला का गाया हुआ। शब्द रचना समीर के हैं, धुन आनंद मिलिंद का है, फिल्म का नाम है होगी प्यार की जीत।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: और आइए कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है हमको दीवाना कर गए। गीत समीर के संगीत, अनु मलिक का है।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। पेश खिदमत है गैर फिल्मी नगमों का कार्यक्रम सुगम संगीत। और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं अगम निगम की आवाज में ये रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे ए हरिन हरिहरन की आवाज में इस गजल को।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: इसी के साथ ही गैर फिल्मी नगमों का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर होंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। बने रहिए हमारे साथ।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में हंसते जख्म फिल्म का ये गीत।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: आइए सुनते हैं आशा भोसले की पुरकशिश आवाज में शहरयार के लिखे इस गीत को। धुन दिया है इसके लिए खयाम ने, फिल्म है उमराव जान।

आशा भोसले के गाए इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से हम बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में इब्राहिम अश्क के लिखे इस गज़ल को। इसी के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। समाचारों के लिए आइए आपको लिए चलते हैं हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन

0: से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे खेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम मानवता को नई आशा भर देते। हमें उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया, सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: Overall growth in all sectors has been very positive और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से interventions हुए हैं सरकार के वो impact रख रहे हैं और जबकि overall

0: ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियो पोलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है, और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: सरकार देश में चिपमान सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 के परिव्यय के सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
3: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60,000 डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
1: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97,00,000 से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47,00,000 से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद

0: बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek.

0: ये हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ

रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे बैराग फिल्म से ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा था आरन बख्शी ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर का गाया हुआ। फिल्म है अनीता। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

शताब्दी संगीत के साथ ही पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में इंसाफ द जस्टिस फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है समीर ने, संगीत नखल विनय का है।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में धड़कन फिल्म से ये गीत। गीत लिखा था समीर ने, धुन तैयार किया था नदीम श्रवण ने। और कार्यक्रम का अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बारूद फिल्म से। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। धुन तैयार किया है अनंत मोहन ने, शब्द रचना समीर के हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से प्रसारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, अपने रेडियो हम सफर रुखसार नाच के साथ। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं नदीम श्रवण की बनाई हुई तर्ज पर समीर के लिखे इस गीत को अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म है हाँ मैंने भी प्यार किया।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: कार्यक्रम फिल्म संगीत का आइए आखिरी गीत सुनते हैं गर्व फिल्म से। गीत लिखा है शब्बीर अहमद ने, संगीत साजिद वाजिद का है। इस गीत के लिए अपनी आवाज दी है उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने।

फिल्म गर्व के इसी गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं के फरमाइशी ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी।

म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो हम सफर रुखसार नाज का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपके ढेर सारे ईमेल्स और आपके फरमाइशी गीतों के साथ मैं हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी लेकर। तो देर न करते हुए कार्यक्रम में शामिल करते हैं ये कार्यक्रम का पहला मेल। जिसे भेजा है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर ने, और इनके साथीगण हैं संजय ढिंगिया, संदीप मक्कर, दिव्यांशु यादव, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई। इन्होंने सुनना चाहा है सौदागर फिल्म से ये गीत। तो आइए इनकी पसंद पर सुनवाते हैं सौदागर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम में जो अगला मेल हम शामिल कर रहे हैं वो आया है रॉबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र से। इसे हम तक भेजा है कन्हैया पांडे, सतीश, मोहम्मद शेख, अखिलेश, रागनी और गीता ने। इन सभी ने सुनना चाहा है आनंद फिल्म से ये गीत। तो आइए इनकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म आनंद का ये गीत, जिसे अपनी आवाज दी है मन्ना डे ने।

श्रोताओं, अगर आप भी अपनी फरमाइश हम तक भेजना चाहते हैं तो नोट कीजिए मेरा ईमेल आईडी akashvani@gmail.com, यानी akashvanioobra@gmail.com। और कार्यक्रम में जो अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं इसके लिए ईमेल आया है गाजीपुर से। इसे हम तक भेजा है मुकेश, मालनी, यश, दिशा, मीनू, राजन, आकांक्षा, राहुल, अंकुर, अनाक्षी, देवानी, विजय, रिद्धि, प्रतिष्ठा, आरुष, तन्मीशा और इनकी फैमिली ने। ये सुनना चाहते हैं जुर्म फिल्म से ये गीत। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर जुर्म फिल्म का ये गीत, जिसे अपनी आवाज दी है कुमार सानू और साधना सरगम ने।

श्रोताओं अगली फरमाइश आई है मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से और भेजने वाले हमारे श्रोतागण हैं शेख अताउर रहमान शेख हबीबुर रहमान। इन्होंने सुनना चाहा है हिना फिल्म से गीत और इसी गीत के लिए एक और फरमाइश आई है कैथल हरियाणा से और ये मेल भेजने वाले हमारे साथी हैं जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। इन सभी ने सुनना चाहा है हिना फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं इनकी फिल्म पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबीएस से प्रसारित श्रोताओं के फरमाइशी मेज पर आधारित कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। और आज इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर रुखसार नाज। और कार्यक्रम में अगला मेल हम शामिल कर रहे हैं और ये आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, और इसे भेजने वाले हमारे श्रोतागण हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। इन्होंने सुनना चाहा है

श्रोताओं, अगर आप भी अपनी पसंद के गीत अपने नाम के साथ सुनना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी akashwaniobra@gmail.com, यानी akashwaniobra@gmail.com।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं और ये फरमाइश आई है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से और भेजने वाले हमारे श्रोतागण हैं बालकरण वर्मा, अंजनी, चित्रेखा वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, उमेश धनेश्वरी वर्मा। इन सभी ने सुनना चाहा है रफू चक्कर फिल्म से ये गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं अभिमान फिल्म से, और इसे सुनना चाहे हैं ग्राम टोरोवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, देवी वामिका और वाणी थांदी ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर अपमान फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं और ये जो मेल आया है ये है ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से और इसे भेजा है मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इशरार, नरगिश खातून और इसी गाने की फरमाइश इसी जगह से आई है यानी कि ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से और इसे भेजने वाले हमारे श्रोतागण हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है जहांबाज फिल्म से ये गीत, तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं और ये फरमाइश आई है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, उसे भेजा है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, इन सभी ने सुनना चाहा है।

श्रोताओं, अगर आप भी अपनी फरमाइश हम तक भेजना चाहते हैं तो नोट कीजिए मेरा ईमेल पता। हमारा ईमेल आईडी है akashwaniobra@gmail.com, यानी akashwaniobra@gmail.com। तो हम तक अपनी फरमाइश आप जरूर भेजिए। और इसी के साथ आज का ये म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भव तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर

0: फारूक से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।